सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1947 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए, हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप ओले बाढ़ आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं, बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है, सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं पनप पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जीवन सौरभ
1: अभी भी आपने सुना जीवन सौरभ परमात्मा और किसान विषय पर। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनिएगा कार्यक्रम अक्षनिधि मंडली सूक्त 164 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे सुनिए कार्यक्रम वतन का राग, बाबू श्याम सुंदर दास की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। सुनो कहानी, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर, एक कहानी नशा मुक्ति। कला कल्लोलिनी। ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे। शास्त्रीय नृत्यक उदय शंकर पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होंगे संदीप शर्मा और मनीषा चतुर्वेदी के। हमारा विशेष कार्यक्रम शिव भाई गुप्ता के निमाड़ी गायन पर सुनिए सुबह 9:30 पर। रिकॉर्डिंग की फराज फैयाज ने।

सुबह 10 बजे का समय होगा परिक्रमा का। याद करो कुर्बानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। आज का कार्यक्रम आधारित होगा विजय तेंदुलकर पर। और 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम, सोम, अग्नि, सूर्य, वायु, सरस्वती, साध्य, पर्जन्य, अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: त्रयः केशिन ऋतुथावि चक्षते संवत्सरे वपत विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर् ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्। तीनों किरणों वाले पदार्थ सूर्य, अग्नि और वायु ऋतुओं के अनुसार दिखाई देते हैं। इनमें से एक सूर्य संस्कार का वपन करता है, एक अग्नि अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है, तीसरे वायु का रूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। चत्वारी वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। मनीषियों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के चार रूप हैं। इनमें से तीन वाणियां परा, पश्यंती तथा मध्यमा प्रकट नहीं होती। सभी मनुष्य वाणी के चौथे रूप वैखरी को ही बोलते हैं। एकम मित्रम वरुणमग्नि माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वान माहुः। एक ही सतरूप परमेश्वर का विद्वज्जन विभिन्न गुणों एवं स्वरूपों के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर इंद्र हितकारी बोलने से, मित्र श्रेष्ठ होने से, वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्ण तथा गरुत्मान हैं। कृष्णम नियानम हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिव मुत्पतन्ति त आववृत्तं सदना धृतस्यादिद घृतेन पृथ्वी व्युद्यते। श्रेष्ठ गतिमान सूर्य किरणे तथा साथ जल को उठाती हुई सबके आकर्षण के केंद्र यान रूप सूर्य मंडल के समीप पहुंचती हैं। वहां अंतरिक्ष के मेघों में स्थित जल को बरसाते हुए पृथ्वी को सिक्त कर देती हैं। द्वादश प्रधयश चक्रमेकम त्रीणी नभ्यानि क उ तच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवोर्पिताः षष्टिर्न चला चला सह। एक चक्र है, उसे 12 अरे घेरे हुए हैं, उसकी 3 नाभियां हैं, उसे कोई विद्वान ही जानते हैं। उसमें 360 चलायमान कीलें ठुकी हुई हैं। यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वती तमिह धातवे कह। हे देवी सरस्वती, जो आपका सुखदायक वरण करने योग्य पुष्टिकारक ऐश्वर्य प्रदाता कल्याणकारी विभूतियों को देने वाला स्तन स्वरूप है, उसे जगत के पोषण के लिए प्रकट करें। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, उनका धर्म कर्म में प्रथम स्थान है। इससे उन देवों ने स्वर्ग में स्थान पाया, जहां पूर्ण काल में साधना करने वाले देवता रहते हैं। समान मेतद दुदक मुच्चैत्यव चाह भी भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः। यही जल तप्त होकर वाष्प रूप में ऊपर जाता है और वही जल पर्जन्य रूप में नीचे आता है। जल बरसने से भूमि तृप्त होती है और अग्नियों प्रदत्त आहुतियों से दिव्य लोक तृप्त होते हैं। दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्मपां दर्भं दर्शतमोषधीनां अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि। द्युलोक में विद्यमान रहने वाले उत्तम गति वाले निरंतर गतिमान महिमाशाली जलों के केंद्र औषधियों को पुष्ट बनाने वाले जल वृष्टि द्वारा चतुर्दिक प्रवहमान जल प्रवाहों से भू

तो भक्ति संगीत की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से, और अब सुनते हैं हम सबके आराध्य भगवान राम की भजन।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

0: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: 16 जुलाई सन 1893 क्विंस कॉलेज बनारस के छात्रावास में 9वीं कक्षा के 3 छात्र बैठकर चर्चा कर रहे थे। विषय था हिंदी का भविष्य। ये 3 छात्र थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। उस समय अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला था। हिंदी बोलने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता था। विचार विमर्श के बाद हिंदी के उन्नयन के लिए एक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। नाम रखा गया काशी नागरी प्रचारिणी सभा। बाबू राधाकृष्ण दास इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। 126 साल पहले स्थापित इस संस्था की आरंभिक बैठकें बनारस के सप्त सागर मोहल्ले की एक घुड़साल में होती थीं। हिंदी प्रेमियों, लेखकों, विचारकों को इसका सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया गया। धीरे धीरे इस संस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की और असंख्य पुस्तकें छापकर हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म बनारस में 16 जुलाई सन 1875 को हुआ था। इनके पिता लाला देवीदास खन्ना लाहौर से आकर यहाँ बसे थे। कपड़ों का व्यापार किया करते थे। सन 1897 में श्याम सुंदर दास ने क्विंस कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की। अपने अध्ययन काल में ही इन्होंने सन 1896-97 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रथम संपादक का भार संभाल लिया था। 3 साल इसका संपादन करने के बाद वो सन 1899 में हिंदू स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। फिर हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी के जूनियर प्रोफेसर रहे। कुछ दिन जम्मू महाराज के स्टेट ऑफिस में काम करने के बाद वो सन 1913 से 1921 तक लखनऊ के कालीचरण स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे। इसी दौरान उन्होंने पठन पाठन और कोर्स में कई विसंगतियां पाईं। हिंदी शिक्षण के आरंभिक दौर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन के लिए उन्होंने मानक पुस्तकें तैयार कीं। उनके इस प्रयास से विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी एक प्रतिष्ठित विषय के रूप में स्वीकार की गई और उसके लिए विभाग खोले गए। हिंदी को एक मानक भाषा और बोलचाल में सरल रूप से व्यवहार में लाने के लिए उसे जटिल शब्दों से मुक्त किया गया। उर्दू, फारसी, संस्कृत के कठिन शब्दों से अलग सरल भाषा के रूप में उसका विकास करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत से आम जीवन के उपयोग में आने वाले शब्दों से नुक्ते आदि हटाकर उसे सबके लिए आम बना दिया गया। इसी बीच नागरी प्रचारिणी पत्रिका त्रिमासिक से मासिक हो गई और हिंदी के बड़े विद्वान इससे जुड़ने लगे। ये एक शोध पत्रिका के रूप में स्थापित हो गई। इसके माध्यम से हिंदी की एक वैज्ञानिक लेख और लिपि प्रणाली के लिए भी उन्होंने पत्रिका के माध्यम से मुहिम चलाई। ये एक सांस्कृतिक नवजागरण काल था, जिसमें पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नई विचारधाराओं और राष्ट्र के स्वाभिमान को स्थापित किया जा रहा था। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में ऐसी कविताएं और साहित्य छपने लगे जो स्वाधीनता की अलग जगा रहे थे। देश करवट ले रहा था, आशा और विश्वास के साथ एक नए भविष्य का सपना लेकर।

19वीं शताब्दी के दूसरे दशक से बनारस में स्वाधीनता की लहर जोर पकड़ने लगी। पंडित मदन मोहन मालवीय वहां विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जगह जगह से धन एकत्रित कर रहे थे। महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। मालवीय जी ने सन 1916 में गांधी जी को विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में गांधी जी ने विस्फोटक विचार प्रस्तुत करके सबको आगाह कर दिया। देश स्वतंत्र हो, इसकी वैचारिक रूपरेखा यहाँ बन चुकी थी। भाषा इसका माध्यम बने, इस प्रकार साहित्य में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। हलचल की इस लहर में बाबू श्याम सुंदर दास बनारस आकर हिंदी की सेवा में जुट गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। श्याम सुंदर दास ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और संकलन का काम शुरू किया। इनके पुनर्पाठ और संपादन के लिए उन्होंने विद्वानों की सहायता ली। भाषा विज्ञान को लेकर ग्रंथों की रचना की, सैद्धांतिक समीक्षा की, एक वैज्ञानिक प्रणाली को रूप दिया। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न लेखकों की मदद से संकलित कर व्यवस्थित काल क्रमानुसार रूप दिया। इसी क्रम में हिंदी भाषा के साहित्य को भी उन्होंने पुस्तक रूप में लाकर बड़ा काम किया। स्कूलों में शिक्षा के लिए हिंदी प्राइमरी, हिंदी की पहली पुस्तक, हिंदी ग्रामर जैसी लगभग 25 पुस्तकें तैयार कीं। इनके प्रयोग से स्कूल में पठन पाठन में एक रूपता आ सकी। उन दिनों न्यायालयों में सारा कामकाज उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में होता था। ग्रामीण और आम आदमी इसे ठीक से समझ नहीं पाते थे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने बकायदा एक आंदोलन की शुरुआत की, ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे। पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता से न्यायालयों में नागरी भाषा के प्रयोग को उन्होंने मान्यता दिलवाई और कोर्ट में हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ। सन 1867 में स्थापित इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश की प्राचीनतम न्यायिक संस्था थी। उसने हिंदी को अपनी कार्य व्यवस्था में स्थापित किया। हिंदी के मानक रूप को और स्थापित करने के लिए सन 1922 में नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर नामक कोश पर काम शुरू किया। ये वैज्ञानिक और विधिवत शब्दकोश मूलतः 4 खंडों में तैयार किया गया। इसके प्रधान संपादक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास ने अथक परिश्रम किया। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों के शब्द भी एकत्रित कर उनको शब्दकोश में स्थान दिया गया। लाला भगवान दीन, बाल कृष्ण भट्ट के अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र वर्मा ने भी बाद में इसमें सहयोग दिया। 1,00,000 से अधिक शब्दों वाला यह कोश स्वाधीनता के बाद लगभग 11 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ श्याम सुंदर दास ने वैज्ञानिक शब्दावली और पारिभाषिक कोश पर भी काम किया, जिसने शिक्षकों और विद्यार्थियों को विज्ञान को समझने में आसानी हुई और वो देख सके भविष्य की ओर आशा से।

हिंदी के अग्रज कवि नाटककार भारतेंदु हरीशचंद्र कहा करते थे कि अपनी उन्नति के मूल में निज भाषा ही है, भाषा ही स्वाभिमान की भावपीठ है। वहीं कवि त्रिलोचन कहा करते थे, भाषा भाषा भाषा सब कुछ भाषा। हिंदी की इसी विशाल गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित कर उससे देश के स्वाभिमान को जोड़ने का काम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। प्रेस या छापाखाना देश में आ चुका था, पर अशुद्ध या विकृत साहित्य छापने के बजाय उसका पुनरावलोकन कर तर्कसम्मत भाषा सम्मत संस्करण निकालना देश हित में है। और यही विचार श्याम सुंदर दास और उनकी विद्वत मंडली ने पुरातन ग्रंथों की खोज, उनका संपादन, संग्रहण और छपाई का काम शुरू करके किया। 9 वर्षों तक वो इस काम में जुटे रहे। उस खोज का विवरण उन्होंने 2 ग्रंथों में छापा। 1931 में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा। हिंदी गद्य के निर्माता नाम से पुस्तक के 2 खंडों में उन्होंने साहित्य सेवियों का जीवन परिचय छापा। कवि भूषण का छत्र प्रकाश, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, तुलसीदास का रामचरितमानस, हमीर रासो, परमाल रासो, कबीर ग्रंथावली, भारतेंदु नाटकावली जैसे 25 से अधिक विषयों पर ग्रंथों का पुनरीक्षण और संपादन किया। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक चिंतामण घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का आरंभ किया। वो नागरी प्रचारणी सभा के संपर्क में थे और मौलिक हिंदी साहित्य छापने के लिए उत्सुक भी। बाबू श्याम सुंदर दास ने लगभग 3 वर्षों तक हिंदी के पहले मासिक पत्र सरस्वती का संपादन किया। इसके माध्यम से जन जागृति और समाज उपयोगी लेख उन्होंने छापना शुरू किया। इसी प्रेस के माध्यम से पहली बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का साहित्य हिंदी में सामने आया। साहित्य के साथ साथ भारतीय कलाओं की उन्नति में भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का अप्रतिम योगदान रहा। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1929 में कला परिषद का काम भी संभाल लिया, जो भारत कला भवन के नाम से 3 मार्च सन 1929 को आरंभ हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य सेवा में लगे रहे। उन्होंने इतना अधिक संग्रहण और संपादन का काम किया कि उनका अपना मौलिक लेखन घुटता गया। इतना परिश्रम कर हिंदी को सुस्थापित करने वाले वो अकेले ही थे। उनकी साहित्य सेवा को देखते हुए उन्हें कई सम्मान और उपाधियों से नवाजा गया। अपने एक निबंध में वो लिखते हैं, ये जीवन संग्राम 2 भिन्न सभ्यताओं के संघर्ष से और भी तेज और दुखमय प्रतीत होने लगा है। इस अवस्था के अनुकूल ही जब साहित्य उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा, तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे और इसका कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का गौरव प्रदान करेगा।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ग्रीन हाउस का ब्राह्मण राजदूत हनुमंत राव और बर्क की अनोखी मित्रता। 1781 की गर्मियों में लंदन के सबसे असामान्य कूटनीतिक आवासों में से एक कोई महल नहीं बल्कि बीकन्स फील्ड का एक ग्रीन हाउस यानी पौधा घर था। यहाँ के अतिथि थे हनुमंत राव, जो एक उच्च जातीय ब्राह्मण राजदूत थे। उन्हें पदच्युत मराठा पेशवा द्वारा भ्रष्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ न्याय मांगने के लिए भेजा गया था। उनके मेजबान दिग्गज और मशहूर विचारक एडमंड बर्क थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दुर्लभ सांस्कृतिक सम्मान का परिचय देते हुए अपने ग्रीन हाउस को ब्राह्मणों के कठोर अनुष्ठान के लिए एक अभयारण्य में बदल दिया। हनुमंत राव का दैनिक जीवन एक विदेशी भूमि पर अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे फर्श पर अपना भोजन स्वयं बनाने पर जोर देते थे और कमर से ऊपर लगभग निर्वस्त्र रहते थे, भले ही अंग्रेजी ठंडी हवाएं कांच के शीशों को झकझोर रही हों। उनके प्रवास का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका अटूट अनुशासन था। यदि भोजन करते समय कोई गैर ब्राह्मण उन पर केवल एक नजर भी डाल देता तो वे आध्यात्मिक अपवित्रता से बचने के लिए तुरंत पूरे भोजन का त्याग कर देते थे। इन बाधाओं के बावजूद राजदूत और अंग्रेजी कुलीन वर्ग के बीच आत्मीय बंधन बन गया। हनुमंत राव बर्क और चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के काफी करीब आ गए थे। उन्होंने एक दुभाषी के माध्यम से उन्हें बताया कि उनकी उपस्थिति उन्हें वैसे ही सहारा देती है जैसे एक गेंडा अपने बच्चों को केवल निहार कर उनका पोषण करता है। हालांकि वे देखने में एक विदेशी एकांतवासी लगते थे, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंट थे। उनके द्वारा दी गई जानकारियों ने ब्रिटिश संसद को हिंदू कानूनों पर सबसे प्रामाणिक विवरण प्रदान किया, जिसने अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स के ऐतिहासिक महाभियोग की नींव रखी। हनुमंत राव के प्रवास ने यह सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय काला पानी पार करने के बाद भी अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति एक अडिग चट्टान की तरह बना रह सकता है।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: मित्रों, हर लड़की के लिए पढ़ने जैसी कहानी लड़के के लिए शिक्षा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा उसके दिल में होती है। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, अपने मित्र अशोक भाई की। अशोक भाई ने घर में पैर रखा, बोले, सुनती हो? आवाज सुनी अशोक भाई की पत्नी ने, हाथ में पानी का गिलास लेकर के बाहर आई। अशोक भाई बोले, अपनी सोनल का रिश्ता आया है, भला अच्छा इज्जतदार परिवार है, लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है, बस सोनल हां कह दे तो सगाई कर देते हैं। सोनल उनकी एक ही लड़की थी, घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। हां, अशोक भाई सिगरेट पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी सोनल के साथ बोलचाल बंद हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई उसे मजाक में निकाल देते थे। सोनल खूब समझदार और संस्कारी थी, एसएससी पास करके ट्यूशन पढ़ाती थी, सिलाई का काम करके पापा की मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। अब तो सोनल ग्रेजुएट हो चुकी थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से एक रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते, बेटा यह पगार तेरे पास रख, भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से सोनल और युवराज की सगाई कर दी गई, शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन ही बाकी थे। अशोक भाई ने सोनल को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है दहेज में कुछ नहीं चाहिए, ना रुपया, ना गहने और ना ही कोई चीज। तो बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए ये कुछ पैसे जमा करे थे, ये 2,00,000 रुपए हैं, मैं तुझे देता हूं, भविष्य में तेरे काम आएंगे, तो अपने खाते में जमा करवा देना। ओके पापा। सोनल ने छोटा सा जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। समय जाते देर कहां लगती है। शुभ दिन आया, बारात आंगन में आ गई। पंडित ने विवाह की विधि शुरू की। फेरे गिरने का समय आ गया। कोयल जैसे कूहकी हो, सोनल ने दो शब्दों में बोला, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी मौजूदगी में अपने पापा से कुछ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन युवराज और ससुर जी की सहमति से आपने जो मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया था, मैं उसे आपको वापस देती हूं। इन रुपए से मेरी शादी के लिए हुआ उधार आप वापस कर देना। दूसरा चेक 3 लाख रुपए का, जो मैंने अपनी पगार की बचत में से जमा किए थे, वो मैं आपको देती हूं। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तो इतना तो कर ही सकता था। वहां पर सभी की नजर सोनल पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज मांगूंगी वो आप मुझे दोगे? अशोक भाई ने भारी आवाज में कहा, हाँ बेटा। बस इतना ही बोल सके वो। तो पापा, आप मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूं। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन आज तो बरातियों की आंखों से आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से सोनल को लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। 501 रुपए का लिफाफा मैं अपनी जेब से निकाल नहीं पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं क्या लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, क्या भ्रूण हत्या करने वालों को सोनल जैसी संस्कारी लक्ष्मी मिलेगी?

0: दीन मोहम्मद, लेखक, रसोईया और राजाओं का शैम्पूइंग सर्जन। 1794 में पटना के एक व्यक्ति ने अंग्रेजी साहित्य के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। शेख दीन मोहम्मद ने द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद प्रकाशित की, जिससे वे अंग्रेजी भाषा में किताब लिखने वाले पहले भारतीय लेखक बन गए। लेकिन उनकी असाधारण कहानी प्रिंटिंग प्रेस से बहुत दूर शुरू हुई थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सर्जन के सहायक के रूप में शामिल हुए और अंततः कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1784 में वे आयरलैंड के कॉक शहर गए, जहां उन्होंने एक आयरिश महिला के साथ भागकर शादी की और 1807 में लंदन आने से पहले 2 दशक एक रियासत के प्रबंधन में बिताए। वहां वे खानपान की दुनिया के पद प्रदर्शक बने और 1810 में हिंदुस्तानी कॉफी हाउस खोला, जो लंदन का पहला भारतीय मालिकाना हक वाला रेस्टोरेंट था। भारत से लौटे अमीर अंग्रेजों के लिए इसे भारत के एक टुकड़े के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें बांस की बेत वाले सोफे और हुक्का पीने के लिए विशेष कमरे थे, जिसने नशे के अधिकार को एक उच्च सामाजिक शिष्टाचार में बदल दिया। हालांकि उनका सबसे दिलचस्प परिवर्तन ब्राइटन के तट पर हुआ। खुद को शैम्पूइंग सर्जन के रूप में नया नाम देते हुए उन्होंने ब्रिटेन को औषधीय वाष्प स्नान और मालिश की भारतीय चिकित्सीय कला से परिचित कराया। उनके उपचार इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें राजा जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ के निजी सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया। आज ब्रिटिश इतिहास में उनकी विरासत इतनी महत्वपूर्ण है कि उनकी कहानी यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता परीक्षा का हिस्सा है। ये साबित करता है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अंग्रेजी भाषा पर महारत हासिल की, अंततः उसी ने ब्रिटिश संस्कृति के मर्म को परिभाषित किया।
1: और अब समय है हमारे कार्यक्रम कला कलोलिनी का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
2: और संदीप के साथ मैं हूं मनीषा।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे नृत्य सम्राट उदय शंकर की। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम विश्व में रोशन किया है और अपने असाधारण योगदान से अपना और राष्ट्र का नाम अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया और दूसरों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से प्रेरणा दी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे एक महान कलाकार की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, परंतु उनकी प्रस्तुतियां रचनात्मक होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में रहे।
2: हाँ श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में आधुनिक नृत्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य की संस्कृति से दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। हाँ, उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइन, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध के नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इसमें वेशभूषा, यंत्र संगीत, ताल और लय आदि का आविष्कार भी किया। कला की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो तमाम बंधनों और समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गए हैं। उदय शंकर उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने नृत्य कला को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं बल्कि संस्कृति सेतु बना दिया।
1: इसलिए तो उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इस बात को यहाँ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर समकालीन रूप देकर नई पहचान दिलाई। जब भारतीय नृत्य विश्व पटल पर अपने लिए एक बड़ा सम्मान अर्जित कर रहे थे, उसी 1930 के दशक में भारत में भी शास्त्रीय नृत्यों के रूपों का पुनरुत्थान हो रहा था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही थी, और उस समय विदेशी शासन के बावजूद भारतीय अपनी स्वदेशी कलाओं पर गर्व कर रहे थे। उस समय उदय शंकर जो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य की किसी भी शैली में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
2: ये तो सही है कि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, परंतु उनके नृत्य बहुत रचनात्मक होते थे। अनेक नृत्य परंपराओं को और साथ ही उनकी तकनीकी कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर अपने नृत्य नाटकों की रचना करने में उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस विषय में उनका योगदान अपने मन में आई भावनाओं और विषय को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त शैली और रूप के साथ रचनात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा देने का हुनर रखते थे। नृत्य के पारंपरिक तरीके से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उन सभी को अलग रखा, एक और अलग एकीकृत रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके इसी तरह के प्रयोग देखकर लोगों के सामने उनकी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई। उस्ताद अलाउद्दीन खां और विष्णुदास शिराली, जो कि सुविख्यात पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, उनके साथ उदय शंकर ने पेरिस में अपने एकल और युगल बैले नृत्य के लिए रचनात्मक संगीत के साथ प्रयोग किए।
1: जी हाँ, उदय शंकर ने केवल भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया, जिसने उनकी रचनाओं और नृत्यों के संगीत को एक अनोखा रंग प्रदान किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कई नवाचारों ने हमारे संगीत के रुझान को और समृद्ध किया है। और इस बात का एक ठोस आधार ये भी है कि उनकी प्रशिक्षण पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नर्तकों को उनके द्वारा प्रस्तुत बैले नृत्यों के लिए तैयार किया गया, जो संभागीय रहता था। और इसमें उनकी नृत्य तकनीक, लोक नृत्य, तात्कालिक नृत्य मंच और वेशभूषा डिजाइन, श्रृंगार, प्रारंभिक शारीरिक आयाम, भावपूर्ण गतिविधियां, शरीर की संवेदनशीलता का विकास, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सामूहिक भावना और उसका अवलोकन, चरणों का ज्ञान, गति का मनोविज्ञान, रंग और रेखा की समझ, नृत्य और नाटक का संबंध, ये सब शामिल रहा।
2: श्रोताओं, यहाँ इस बात को भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि इनके छोटे भाई रविशंकर वही हैं जिन्हें हम सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं। उदय शंकर के पिता संस्कृत के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए और वहां से वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बने। पिता को अपने काम के सिलसिले में बहुत अधिक घूमना पड़ता था, इसलिए उदय शंकर के परिवार ने अपना ज्यादातर समय अपने मामा के परिवार में अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ नसरतपुर में बिताया।
1: उदय शंकर की शिक्षा भी इसी कारण अलग अलग जगह पर हुई, जिसमें नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ शामिल हैं। नृत्य के अलावा उदय शंकर चित्रकला, संगीत, शिल्पकला और फोटोग्राफी में भी महारत रखते थे। शिक्षा उन्होंने अपने गाजीपुर के स्कूल में अपने शिक्षक अंबिका चरण मुखोपाध्याय से हासिल की थी। नृत्य कला का सारा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया। एक साक्षात्कार में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी ये कला माँ की बदौलत है। बचपन में उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उन्हें साड़ी और गहने पहनाती थी और संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती और फिर नाचने के लिए भी कहती थी। तब उन्हें जो भी नृत्य करने का मन करता वो कर लेते, पर उन्हें नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन वो कर लेते और उन्होंने किया, और इसके लिए वो सदा अपनी माँ को आभारी मानते रहे। इसकी शुरुआत उनकी माँ ने ही कराई।
2: बचपन में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों के अलावा लोक नृत्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी मुख्यतः चित्रकला में थी, ये प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल थी कि झालावाड़ के महाराजा ने उनके पिता को उदय को सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाने को मना लिया और यहाँ से डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद 1920 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए लंदन चले गए।
1: हाँ, और इसके अलावा उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और हर नजरिए से पूर्णता मिले, बस इसी पर जोर रहता था। वे जानते थे कि वे अपने दर्शकों में और उत्सुकता कैसे जगा सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के बारे में उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी।
2: जिन दर्शकों ने उनके इंद्र, कार्तिकेय और शिव के एकल नृत्य देखे हैं, वे उनके द्वारा रचित कलात्मक और मनमोहक छवियों को लंबे समय तक ज्यों की त्यों अपने मन मस्तिष्क में सजाए रहते थे। मंच पर नृत्य प्रस्तुति के समय उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत नजर आता था, जो दर्शकों के मन में समा जाता था। वे अपने इस विशिष्ट गुण से दर्शकों पर सदा जादू कर देते थे।
1: जी हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक ही की है। उनमें जो ये दुर्लभ गुण था उसे दोहराया नहीं जा सकता है। बस जिन्होंने उन्हें मंच पर प्रस्तुति देते हुए देखा है उनके मन में उनकी स्मृति बसी हुई है। सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की प्रतिभा की और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको अब उनके जन्म के बारे में जानकारी दे दें। उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1920 राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। वैसे तो वे मूलतः नरेल, जो बांग्लादेश में आता है, वहां के एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे।
2: उनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी था। अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील थे और राजस्थान में ही झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। उनके पिता को नवाबों द्वारा हर चौधरी की उपाधि दी गई थी, किंतु उन्होंने हर चौधरी में से हर को हटा दिया। अपने नाम के साथ सिर्फ चौधरी का प्रयोग करना ही पसंद करते थे। उदय शंकर की माँ हेमांगिनी देवी भी एक बंगाली जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके अन्य बच्चों के नाम राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर और रविशंकर थे।
1: श्रोताओं, चित्रकला की प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल और विलक्षण थी कि उन्होंने 5 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही तब उदय को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हुए बिताए गए वो असंख्य घंटे ही थे जो उदय शंकर को नृत्य की ओर वापस ले आए।
2: फिर क्या था, उदय शंकर के मन में भारतीय मूर्तियों की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में देवी देवताओं के चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो गया और उन्होंने तब उन मुद्राओं का अनुसरण करना आरंभ किया। हालांकि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, फिर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस फिर तो वो चित्र ही उनके लिए प्रेरणा बन गए और फिर उदय शंकर ने उन चित्रों को नृत्य की गति में ढाल दिया।
1: कॉलेज में पढ़ते हुए ही 1922 में उन्होंने अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लीग ऑफ मर्सी द्वारा आयोजित किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के शाही चार्टर द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश संस्था थी और इस नृत्य प्रस्तुति की किंग जॉर्ज पंचम ने भी सराहना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें दर्शकों में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा भी मौजूद थी और उन्होंने उदय शंकर को नृत्य करते देखा तो उन्हें उदय शंकर की नृत्य शैली बहुत पसंद आई और बाद में अन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को कुछ भारतीय नृत्य बनाने की जिम्मेदारी दी। तब उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा को राधा कृष्ण और हिंदू विवाह के नृत्य तैयार कर दिए, जो उन्हें बहुत पसंद भी आए।
2: ये दोनों बैले नृत्य जो उदय शंकर ने तैयार किए थे पश्चिम में बहुत पसंद किए गए, क्योंकि तब तक वहां के लोगों ने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा था। अन्ना पावलोवा के साथ कई नृत्यों की कोरियोग्राफी करने में उदय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये अन्ना पावलोवा ही थी जिन्होंने उदय शंकर को अपनी भारतीय तकनीक और शैली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उदय शंकर ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा कि अन्ना ने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पश्चिमी शैली का अनुकरण ना करूं, क्योंकि पश्चिम के लोग नृत्य में वो सब कुछ देखना पसंद करेंगे जो कि भारतीय कला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।
1: इस तरह अन्ना पावलोवा के साथ 1 साल बिताने के बाद उदय शंकर ने 1924 में पेरिस में अपनी नृत्य मंडली को शुरू तो किया, लेकिन पावलोवा की कंपनी से दूर जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि अन्ना पावलोवा के साथ उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए मिली सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पेशेवर और आर्थिक स्थिरता मिली थी और कंपनी छोड़ने के बाद उदय शंकर बेरोजगार हो गए थे। और जब जीवन में पहली बार बिना किसी संरक्षण के परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई थी और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो बहुत छोटे छोटे आयोजनों में भी नृत्य के कार्यक्रम देने लगे। 1-2 साल इसी तरह जीवन संघर्ष चलता रहा और यही वो कार्यक्रम और आयोजन थे जहां उदय शंकर ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाकर उनसे एक अटूट रिश्ता बनाया।
2: समय निकला और बदला भी, और इसके साथ ही 1926 के आसपास उदय शंकर के लिए और भी चीजें बदलने लगी। उस समय उनके ट्रिप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और उनकी माँ के साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। तब दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रिप ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उदय शंकर ने अपनी अलहदा नृत्य शैली के साथ नए नए प्रयोग किए और अपने नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हो गए।
1: अब देखा जाए तो उदय शंकर के संघर्ष और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। उनके इस काम में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और हालात को सहते हुए मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया, पर स्वयं को टूटने नहीं दिया।
2: और फिर अन्ना पावलोवा के ही ट्रुप के दो पूर्व सदस्यों एडिलेड और सोकी नाम की दो बहनों के साथ काम किया और कुछ समय बाद उन्होंने पेरिस की पियानो वादिका सिमोनो वाडियर के साथ मिलकर काम किया और सिमकी नाम के साथ नृत्य की दुनिया में अपना धमाल मचाया। कहा जाता है कि सिमकी के साथ तो एक नए युग की ही शुरुआत हुई। तब उदय शंकर ने नए नृत्यों की कोरियोग्राफी शुरू की जिसमें एकल और युगल दोनों ही तरह के नृत्य शामिल थे।
1: और फिर तो उदय शंकर और सिमकी नृत्य में साझेदारी जल्दी बेहतर लोकप्रिय हो गई और उन्हें बहुत सारे शोज करने के लिए जल्दी जल्दी आमंत्रित भी किया जाने लगा। काम, शोहरत, इज्जत सब कुछ सामने आ गया। उन्हीं दिनों यूरोप के दौरे के दौरान उदय शंकर की मुलाकात स्विस चित्रकार और मूर्तिकार एलिस बोनर से हुई। वे उदय शंकर के नृत्य पर मोहित और प्रभावित हो गईं और उन्होंने उदय शंकर की नृत्य मुद्राओं की मिट्टी से मॉडल और चित्रों के द्वारा एक श्रृंखला तैयार की।
2: तब तक उदय शंकर सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तब उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाने लगा था। उदय शंकर के भाव और भंगिमाओं को देखकर वो चकित हो गए। उदय शंकर के नृत्य के पीछे उन्होंने भारत के प्राचीन स्वरूप, संस्कृति और मूर्तिकला के भाव को समझा। तब उन्हें लगा कि भारतीय मंदिरों पर बनी मूर्तियां उदय शंकर के इस नृत्य के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी थी कि वे इसे जानने के लिए भारत आईं और उदय शंकर के नृत्य को उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, काशी के घाटों और सांस्कृतिक चित्रों में देखा।
1: उन पर आधारित एलिस की कलाकृतियां BHU के भारत कला भवन म्यूजियम की दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित हैं, जहां उदय शंकर के नृत्य को और दूसरी भारतीय कलाओं के तालमेल को बताया गया है। उदय शंकर ने एलिस बोनर के साथ 1930 में भारत भ्रमण कर नृत्यों की भाव भंगिमाओं का चित्रांकन किया। एलिस 1931 में ही उदय शंकर के साथ काशी भी आई और तब यहाँ केसी घाट ने उन्हें फिर वापस कहीं और जाने नहीं दिया।
2: उस समय भारत या बनारस में नृत्य को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। इस कारण उदय शंकर को कहीं से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तब एलिस बोनर ने बनारस से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में उनके कार्यक्रम तथा वेशभूषाओं की व्यवस्था देखने का जिम्मा उठाया और इस तरह एलिस बोनर और उदय शंकर ने लगभग 30 साल तक एक साथ काम किया। एलिस बोनर भारतीय कला और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत तो आई उन्हें देखने ही थी, लेकिन 80 घाट पर जहां वो रहने लगी उस जगह आज एलिस बोनर इंस्टीट्यूट है।
1: और इधर उदय शंकर के संगीत और नृत्य प्रेम से गाजीपुर स्थित बिरनो ब्लॉक नसरतपुर के लोग आज भी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। उनकी यादें आज भी गांव के लोगों के मन में बसी हैं, जो उन्हें याद रखे हैं। नसरतपुर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में उदय शंकर का परिवार बंगाली बाबू के नाम से मशहूर था और पूरा परिवार शुरू से ही व्यवहार कुशल और व्यक्तित्व का धनी था। उनके परिवार के सदस्य सदा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव वासियों के प्रति उनका उदार रवैया ग्रामवासी कभी भुला नहीं पाएंगे।
2: उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का प्रणेता माना गया है क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आयामों में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक के साथ अपने नए रंग भरकर 1920 से 1930 तक के दशक में उसे यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देशों में प्रतिष्ठित किया। अपने कुछ मित्रों की सलाह पर वर्ष 1938 में उदय शंकर ने भारत लौटकर हिमालय पर्वत की गोद में बसे प्रकृति की खूबसूरत नेमत से भरपूर अल्मोड़ा शहर को अपनी भावी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुना।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्कूल भारत में संचालित करने का मन बनाया था और इसके लिए वर्ष 1939 में अल्मोड़ा शहर में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई। इस काम में उनके साथ कथकली के प्रख्यात गुरु शंकरन नमूदरी, भरतनाट्यम के कंडप्पा पिल्लई, मणिपुरी के अंबी सिंह और संगीत के मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान शामिल थे।
2: और इसमें उनके इस समूह में गुरुदत्त, मैडम सिमकी, अमला, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सैगल, लक्ष्मी शंकर, विष्णु रास, मंगेश राव, प्रभात गांगुली, शिशिन भट्टाचार्य, माधवन नायर, कनकलता तथा उनके अपने भाई रविशंकर भी छात्र रूप में शामिल हो गए। लेकिन इतने गुणी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद ये केंद्र मात्र 4 वर्ष ही अस्तित्व में रहा। उनके अभिनव प्रयोगों के बावजूद उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर धन की कमी के कारण 1942 में बंद हो गया। बड़े भारी मन से उदय शंकर ने अल्मोड़ा छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। तब उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर का सारा सामान लंबे समय तक अल्मोड़ा में ही पड़ा रहा।
1: हम यहाँ सामान का जिक्र श्रोताओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उदय शंकर के माने गए कथकली नृत्य गुरु पंडित शंकरन नंबूदरी का दिया हुआ उपहार भी शामिल है, जिसके बारे में उदय शंकर का कहना था कि इससे उनका अंतरंग जुड़ाव है। तो हुआ यूं कि अल्मोड़ा में बाकी पड़े सारे सामान के साथ उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले एक विशाल और भव्य धातु निर्मित पानस यानी कि ऊंचा दीपक, जिसे हमारे यहाँ समय कहा जाता है और केरला में इसे पानस कहा जाता है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो वो पानस अर्थात समय भी था और इस पानस अर्थात समय को भी उसी सामान के साथ रखा गया था जिसकी नीलामी होनी थी। पीतल धातु से बने 1 क्विंटल वजन से भी ज्यादा वजनी इस पानस को उदय शंकर को उनके गुरु पंडित नंबूदरी ने उपहार में दिया था।
2: उदय शंकर ने अपने इन गुरु से केरल जाकर उनके गांव में ही रह रह कर नृत्य की भंगिमाओं एवं बारीकियों को सीखा था। ये पानस यानी समय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें दीपक जलाने के लिए लगभग 2 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और एक साथ 100 बत्तियां जलती हैं और बत्तियां जलाने वाले हिस्से की परिधि भी लगभग 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस पानस को 2 भागों में खोला जा सकता है और इस प्रयोग से पहले जोड़कर इसे पूरा किया जाता है, तब इसका उपयोग हो पाता है।
1: श्रोताओं, किसी विशेष अवसर पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले इसके सभी हिस्सों को खोलकर अलग कर लिया जा सकता है और दीप प्रज्वलन के लिए उसे पुनः जोड़ा जाता है। ये इतना भारी है कि इसकी ऊपरी चक्कर को खोलने के लिए 3-4 व्यक्ति पकड़कर घुमाते हैं तब कहीं ये खुल पाता है। इस पानस की नीलामी के समय उदय शंकर मन से बहुत द्रवित थे। वे दुखी मन से बोले थे कि चाहे इस पानस का मूल्य कम भी मिले लेकिन ये पानस केवल उस व्यक्ति को ही मिले जो कला का पारखी हो और इस अमूल्य धरोहर को संजो कर रख सके, क्योंकि इससे मेरा अंतरंग जुड़ाव है।
2: उदय शंकर की इच्छा के अनुसार ये पानस हरिकिशन लाल शाह गंगोला और उनके पुत्र जगदीश लाल शाह गंगोला ने खरीदा, जो गंगोला परिवार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यहाँ श्रोताओं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस पानस को 1943-44 में नीलामी के बाद पहली बार 1954 में अल्मोड़ा में आयोजित शरद उत्सव में प्रज्वलित किया गया था।
1: जी, और तब से अल्मोड़ा नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों में इस पानस अर्थात समय के दीप प्रज्वलित कर अनेक शख्सियतों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया है, जिनमें प्रमुख है मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान, प्रख्यात सितार वादक और उदय शंकर के छोटे भाई भारत रत्न पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी, जोहरा सैगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और उदय शंकर के पुत्र आनंद शंकर। गंगोला परिवार के सदस्यों का कहना है कि उदय शंकर जैसे कलाकार का ये पानस समय वर्तमान में भी अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उदय शंकर के योगदान का गवाह है और आज भी ये रंगकर्मी और संस्कृति प्रेमियों के लिए नृत्य सम्राट उदय शंकर के महान योगदान का एक प्रेरक स्तंभ बना हुआ है।
2: अब बात करें उदय शंकर के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने मित्र अक्षय नंदी की छोटी बहन और उनके ट्रुप में काम करने वाली 11 वर्ष छोटी खूबसूरत नृत्यांगना अमला नंदी से 1939-8 मार्च को विवाह कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमला ने 1942 में उनके पुत्र आनंद शंकर को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक गायक और संगीतकार बने। जीवन में चले उतार चढ़ाव ऊंच नीच को सुलझाते हुए जीवन की डगर पर चलते हुए अमला ने उदय शंकर की दूसरी संतान खूबसूरत पुत्री ममता शंकर को जन्म दिया, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और कोलकाता में उदयन डांस कंपनी भी चलाती हैं।
1: और चलिए अब बात करते हैं भारतीय आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट था नृत्य पर एक फिल्म निर्माण करने का। वो चाहते थे कि उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसलिए एक संस्थान की स्थापना भी वो करना चाहते थे। इधर उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, वो सोचते थे कि उनका नृत्य बना रहे, बचा रहे, बसा रहे। और सन 1965 में एक ऐसा संस्थान बनाया गया बंगाल के कोलकाता शहर में। इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया।
2: अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी बनाई नृत्य विधा को संजोए रखने के लिए बनाई गई फिल्म कल्पना की। ये काम जोर शोर से चलने लगा। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म का लेखन, निर्देशन, नृत्य निर्देशन स्वयं उदय शंकर ने किया और फिल्म में हीरो की भूमिका उदय शंकर और हीरोइन की भूमिका अमला शंकर ने निभाई। फिल्म की पटकथा अमृतलाल नागर ने लिखी और गीत सुमित्रा नंदन पंत और भील लोकगीत देवीलाल समर के थे और संगीत विष्णुदास शिराली ने रचा था।
1: श्रोता, 1948 में बनी फिल्म कल्पना एक नृत्य प्रधान फिल्म थी जो एक युवा नर्तक के नृत्य अकादमी स्थापित करने के सपने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत किया गया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक नृत्य बैले और एक फैंटेसी के रूप में फिल्माया गया था। ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन 2008 में गोवा शहर में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के खजाने के अनुभाग के एक भाग के रूप में अभिलेखागार में अन्य दुर्लभ रत्नों के साथ दिखाया गया था।
2: उदय शंकर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हुआ ये कि फिल्म बनना शुरू हुई तो पैसों की कमी के कारण उदय शंकर को अपना अल्मोड़ा वाला उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद कर देना पड़ा, जिसका उदय शंकर को बहुत गहरा धक्का लगा। और तब उनकी पत्नी अमला शंकर ने ही बड़े धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने पति उदय शंकर को संभाला और किसी तरह इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग दिया।
1: लेकिन अमला शंकर और उदय शंकर की सारी मेहनत, हिम्मत और धैर्य सब जवाब दे गए जब रिलीज के बाद फिल्म कल्पना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अब इस फिल्म की हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और संघ 2010 में मार्टिन स्कॉर्सेसे, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, उनकी कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इस फिल्म के डिजिटल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, उदय शंकर द्वारा बनाई गई कल्पना नामक फिल्म भारतीय सिनेमा की अनोखी, अनूठी प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। इस फिल्म में नृत्य कला, दृश्य कला और फिल्मांकन को एक साथ पिरोकर उदय शंकर ने दर्शकों को एक नई राह दिखाई है।
2: बिल्कुल, इसके साथ ही रचनात्मकता और भारतीय नृत्य कला में अमूल योगदान के लिए उदय शंकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1960 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद सन 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया और पुरस्कारों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और सन 1975 में उन्हें देशी कोतम नामक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
1: हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक वाजपेयी का कहना है कि उदय शंकर का नृत्य कम से कम तीन विश्वासों से प्रेरित नृत्य था। एक, शास्त्रीयता में विश्वास, दो, आधुनिकता में विश्वास और तीसरा, आत्मविश्वास। जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई, उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। हम में से वे सभी जो भारतीय नृत्य के इतिहास और उसके आधुनिक काल से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि उदय शंकर ने एक तरह की शास्त्रीय आधुनिकता विकसित करने का प्रयास किया था।
2: एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव, सुषमा, ऊर्जा, लालित्य पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, जो तब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था। दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना

0: चिंतक के रूप में वे एक और तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव सबके सामने रखना चाहते थे जो अब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था, तो दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। श्रोताओं, उस समय जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। उन्हें किसी भी तरह का शासकीय या सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। उस समय उनके वित्तीय साधन अल्प और सीमित थे। ये बात तो है क्योंकि वो नृत्य के किसी पारंपरिक परिवार से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सामूहिक समर्थन भी नहीं मिला था। उनका प्रयत्न सदा एकांतिक रहा।
1: उनका दुस्साहस, उनकी नृत्य परिकल्पना और नृत्य के प्रति उनकी जिजीविषा का ही ये फल था कि इसी काम से उनकी सार्थकता प्रकट होती है। उस समय उनके अपने व्यक्तित्व का बड़ा मोहक आकर्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व की सफलता और सार्थकता में बड़ी भूमिका रही। उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के नृत्य से उनके कई तत्वों को जोड़कर अपनी एक विशिष्ट और लगभग अद्वितीय शैली बनाई थी। यदि इन शैलियों की परंपराओं में हमेशा व्यक्तित्व का भी महत्व होता, उसका केंद्र बिंदु भी परंपरा के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं।
0: पर उदय शंकर किसी पारंपरिक शैली के नृत्यकार नहीं बने। हालांकि नृत्य की प्रत्येक पारंपरिक शैली से उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिया, फिर चाहे वो कथक हो, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली, कोई भी नृत्य विधा क्यों ना हो, नृत्य की हर शैली का प्रभाव उनके नृत्य में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी किसी एक शैली में समाहित होता नजर नहीं आता। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि उनकी थोड़ी बहुत परंपरा भी बनी, जिसमें नरेंद्र शर्मा और अमला शंकर, जो उनकी पत्नी भी थी, उन जैसे महत्वपूर्ण नर्तक भी हुए, पर कुल मिलाकर यह शैली बहुत आगे नहीं चल पाई। इसमें वे नृत्य में नवाचार के प्रतीक बने, मान्य और लोकप्रिय भी हुए, और इन्हीं नवाचारों के क्षेत्र में शास्त्रीयता में उदय शंकर से सभी ने प्रेरणा ली है।
1: नवाचार में दुस्साहस क्या और कैसे होता है, ये सब उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि उदय शंकर ने अपने नृत्य में जो आत्मविश्वास दिया, अपनी नृत्य बैले शैली में आधुनिक शैली में जो प्रयोग किए, उन्हें भी उदय शंकर के पथ प्रदर्शक अपने नृत्य प्रयोग के विस्तार के रूप में जानते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के बीच लगातार संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। उदय शंकर को मंच पर नृत्य करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुप्रसिद्ध रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने जब उदय शंकर को पहली बार मंच पर नृत्य करते हुए देखा था तो बोली थी कि लगा जैसे अजंता में चिन्हित किसी देवता ने मानव शरीर धारण कर लिया है।
0: इसी तरह इटली की मूर्तिकार एलिस बोनर ने ज्यूरिख में उनका नृत्य देखकर कहा कि उदय शंकर के शरीर में चित्र और पत्थर की प्रतिमाओं की थिरकन है। इसी तरह उदय शंकर की उंगलियां, हथेलियां, आंखें और देह की भंगिमाओं का अनूठा मेल देखकर ही उनकी पत्नी अमला ने उदय शंकर पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था। वे लिखती हैं, शिव तांडव तथा अग्नि पूजा देखकर मैं पागल हो गई कि कोई इतना सुंदर नृत्य कैसे कर सकता है, ये बात मैंने पहली बार समझी। उदय शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना, जो 154 मिनट की थी, दृश्यों की गतिशीलता में इस फिल्म में दृश्य और ध्वनि का अद्भुत मेल दिखाई और सुनाई देता है। इस फिल्म में लगभग 200 वाद्यों का प्रयोग किया गया है। लोगों ने इस फिल्म में प्रयुक्त तबला सुना तो दंग रह गए कि एक ही वाद्य यंत्र से कोई इतनी आवाजें कैसे निकाल सकता है भला।
1: इसी तरह एक बार पेरिस से जब उदय शंकर भारत आए तो मंदिरों में घूमते हुए वो केरल में कथकली नृत्य को देख के भौचक्के रह गए। उन्होंने लिखा कि बिना जाने बिना देखे मैं अपने नृत्य में ये लाता रहा हूँ। उदय शंकर का नृत्य ऐसा ही था। नृत्य पर प्रयोग की गई भारतीय संस्कृति को समेटे उनकी ये दृष्टि सदा जीवंत रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक जामा पहनाकर भारतीय संस्कृति को विश्व के हर कोने तक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है।
0: जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला की शैलियों का भी गंभीर अध्ययन किया और भारतीय नृत्य को एक समकालीन रूप देकर विचार न केवल मजबूत हुआ बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे भारतीय आधुनिक नृत्य के शिल्पी थे। यहाँ ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कला की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमरत्व पा गए हैं। उदय शंकर भी

0: महान हस्तियों में से एक नाम है जिन्होंने नृत्य को केवल एक प्रदर्शन की कला नहीं बल्कि सांस्कृतिक सेतु का रूप दिया। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। 26 सितंबर 1977 को कोलकाता में वे हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कोलकाता में उदय शंकर सेंटर ऑफ डांस आज भी उनकी समूह नृत्य परंपरा को संरक्षित और जीवित रखे हुए है, जिन्होंने कला को सीमाओं से मुक्त कर दिया।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में अभी आपने सुना प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी के बारे में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दीजिए मनीषा
0: और संदीप शर्मा। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। तो फिर मिलेंगे कला कल्लोलिनी में एक और कला मनीषी के साथ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाणी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं। कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक हैं श्री मुकेश यादव और श्री विशाल साध। संगत कलाकार हैं ढोलक पर श्री रामबली पटेल, तबले पर श्री राम यादव, ऑर्गन पर श्री विशाल साध और ऑक्टोपैड पर श्री मोहित पाटिल। श्री शिव भाई गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

0: जय हो।
1: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: भारत माता की
1: जय हो।
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
0: जो हमारा बिरसा मुंडा जी की जितना महिमा चरित्र चित्रण बोला उतनी कम है, पर एक कलाकार को प्रयास है। देखो आज भी कहावत है, ये आजादी बड़ी अनमोल है,

0: एकता मोह आनंद है।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जोसेफ एमिन, लंदन की सड़कों से आजादी के सपने तक का सफर। अगस्त 1751 में जोसेफ एमिन नाम का एक व्यक्ति लंदन के वापिंग बंदरगाह पर उतरा, जिसके पास संपत्ति के नाम पर केवल 4 शर्ट और 4 मोटे अंत वस्त्र थे। वे दोहरी मार झेला हुआ एक शरणार्थी था, जो पहले फारसी अत्याचारियों से बचकर कलकत्ता भागा और फिर कलकत्ता से लंदन पहुंचा। एमिन एक ऐसे सपने के साथ आया था जो असंभव लगता था। वे अपने प्रिय आर्मेनिया को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी लोकतांत्रिक आदर्शों का उपयोग करना चाहता था। जीवित रहने के लिए इस भावी विद्वान ने ड्रूरी लेन में एक ईंट ढोने वाले मजदूर, एक कुली और यहाँ तक कि एक किराने की दुकान पर अकुशल सहायक के रूप में काम किया। वह लंदन की सड़कों पर बेसहारा था और उसने घर लौटने के लिए अपने पिता के पैसे लेने से इनकार कर दिया था। फिर एक रविवार की दोपहर सेंट जेम्स पार्क में उसकी किस्मत बदल गई। वहां उसकी मुलाकात एडमंड बर्क नामक एक युवा आयरिश वकील से हुई। बर्क ने उसके भीतर एक तड़प को पहचाना और उसे अपने संरक्षण में ले लिया, जहां उन्होंने एमिन को राजनीतिक दर्शन और अंग्रेजी कुलीन वर्ग से परिचित कराया। एमिन का परिवर्तन बिजली की गति से हुआ। ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड और कम्बरलैंड के समर्थन से उन्होंने वूलविच की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया और ज्ञानोदय यानी इनलाइटमेंट के सैनिक बनने का प्रशिक्षण लिया। अंततः वे अंग्रेजी सेना में शामिल हुए, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़े और जॉर्जिया में एक राजनयिक बने, जहां उन्होंने अपने साथी आर्मेनियाई लोगों को स्वतंत्र करने के साहसी प्रस्ताव पेश किए। जोसेफ एमिन दुनिया के दो छोरों के बीच एक सेतु थे। 1792 की उनकी आत्मकथा में दर्ज उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि लंदन में रहने वाले शुरुआती भारतीय केवल नौकर नहीं थे, बल्कि वे दूरदर्शी थे, जिन्होंने शहर के क्रांतिकारी विचारों में अपनी मातृभूमि के नक्शे को फिर से लिखने के औजार देखे थे।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

ढलती शाम के साथ जैसे ही नृत्यांगनाओं ने पैरों में घुंघरू बांधे, रंगश्री लिटिल बैलेट ट्रुप की ऑडिटोरियम भरतनाट्यम की लय, ताल और भाव भंगिमाओं से सज उठा। अवसर था श्यामल नृत्य कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव नृत्यांजलि का, जहां 4 वर्ष की नन्ही बालिका से लेकर 50 वर्ष तक की 50 नृत्यांगनाओं ने भरतनाट्यम नृत्य की। कला क्षेत्र बानी घराने में भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां दी। नृत्य गुरु शंकर हुंबल की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम का निर्देशन अकादमी की निर्देशिका डॉक्टर सुषमा मिश्रा ने किया। वहीं जनजातीय संग्रहालय में रविवार को संभावना कार्यक्रम के तहत नृत्य गायन और वादन की प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान अनूपपुर के कलाकार सुरेंद्र सिंह मरावी ने गोंड जनजाति का कर्मा नृत्य, अशोकनगर के रामदयाल लोधी ने राई नृत्य और भोपाल के दुलारे भट्ट ने कठपुतली का प्रदर्शन किया। कलाकारों ने बताया कि कर्मा नृत्य लोगों को कर्म और मेहनत का महत्व सिखाता है। गोंड समाज में श्रम को ही हम कर्म देवता का रूप मानते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कर्म पूजा के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है, जबकि विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र की कुछ जनजातियां कर्म पूजा नहीं मानती। इस नृत्य में युवक और युवतियां मिलकर भाग लेते हैं। दोनों एक दूसरे के गीतों का जवाब गीतों से ही देते हैं, जिससे माहौल और भी रोचक बन जाता है।

दिव्यांगता उतनी बड़ी परेशानी नहीं जितना कि इसके प्रति समाज का नजरिया। हर एक में कुछ ना कुछ खास होता है। युवाओं की संस्था यंगशाला ने अपनी रूबरू संवाद श्रृंखला के अंतर्गत मिले विविध क्षमताओं वाले सितारों से और समझें समावेश विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। श्रृंखला में 80 युवाओं ने हिस्सा लिया था। दिव्यांगों के लिए काम कर रही आरुषि संस्था के संस्थापक रोहित डाउन सिंड्रोम से पीड़ित और कैफे कोशिश की मैनेजर शिवानी तथा दृष्टिबाधित कवियत्री स्नेहा ने अपने अनुभव साझा किए। यंगशाला की सदस्य रोली शिवहरि ने बताया कि इस संवाद का उद्देश्य युवाओं की सोच को बदलना था। युवाओं ने सीखा कि समावेश केवल रैंप या व्हीलचेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी भाषा, व्यवहार और नीतियों में दिखना चाहिए। बात सामुदायिक भवन शिवाजी नगर की। शिवाजी नगर स्थित सामुदायिक भवन में 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। सांसद आलोक शर्मा मुख्य अतिथि रहे। अभियांशिका सोसाइटी एवं कला भारती समिति द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। यहां आदिवासी नृत्य संगोष्ठी और लोकमाता पुष्यलोक देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन किया जा रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सांसद निधि से 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की गई।

नव प्रयास सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा रविंद्र भवन की हंसोध्वनि सभागार में तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 आयोजित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव रहे, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां 591 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में आयोजित एक समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश पटवा को सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान भव्य प्रकाशन द्वारा उनकी दीर्घ साहित्यिक साधना और हिंदी साहित्य में योगदान के लिए प्रदान किया गया। भरतनाट्यम की पेशकश में छात्राओं की भाव भंगिमाओं में जहां शिव शक्ति के दर्शन हुए, तो दूसरे ही समय माँ नर्मदा की महिमा दर्शकों को देखने को मिली। भरतनाट्यम नृत्य की ऐसी त्रिवेणी बही की दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अवसर था श्यामा नृत्य कला अकादमी द्वारा नृत्य गुरु स्वर्गीय शंकर हुम्बल की स्मृति में आयोजित नृत्य संध्या नृत्यांजलि का। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: रॉल्फ कॉटराइट का अनैतिक व्यवहार और ढहता हुआ व्यापारिक साम्राज्य 1633। क्या आप जानते हैं कि 1633 में रॉल्फ कॉटराइट नामक एक अंग्रेजी व्यापारी मसूलीपट्टनम से एक ऐसे मिशन पर निकला था जो बंगाल और उड़ीसा की उपजाऊ भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य निर्धारित करने वाला था। जहां इतिहास इस यात्रा को इसके व्यावसायिक महत्व के लिए याद रखता है, वहीं डच अभिलेखागार में इस घटना का एक कहीं अधिक अपमानजनक संस्करण सुरक्षित है, जिसे एमोरस मिसएडवेंचर अर्थात प्रेमपूर्ण दुस्साहस के रूप में जाना जाता है। कॉटराइट का गंतव्य कटक में उड़ीसा के नवाब का दरबार था। आगरा के मुगल शाही केंद्र की कठोर और पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं के विपरीत यह प्रांतीय कूटनीति की दुनिया थी। कटक के भव्य महल में कॉटराइट ने खुद को एक बेहद आत्मीय माहौल में पाया, जहां वो नवाब से कुछ ही फिट की दूरी पर दरबार के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए कॉटराइट ने आवश्यक रस्में निभाई। उसने नवाब के पैर चूमे और उपहारों का एक मामूली संग्रह भेंट किया, जिसमें लौंग, जायफल, एक सुनहरा दर्पण और एक दोनाली पिस्तौल शामिल थी। ये मिशन एक बड़ी जीत जैसा लगा। नवाब कॉटराइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे खिलअत यानी सम्मान की पोशाक पहनाई, जिसने प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज को नवाब के सामने सेवा और वफादारी के नेटवर्क में शामिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉटराइट एक परवाना हासिल करने में सफल रहा, जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने और हरिहरपुर के बंदरगाह में एक फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि बटाविया कैसल में डच द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार यह सफलता कॉटराइट के निजी आचरण के कारण नाटकीय रूप से बर्बाद हो गई। जैसे ही हरिहरपुर में अंग्रेजी लॉज का निर्माण पूरा होने वाला था, नवाब ने अचानक पूरी संरचना को नष्ट करने और गिरा देने का आदेश दे दिया। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों में ये फुसफुसाहट थी कि कॉटराइट को फैक्ट्री में अनैतिक व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका परिणाम त्वरित और गंभीर था। कॉटराइट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही उसे अपनी आजादी वापस मिली। जहां अंग्रेजी कंपनी के रिकॉर्ड इस विशिष्ट शर्मिंदगी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं डच प्रशासकों ने इस कहानी को पूरी तरह से विश्वसनीय माना। कॉटराइट की यह घटना 17वीं सदी की कंपनी राज्य की एक बुनियादी सच्चाई को दर्शाती है। वैश्विक वाणिज्य अंतर व्यक्तिक संबंधों की नाजुक नींव पर टिका था। प्रांतीय कूटनीति की उस दुनिया में जहां एक व्यापारी की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, एक अनैतिक व्यवहार एक उभरते व्यापारिक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती थी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी। याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत देश को आजाद कराने में सभी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, किसान हों, पत्रकार हों, वीरांगनाएं हों, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये। इस आजादी के समर में जिनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, और आजाद हिंद फौज की स्थापना का दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म 1897 को 23 जनवरी को कटक में हुआ था। उनके पिता वहां के एक बहुत सफल वकील थे। वकालत से बहुत सारा धन उन्होंने कमाया था। वहीं बहुत बड़ा भवन भी बनाया उन्होंने, जिसमें सुभाष ने बाद में उत्कल कांग्रेस को दे दिया। सुभाष शुरू से ही अच्छे छात्र थे। 1920 में वे ICS बने और उनका मन नौकरी में नहीं लगा। जल्द ही वे देशबंधु चितरंजन दास के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तब से वे कांग्रेस के नेता बन गए और धीरे धीरे कांग्रेस के एक महान नेता मान लिए गए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भारतीय नौजवानों के नेता माने जाते हैं। पर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तब से वे कुछ नरम पड़ गए थे, यद्यपि वे भीतर से इतने नरम नहीं थे जितना कि लोग समझते हैं, क्योंकि समाजवाद के प्रति उनकी भक्ति उसी प्रकार बनी रही। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में फर्क यह था कि सुभाष को हर समय बंगाल के क्रांतिकारियों से अनुप्रेरणा मिलती रही, यहां तक कि वे स्वयं एक क्रांतिकारी नेता भी बन गए। और इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू को अनुप्रेरणा या तो पुस्तकों से मिली थी या कुछ हद तक जनता से। जहां तक समाजवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संबंध है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संबंध में ज्यादा सचेत रहे, पर सुभाष के नजदीक स्वतंत्रता प्राप्त करना और जिस किसी प्रकार से भी प्राप्त हो सके, यही उनका मुख्य लक्ष्य रहा। इस प्रकार वे एक तरफ कांग्रेस आंदोलन में बने रहे और दूसरी तरफ भीतर ही भीतर क्रांतिकारी भी बने रहे। सुभाष कभी किसी अर्थ में गांधीवादी नहीं बने। सच तो यह है कि बंगाल के युवकों ने गांधी को कभी गंभीरता के साथ लिया ही नहीं और उसे महज साधन समझते रहे। इसी कारण कभी वे गांधी के पक्के शिष्य बने तो कभी गांधी जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भी उठी। श्रोताओं, ऐसे बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार आज हमें पुस्तकों में मिलते हैं, मगर उनके बारे में कुछ और हम टिप्पणी करेंगे। पहले सुनते हैं एक छोटा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष 1924 में 24 अक्टूबर को विशेष ऑर्डिनेंस के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए और इसी नजरबंदी में के जमाने में उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां वे बहुत अधिक बीमार पड़ गए और इस कारण जो आंदोलन हुआ उससे सरकार ने 1927 की 16 मई को छोड़ दिया और इसके बाद सुभाष ने जोरों से पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। इस प्रकार गरम दल वालों की विजय रही और 1930 में सत्याग्रह छिड़ गया था। पर यह जल्दी ही गांधी इरविन समझौते की चट्टान से टकरा करके समाप्त हो गया। जनता के दबाव के कारण, बल्कि यह कहना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार की बेईमानी के कारण फिर से आंदोलन छिड़ा, पर अब की बार आंदोलन में वह कदम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार कर लिए गए पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर एक बार 1933 में उनको छोड़ दिया गया। वे फौरन ही स्वास्थ्य सुधार करने के लिए यूरोप चले गए और इस बार की यूरोप यात्रा में सुभाष हिटलर, मुसोलिनी और डी वेल्ला से मिले। वे देख रहे थे कि कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो भारत से ब्रिटिश शासन को हटाने में दिलचस्पी रखती है, उन्हें मदद मिल सकती है। ब्रिटिश सरकार को सुभाष के इन कार्यों का पता चल गया। सुभाष लौट करके यह प्रचार करने लगे कि जल्दी ही भयानक युद्ध छिड़ने वाला है और उस समय भारत को बेड़ियों को खोल फेंकने का एक और मौका मिल गया। 1929 में यह लड़ाई छिड़ गई पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। घटनाएं फिर भी बहुत प्रबल सिद्ध हुई और गांधी जी को आंदोलन छोड़ना पड़ा। पर इसके पहले ही देश के बाहर क्रांतिकारी फिर से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने में लग गए। रास बिहारी बोस किस प्रकार जापान के युद्ध में कूदने पर आजाद हिंद फौज का संगठन किया, ये तो बाद की बात है। पर इसके पहले एक अन्य क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने क्या किया, उसका वर्णन यहां आना बहुत जरूरी है। जलियांवाला बाग में माइकल डायर ने किस प्रकार लगभग 1000 भारतीयों को मिनटों के अंदर गोलियों से भून डाला था, इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जनरल डायर ने जिस प्रकार से भारतीयों की हत्या की थी वह भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। वहां से गांधी जी चमके और भारत के नेता बन गए। पुराने नेता समझ नहीं पा रहे थे कि इस हत्याकांड का कैसे उत्तर दें। और उसके पास तो एक ही अस्त्र था और प्रस्ताव पास करना, और वह अस्त्र इस समय बेकार लग रहा था। तभी गांधी जी सत्याग्रह का तर्कश लेकर के सामने आ गए। जनरल डायर हत्या कराकर के विलायत चले गए और सुख से भारत की पेंशन पर जी रहे थे। इतने में लड़ाई छिड़ गई। संसार भर में जहां भी भारतीय था उसे फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा दिखाई देने लगी। सरदार ऊधम सिंह नामक एक युवक इन दिनों लंदन में ही थे, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और वे इंजीनियर थे। लड़ाई छिड़ते ही ऊधम सिंह के मन में यह बात आ गई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। यह एक अजीब सी बात है कि ऊधम सिंह पहले से ही क्रांतिकारी नहीं थे, पर महायुद्ध ने उनकी चेतना को उभार दिया और वे एकदम से कुछ करने के लिए व्याकुल हो गए। सरदार ऊधम सिंह ने क्या किया, यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये दूसरा प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, 1940 को 23 मार्च का दिन था। लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिगेडियर जनरल डायर सीपी सैक्स विश्व स्थित अफगानिस्तान विषय पर भाषण देने वाले थे। लॉर्ड जेंटल अध्यक्ष बनाए गए। पूर्वी देशों पर व्याख्यान था। सभा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की देखरेख में बुलाई गई थी, इसलिए पूर्वी देशों पर एक विशेषज्ञ के नाते सर जनरल डायर भी इसमें पधार गए। पहले से ही यह तय था कि वे पधारेंगे। उधर सिंह भी एक भरी हुई पिस्तौल लेकर के उस सभा में पहुंच गए। मुख्य वक्ता बोल चुके थे, जनरल डायर भी बोल चुके थे और सभा भंग होने वाली ही थी। तब उधम सिंह ने 3 गज की दूरी से माइकल डायर पर गोली दाग दी। दूसरी गोली से ही माइकल डायर गिर पड़े, फिर भी गोली चलती रही। लॉर्ड जेंटलैंड को और लॉर्ड मिल्टन को 2 गोलियां छूते हुए निकली, मगर वो बच गए। लॉर्ड स्विस जैन को कुछ चोट आई भी और उसके बाद उधम सिंह हॉल से निकलने लगे तो हवाई सेना के एक सार्जेंट क्लाउड वटी चेस ने उन्हें पकड़ लिया। सरदार उधम सिंह ने अपने बयान में कहा कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नालदार जूते के नीचे अपने देशवासियों को जो रोनते हुए देखा है, इस प्रकार अपना प्रतिवाद पेश करते हुए मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे इस बात की रंज भर भी शंका नहीं है कि मुझे आप फांसी दे देंगे या सजा देंगे। मृत्यु का भय मुझमें नहीं रह गया है। बुढ़ापे तक लड़खड़ाते हुए जीने का कोई अर्थ नहीं होता है। देश के लिए जवानी में मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार सर माइकल जनरल डायर ने जो भयंकर अपराध 1918 में किया था, एक क्रांतिकारी ने उसकी सजा दे दी। क्या कोई यह कह सकता है कि एक भारतीय के जीवन का मूल्य किसी भी प्रकार एक अंग्रेज के जीवन के मूल्य से कम है? विनायक दामोदर सावरकर ने इस अवसर पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अहिंसा की निंदा की और साथ ही कहा कि इस तरह के भी देशभक्त मौजूद हैं जो सरदार उधम सिंह की तरह 20 साल तक बदले की भावना को अपने मन में जगाए हुए हैं और अंत में उन्होंने वो काम कर डाला। उस समय महायुद्ध तेजी से चल रहा था। जर्मन अखबारों ने उधम सिंह के विषय में लेकर के यह लिखा, संसार के लोग यह देख लें कि भारत किस प्रकार ब्रिटिश शासन से सुखी है। भारत तो फौरन स्वतंत्र होना चाहता है। सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई और इस प्रकार एक तरफ उधम सिंह ने अलग जगा दिया और दूसरी तरफ अन्य क्रांतिकारी भी यह सोच रहे थे कि किस प्रकार इस मौके को हाथ से ना जाने दिया जाए। प्रथम महायुद्ध में हम रह गए, पर अब दूसरा महायुद्ध भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या उथल पुथल चल रहा था, यह हम आपको बताएंगे विस्तार से, मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। सन 1941 की जनवरी में एक दिन प्रातःकाल लोगों ने यह आश्चर्यजनक समाचार पढ़ा कि एक युवक नेता सुभाष अपने घर से गायब हो गए हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि वे साधु बनकर के हिमालय में चले गए हैं। पर यह कहानी कुछ बनती भी थी, क्योंकि बचपन से ही सुभाष बाबू का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर भी था। सुभाष बाबू के एक प्रधान सहयोगी सरदार सरदुल सिंह ने तो यहां तक वक्तव्य दे दिया कि उनको ज्ञात है कि उन दिनों सुभाष बाबू की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर हो रही थी और वे साधु होकर के दक्षिण की ओर चले गए हैं। जितने मुंह उतनी बातें सुनाई पड़ रही थी। इन बातों को सुनकर के देश के नवयुवकों को बड़ी निराशा हुई। और सच तो यह है कि लोगों ने जहां एक तरफ सुभाष बाबू को साधु बनकर के हिमालय या दक्षिण में चले जाने की बात पर विश्वास किया, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सबसे अधिक खिन्न तो ब्रिटिश सरकार थी, जो इस समाचार पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन दिनों लड़ाई बड़ी तेजी से चल रही थी और जर्मन सेना के सामने ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे हो रहे थे।
ब्रिटिश सरकार ने सुभाष बाबू के साधु होकर के चले जाने वाले समाचार पर भी कभी विश्वास नहीं किया, परंतु उसे भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि सुभाष बाबू कहाँ हैं, और इस कारण वह भी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे यह डर था कि सुभाष बाबू किसी तरह शत्रु सरकार के पास पहुंच गए तो ब्रिटिश सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। जब इस प्रकार से सारा भारत और एक प्रकार से सारा संसार कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब एकाएक सुभाष बाबू को क्या हुआ? उस समय सुभाष बाबू गाड़ी पर सवार होकर के पेशावर की यात्रा पर चल पड़े थे। घर से गायब होने से पहले भी वो कई सप्ताह पहले से किसी से मिल नहीं रहे थे, और उन्होंने यह खबर भी उड़वा दी कि वे कोई अध्यात्म साधना कर रहे हैं और इस समय किसी से मिल नहीं सकते हैं। कुछ बहुत विश्वास पात्र लोगों को ही इन दिनों वे उनसे मिल सकते थे, और सच बात तो यह है कि वे इन दिनों दाढ़ी बढ़ाने में लगे हुए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि किसी को कानो कान इस बात की खबर लग जाए, क्योंकि ऐसा होने से विपत्ति की संभावना थी। यदि सरकार को यह ज्ञात हो जाता कि दाढ़ी बढ़ा युवक जो गायब होने की खबर फैलते ही, तब सब समझ में आ जाता कि सुभाष बाबू किसी मुस्लिम देश की ओर जा रहे हैं, और इस कारण उन्होंने दाढ़ी बढ़ाने की बात को एकदम से गुप्त रखा था। दाढ़ी जब बढ़ गई तो वे पेशावर के लिए रवाना हो गए। हावड़ा से रेलगाड़ी पर बैठना असंभव था, घर में उनके चित्र थे, और इस कारण दाढ़ी बढ़ा लेने पर भी पहचाने जाने का डर था उन्हें। श्रोताओं, इसके आगे क्या हुआ, कैसे वे देश से बाहर निकले, इस पर हम रोशनी डालेंगे, मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, देशभक्ति गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि सुभाष बाबू ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और धीरे से बिना किसी को बताए हुए वे घर से गायब हो गए। वे मोटर से कलकत्ता से 40 मील दूर एक स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से रात के 8 बजे गाड़ी पर सवार हुए। उनके पास दूसरी श्रेणी का टिकट था। रात को कोई घटना नहीं हुई। दिन में भी केवल एक फौजी अफसर आया और जिसे उन्होंने इधर उधर की बातों में कह करके टरका दिया। वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे और वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे। उन्होंने अपने को बीमा कंपनी का संगठनकर्ता बताया। जब कोई बड़ा स्टेशन आता तब वे समाचार पत्र पढ़ने का बहाना करके मुंह ढक लेते थे। इस प्रकार वे 17 जनवरी को पेशावर पहुंच गए। वहां पहले से ही लोग तैयार बैठे थे और वे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे और कई कारणों से 2 दिन तक पेशावर में ही उन्हें रुकना पड़ा और उसके बाद 19 जनवरी को उन्हें पठानी कपड़े दिए गए। तब उनके साथ एक और व्यक्ति चला जिसका नाम था रहमत खां। यह व्यक्ति पाश्तो बोल लेता था और यह सुभाष बाबू को अपना बड़ा भाई बता करके परिचय देता था। सुभाष बाबू वहीं से गूंगे और बहरे बन गए थे और वो इसलिए कि उनके लिए बोलना कई तरह से विपत्तिजनक था। वे बने तो पठान थे परंतु उन्हें ना फारसी आती थी और ना ही पाश्तो। इस कारण गूंगा और बहरा उनको बनना पड़ा। रहमत खान लोगों से यह कहता रहा कि हम लोग कबायली क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम काबुल से भी आगे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग उधर आते जाते रहते हैं। इस कारण किसी को संदेह नहीं हुआ और वे कुछ हिस्सा मोटर पर तो कुछ हिस्सा पैदल चल करके काबुल पहुंच गए। परंतु काबुल पहुंचने से सुभाष बाबू की समस्या हल नहीं हुई। यद्यपि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है फिर भी किसी सरकार पर उस समय ब्रिटिश सरकार का दबाव बहुत अधिक रहता था। इसलिए आवश्यक यह था कि वो काबुल से जल्द बाहर निकल जाएं और किसी बड़े देश में पहुंच जाएं। सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे परंतु कलकत्ता में बैठ करके उन्होंने जो व्यवस्था की थी वह काबुल पहुंचने पर समाप्त हो जाती थी। उन्हें आगे की यात्रा अपनी बुद्धि के बल पर ही करनी थी। सबसे कष्टकर बात यह थी कि काबुल पहुंचते ही उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि अफगानी गुप्तचर उनके पीछे पड़ गए हैं। काबुल में वे पहले पहल एक बहुत ही गंदी सराय में ठहरे। यहां पर एक गुप्तचर उनके पीछे लगा। रहमत का यूं तो कहता था कि वह तीर्थ यात्रा के लिए भाई को लेकर के चला है परंतु वह गुप्तचर किसी प्रकार नहीं मानता था। वह रहमत खां ने उसे कभी 2 रुपए दिए तो कभी 4 रुपए और इस प्रकार उसका मुंह बंद रखा। और अंत में एक दिन उस लालची गुप्तचर ने रहमत खां के हाथ से बंधी हुई सुभाष बाबू की घड़ी भी ले ली। रहमत खां इधर उधर हाथ पांव मार रहा था कि किसी प्रकार रूसी राजदूत से संबंध हो जाए परंतु इसका अवसर नहीं आया। एक दिन रूसी राजदूत की मोटर को रोक करके रहमत खां ने टूटी फूटी फारसी में सारी बात बताई परंतु रूसी राजदूत को विश्वास नहीं हुआ और वह बात वहीं की वहीं रह गई। अब स्थिति भयंकर होती जा रही थी। बड़े कष्ट से रहमत खां को काबुल के एक महाजन उत्तम चंद का पता चला। वह व्यक्ति देशभक्त होने के साथ साथ काबुल के प्रभावशाली व्यक्तियों में भी था। उत्तम चंद पहले तो घबराया परंतु बाद में देशभक्ति ने विपत्ति की आशंका पर विजय पाई और उन्होंने सुभाष बाबू को सब प्रकार से पूरी सहायता दी। उन्हीं की सहायता से इटालियन दूतावास को खबर दी गई और धीरे धीरे यह खबर रोम और बर्लिन में भी पहुंच गई। परंतु सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे। वे डरते थे कि कहीं जर्मनी और इटली में फंस गए तो वे लोग उनसे काम लेने को तैयार हो जाएंगे पर वे जिस काम के लिए यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए निकले हैं उसमें कुछ सहायता नहीं दे पाएंगे। चेष्टा करने पर भी रूस से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका। इटली के दूतावास ने जल्दी से कोई सहायता नहीं दी पर
इस प्रकार कई सप्ताह निकल गए और यह खबर तो सुभाष बाबू को मिली कि उनके भागने की खबर रोम और बर्लिन में पहुंच चुकी है। फिर भी उधर से कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। इन सारी बातों से उबे हुए सुभाष बाबू के परामर्श पर उत्तम चंद इस बात की चेष्टा करने लगे कि चोरी से सुभाष बाबू रूस चले जाएं। जब इस बात की तैयारी होने लगे तो उत्तम चंद को स्मरण हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम में सहायता दे सकता है। उस व्यक्ति से किसी तरह भेंट की गई और उनसे परामर्श लिया गया और वह बोला कि यह काम कुछ भी नहीं है। वह इस काम में मदद देने के लिए तैयार हो गया। जब यह बातचीत चल गई तो यह पूछा गया कि वह व्यक्ति इस काम में सहायता देने के लिए क्या लेगा। 700 अफगानी रुपयों पर यह काम तय हो गया। भीतर ही भीतर इटालियन दूतावास से बातचीत चल ही रही थी, परंतु उससे अधिक प्रगति इस कारण नहीं हो पा रही थी। काबुल में उनका जो दूतावास था उसको यह अधिकार नहीं था कि वह ऐसे महत्वपूर्ण विषय में कोई निर्णय अपने आप करे। इस कारण जो भी बात मालूम होती थी उसे वे रोम और बर्लिन में लिख करके भेजते थे। उन दिनों रोम और बर्लिन प्रत्येक विषय में एक दूसरे से मिलकर के काम करते थे। बात यह है कि उन दोनों देशों की यानी कि इटली और जर्मनी की सेनाएं एक होकर के महायुद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थीं। जब सुभाष बाबू तथा उत्तम चंद ने यह देखा कि इटली के दूतावास की ओर से कोई निर्णय नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वे चोरी से बाहर जाने के कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने लगे। यहां तक कि उस व्यक्ति को रुपयों का कुछ अंश भी दे दिया गया। यह योजना इतनी परिपक्व हो गई कि काबुल से चल देने की बात आई और उस व्यक्ति ने कहा कि यदि जल्दी है तो अफगानिस्तान की पश्चिमोत्तरी सीमा की ओर से जाने वाली लारी में आसन सुरक्षित करा लेते हैं, यानी कि सीट रिजर्व करवा लेते हैं। इतने में इटालियन दूतावास की ओर से यह समाचार आया कि इटली के कुछ व्यक्ति सुभाष बाबू को लेने के लिए आ रहे हैं, परंतु साथ ही यह बताया गया कि उनके आने में 6-7 दिन लगेंगे। ऐसे समय में उत्तम चंद ने बुद्धि से काम लिया और चोरी से अफगानिस्तान के रास्ते ले जाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को यह कहकर के प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि जो व्यक्ति बाहर जाने वाला है वह एकाएक बीमार पड़ गया है, उसके अच्छा होने के पश्चात ही यह कार्यक्रम चालू हो सकेगा। उस व्यक्ति को यह नहीं बताया गया कि बाहर जाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस है। उसे इतना भेद बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संभव है कि उसे भेद बता दिया जाता तो वह और रुपए मांगता, क्योंकि वह एक पेशेवर तस्कर व्यापारी और जुआरी था। जो कुछ भी कमाता था उसी को जुए में फूंक करके बैठ जाता था। सौभाग्य से इटालियन दूतावास की ओर से संदेश आ गया और वह सही प्रमाणित हुआ। एक दिन वह आया जब दूतावास की ओर से यह संदेश मिला कि सुभाष बाबू का फोटो उतरवाया जाए जिससे कि उनका पासपोर्ट बन सके। संदेश पाकर के सुभाष बाबू ने अपना फोटो उतरवाया और मिस्टर कैरोटना के नाम से उनका पासपोर्ट बनाया गया। उनका सारा सामान सूटकेस में बंद कर दूतावास के हवाले कर दिया गया। 17 मार्च को सुबह सुभाष बाबू अंतिम बार उत्तम चंद से मिले। 18 मार्च को सुबह 9 बजे सवेरे सुभाष बाबू 2 जर्मनों और 1 इटालियन के साथ रवाना हो गए। दोनों जर्मन इस कारण भेजे गए कि हिटलर यह चाहता था कि सुभाष बाबू बीच में फंस करके इटली में न रह जाएं। हिटलर चाहता था कि वे आकर के जर्मन में रहें और वहीं से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करें। सुभाष बाबू 28 मार्च को सकुशल बर्लिन पहुंच गए। यात्रा की दृष्टि से यह उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक कष्ट झेलना उन्हें नहीं पड़ा। और इसके विपरीत यदि वे चोरी से उस व्यक्ति से सहायता के रूप में रूस या जर्मनी चले जाते तो रास्ते में बहुत सारे कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ सकता था। श्रोताओं, आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद।

गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि नेताजी सकुशल बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात हिटलर से हो गई। हिटलर ने उनकी अवस्था देखी, उसने उन्हें सिंगापुर भेजने की व्यवस्था कर दी। पनडुब्बी तैयार की गई, सुभाष बाबू उसमें सवार होकर के हजारों मील दूर समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में पड़ने वाले समुद्रों पर ब्रिटिश जलसेना का पहरा रहता था। स्थान स्थान पर तैरने वाले विराट विस्फोटक भी लगे हुए थे, जिनसे स्पर्श होते ही पनडुब्बी के उड़ जाने का भी खतरा बना हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सकुशल सिंगापुर पहुंच गए। सुभाष बाबू ने बंदी करके लाए गए भारतीय सैनिकों तथा प्रवासी भारतीयों की एक सुसंगठित सेना बनाई। सुभाष बाबू की आज्ञा पाकर सारे प्रवासी भारतीयों ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए। लाखों रुपए चंदे के रूप में उनके पास आ गया। ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीयों ने अपना सर्वस्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। जापानी सरकार सहायता दे रही थी, परंतु सुभाष बाबू ने जापान की सब बातों को आंख बंद करके नहीं मानना था। कई बार जापानी अधिकारी सुभाष बाबू के बीच गहरे मतभेद भी हो गए थे, परंतु सुभाष बाबू अपने ही मत पर डटे रहते थे और वे इतना कष्ट उठा करके किसी सरकार का एजेंट बनने नहीं आए थे कि वे यह समझकर आए थे कि अंग्रेजों के दुश्मन होने के नाते जापानी भारतीयों को स्वतंत्र होने की सहायता देंगे। इसलिए जहां भी उन्हें जैसा ज्ञात हुआ उसके विपरीत आचरण हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध भी किया। यदि कोई व्यक्ति जापानियों से इस प्रकार मतभेद व्यक्त करता है, जापानी उसकी एक नहीं सुनते थे। फिर भी सारी परेशानियों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर केवल आजाद हिंद फौज बनाकर ही शांत नहीं हुए, उन्होंने एक आजाद हिंद सरकार भी बनाई। जापानियों तथा जर्मनियों से यह कहा कि सरकार के साथ उन्हें कई प्रकार के व्यवहार करना पड़ेंगे, जैसा कि वे किसी भी स्वतंत्र सरकार के साथ उनके अधिकारी करते हैं। जर्मनी और जापानियों ने इस बात को मान लिया और जर्मन पक्ष से लड़ने वाले सब सरकारों से आजाद हिंद फौज को नियमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। और एक बार एक बहुत बड़ा जापानी अधिकारी सुभाष चंद्र बोस से मिलने आया। सुभाष बाबू आजाद हिंद फौज सरकार के राष्ट्रपति थे, परंतु उस व्यक्ति ने मिलने के लिए

नियमों तथा अनुष्ठानों का पालन किया है तभी उसे मिलने की अनुमति दी गई। और ऐसे उनके जीवन में एक नहीं कई घटनाएं हुई। और श्रोताओं, इस तरह से आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हो गई। श्रोताओं, इसके बाद आजाद हिंद फौज ने बर्मा के जंगलों के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस समय जर्मनी और जापान दुर्बल पड़ने लगे थे। अमेरिका के युद्ध में आ जाने से ब्रिटिश पक्ष का पड़ला भारी पड़ रहा था। आजाद हिंद फौज सफल नहीं हो सकी थी। ज्यों ज्यों ब्रिटिश सेना विजयी होने लगी, त्यों त्यों आजाद हिंद फौज के नेतागण ब्रिटिश कारागारों में पहुंचने लगे। यहां इनकी सारी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश के नेताओं ने आजाद हिंद फौज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और जब उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने उनकी ओर से मुकदमे की पैरवी की। सुभाष बाबू पकड़े नहीं जा सके। कहा जाता है हवाई जहाज से यात्रा करते हुए हवाई जहाज में आग लग गई और वो उसी में शहीद हो गए, और इस प्रकार देश के एक साहसी नेता का अंत हो गया। श्रोताओं, ऐसे महान क्रांतिकारी को रेडियो आजाद हिंद शत शत नमन करता है, जिनके नाम से अंग्रेज सरकार थर थर कांपती थी। इस कार्यक्रम को अब हम यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह एक और नए क्रांतिकारी की कहानी लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। मैं हूं आपके साथ प्रमिला मुंशी दिवाकर।
2: और मैं हूं फराज फैयाज।
1: श्रोताओ, आज हम बात करेंगे मराठी साहित्य के एक महान नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म और टीवी के पटकथा लेखक की, जिन्होंने अपने लेखन से भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा और ऊंचाई दी। उनके नाटकों में सामाजिक, राजनैतिक और मानवीय मुद्दों की गहरी पकड़ थी। उनका नाम है विजय तेंदुलकर।
2: विजय तेंदुलकर यथार्थवाद के माध्यम से समाज की कड़ी और कड़वी सच्चाइयों को उजागर करते थे। ये सारे काम वे अपनी लेखनी के माध्यम से ही करते थे। उनका ये काम न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज के उन पहलुओं को सामने लाने के लिए महत्वपूर्ण था जो अक्सर नजरअंदाज किए जाते थे।
1: 6 जनवरी 1928 को कोल्हापुर के एक ब्राह्मण परिवार में बालक ने जन्म लिया। नाम था विजय तेंदुलकर। उन्हें बचपन से ही साहित्यिक माहौल मिला, क्योंकि उनके पिता का प्रकाशन का काम था। पिता के इस काम का बालक विजय तेंदुलकर पर इतना गहरा असर पड़ा कि उससे प्रेरित होकर उन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में अपनी पहली कहानी लिख डाली।
2: अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वे मुंबई शहर की एक चौल में रहते थे, और यही कारण रहा कि उन्होंने गरीबी और समाज के संगीन चेहरे को करीब से देखा और बड़े हुए, और फिर मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन का पहला नाटक लिखा, जो विजय तेंदुलकर ने केवल लिखा ही नहीं बल्कि उसे निर्देशित भी किया। और बस इतना ही काफी नहीं था, बालक विजय ने अपने लिखे और निर्देशित नाटक में स्वयं अभिनय भी किया, और 14 वर्ष के होने पर किशोर विजय तेंदुलकर भारत माँ की सेवा करने 1942 में भारत छोड़ो अभियान में अंग्रेजों के खिलाफ समर में कूद पड़े।
1: जिन दिनों में विजय तेंदुलकर मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहे, तब उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी को नजदीक से देखा और जाना। यही उनके द्वारा देखे गए जीवन के कड़वे सच और संघर्ष उनके नाटकों में गहराई से झलकते हैं।
2: विजय तेंदुलकर को एक यथार्थवादी, मानवतावादी और प्रयोगधर्मी नाटककार माना जाता है। सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के लिए उनका नाटक घासीराम कोतवाल के लिए उन्होंने पुणे के ब्राह्मण समाज की सत्ता, संरचना और हिंसा सभी को लोक रंगमंच के तत्वों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
1: हाँ, मराठी रंगमंच पर तेंदुलकर का गहरा प्रभाव आज भी नजर आता है। उन्होंने तमाशा जैसे लोक रंगमंच की विधाओं को आधुनिक नाटकों में प्रयोग किया है। अपने नाटक में तमाशा की भाषा शैली का उपयोग करते हुए मध्यम वर्गीय सामाजिक समस्याओं को दिखाया और प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य को अपनी नाटकीय प्रस्तुति में शामिल किया और नाटक की प्रभावशीलता को बढ़ाया।
2: ये बात भी सही है कि हिंदी रंगमंच में भी विजय तेंदुलकर के लिखे नाटकों का अनुवाद और मंचन हुआ है, और हिंदी रंगमंच पर लोक रंगमंच की विधाओं का प्रभाव रहा है, जो ग्रामीण और शहरी दर्शकों के बीच आपसी संवाद भी स्थापित करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विजय तेंदुलकर के नाटकों में हिंदी रंगमंच को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाया।
1: विजय तेंदुलकर ने अपने थिएटर ग्रुप रंगायन के माध्यम से नाटकों में कई प्रकार से नए प्रयोग करने शुरू किए। इस काम में उन्हें सुप्रसिद्ध कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्रियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिसमें श्री राम लागू, मोहन अगाशे और सुलभा देश पांडे जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से उस समय के इन नए कलाकारों ने विजय तेंदुलकर की रचनाओं को बेहतरीन रंगमंची स्वरूप प्रदान किया।
2: सन 1961 में विजय तेंदुलकर ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था गिद्दे गिद्ध। इस नाटक में एकदम नया विषय होने के कारण इसका प्रदर्शन नाटक के लिखे जाने के लगभग 9 साल बाद 1970 में संभव हो सका। नाटक गिद्दे गिद्ध में नैतिक रूप से परिवार के टूटते ढांचे और हिंसा के छिपे हुए स्वरूपों को रंगमंच की भाषा में दिखाया गया है। इस नाटक में घरेलू किंग आधारित सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा को एक नए तरीके से परिभाषित किया है। इस नाटक ने विजय तेंदुलकर को रंग जगत में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1: विजय तेंदुलकर के एक और नाटक शांता को चालू आ है, जो कि कहानी ट्रैप्स पर आधारित है। सन 1967 में लिखा और उसी वर्ष पहली बार खेला भी गया। इस नाटक ने तब नाट्य जगत में धूम मचा दी थी और साथ ही इस नाटक को लिखने के लिए विजय तेंदुलकर एक सिद्धहस्त लेखक के रूप में स्थापित भी हो गए। इसे हिंदी के खामोश अदालत जारी है शीर्षक से खेला जाता है और लगभग 60 साल पूरे होने को है। इस नाटक की लोकप्रियता का आज भी इसके मंचन में लोगों की भारी भीड़ देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं।
2: सन 1972 में विजय तेंदुलकर ने फिर अपनी कलम को उठाकर तेजी से चलाया और एक नाटक का जन्म हुआ। इसे उन्होंने नाम दिया सखाराम बाइंडर। इस नाटक में नैतिकता और मूल्यों के द्वंद को स्पष्ट रूप से उभारा गया है। इस नाटक का लेखन इतना सटीक बैठा कि आलोचकों और दर्शकों दोनों के ही द्वारा इसे काफी पसंद किया गया। इसी वर्ष उन्होंने एक और नाटक लिखा जो 18वीं शताब्दी के मराठा शासन में आई कमजोरियों को दिखाता है। ये नाटक अमरता का तत्व लिए था। इस नाटक का नाम है घासीराम कोतवाल। इसका अब तक 6000 से भी अधिक बार मंचन हो चुका है। अब तक इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का मंचन नहीं हुआ है।
1: विजय तेंदुलकर के लिखे नाटक गिद्धाड़े, कमला, कन्यादान आदि भी बहुत चर्चित हुए। विजय तेंदुलकर ने 50 से अधिक नाटकों की रचना की है और उनके नाटकों का हिंदी भाषा में लगभग 30 से अधिक नाटकों का अनुवाद हो चुका है। उनके भूत, विठला, एक जिद्दी लड़की, खामोश अदालत जारी है, गिद्ध, सखाराम बाइंडर, जाति ही पूछो साधु की, घासीराम कोतवाल, कन्यादान, कमला आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर जी की छवि, जिसे नाट्य जगत में स्वीकारा गया, वो मराठी नाटककार की सीमा में बंद कर नहीं रह सकी।
2: अपने निजी पारिवारिक जीवन में विजय तेंदुलकर ने अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े आघातों को सहा। सन 2001 में उनके पुत्र राजा और पत्नी निर्मला का निधन हो गया। इस सदमे से वे उबर भी नहीं पाए थे कि 90 के दशक में उनके लिखे धारावाहिक स्वयं सिद्ध में शीर्षक भूमिका निभाने वाली उनकी अभिनेत्री पुत्री प्रिया तेंदुलकर का भी स्वर्गवास हो गया।
1: अपने पूरे जीवन काल में विजय तेंदुलकर ने जमकर लेखन किया। उन्होंने 27 नाटक, 25 एकांकी और 16 बाल नाटक लिखे। यही नहीं, उन्होंने कहानियों और उपन्यास में भी हाथ आजमाया और लेखन के साथ साथ अनुवाद का भी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे और गिरीश कर्नाड के मशहूर नाटक तोगलक का मराठी में अनुवाद किया। इसके अलावा कई किताबों का हिंदी से मराठी और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया।
2: भारतीय रंगमंच के प्रमुख नाटककार विजय तेंदुलकर, जिनके लेखन में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है, उनके नाटक समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का सजीव चित्रण करते हैं।
1: हाँ, उन्होंने सामाजिक पाखंड, भ्रष्टाचार, समाज में महिलाओं की स्थिति, गरीबी, हिंसा, सेक्स और मृत्यु जैसे संवेदनशील विषयों को अपने नाटकों में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया है। वे अपने नाटकों में अश्लीलता और हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि ये सब उनकी कथा और प्रस्तुति की गहराई के हिस्से होते थे।
2: तेंदुलकर ने मराठी और हिंदी रंगमंच में लोक नाट्य की विधाओं जैसे तमाशा, कीर्तन और लावणी का भी प्रभावी उपयोग किया है। उनके नाटकों में लोक रंगमंच की परंपराओं के साथ आधुनिक नाटक, तकनीक का मिश्रण सामाजिक यथार्थ और सत्ता के जटिल संबंधों को उजागर करता है।
1: हिंदी रंगमंच में भी तेंदुलकर के नाटकों का अनुवाद और मंचन भी हुआ है। हिंदी रंगमंच में आरंभ से ही लोक विधाओं का प्रभाव रहा है, जो ग्रामीण और शहरी दर्शकों के बीच संवाद स्थापित करता है। विजय तेंदुलकर के लिखे नाटकों ने हिंदी रंगमंच को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाया है। उनके लेखन में पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। देखा जाए तो उन्होंने पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य को नाटकीय प्रस्तुति में शामिल किया, जिससे नाटक की प्रभावशीलता को बढ़ावा मिला।
2: विजय तेंदुलकर की लेखनी भारतीय साहित्य और रंगमंच में एक अमूल धरोहर है। उनके नाटकों और पटकथाओं ने सामाजिक यथार्थ को न केवल प्रतिबिंबित किया बल्कि उसे चुनौती भी दी। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय मुद्दों पर संवाद के लिए प्रासंगिक हैं। विजय तेंदुलकर का साहित्य को दिया ये योगदान सदा भारतीय रंगमंच और सिनेमा को नई दिशा देने वाला रहा है। उनका ये योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: विजय तेंदुलकर सदा जरा हटकर समाज में सबसे नीचे की परत में जीवन जी रहे लोगों के जीवन को मंच पर लाने के लिए जाने जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके कारण ऊपर के लोग आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं, पर उनका एहसान मानने को तैयार नहीं है। विजय तेंदुलकर उस निचले तबके के दर्द को अपने नाटकों में बयां करते हैं।
2: हाँ, उनके नाटकों में इंसान की आदम प्रवृत्तियों और कुंठाओं का वर्णन है। उन्होंने अपने नाटकों में औरत के प्रति मर्द के हिंसक रवैये और उसकी पाशविक प्रवृत्ति को भी दिखाया है। उनके लिखे नाटक सखाराम बाइंडर की कहानी भी ऐसी ही है, जो हर बार एक नई औरत को घर ले आता है। उसे लाई गई औरत से यह करार है कि उसे खाना और छत मिलेगी। इसके एवज में सखाराम जो चाहेगा वो करेगा। वो उसे लतियाएगा भी, गालियां भी देगा, और जब उसका मन भर जाएगा तो वो उसे घर से निकाल भी देगा।
1: इस नाटक में गालियों का खुल्लम खुल्ला उपयोग भी हुआ है। उन शब्दों का उपयोग किया गया है जिन्हें लोग किसी खास मौके पर तब इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी से नाराज होते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर उन शब्दों को इस्तेमाल कर अपनी भड़ास निकालते हैं। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर विजय तेंदुलकर पर समाज में अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगाया। बात हाईकोर्ट तक पहुंची और फिर मामला रद्द कर दिया गया। यहाँ हम कह सकते हैं कि विजय तेंदुलकर ने कुछ चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल कर समाज को आईना भी दिखाने की हिम्मत की है।
2: ऐसे ही ऐतिहासिक काल पर आधारित नाटक घासीराम कोतवाल को आज के समाज से जोड़ते हुए उन्होंने कहा था, मेरी निगाह में घासीराम कोतवाल एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति की ओर संकेत करता है। वो स्थिति ना पुरानी है और ना नई, और ना ही वो किसी भौगोलिक सीमा में बंधी है, ना समय से ही। इसीलिए वो स्थल कालातीत है। इसी कारण घासीराम और नाना फडणवीस भी स्थल कालातीत हैं। सामाजिक स्थितियां उन्हें जन्म देती हैं और आगे भी देती रहेंगी। किसी भी युग का नाटककार उससे अछूता नहीं रहेगा।
1: विजय तेंदुलकर की लेखन शैली ने भारतीय फिल्म जगत को भी काफी अचंभित किया था। आजकल के स्टार्टअप्स में क्राउड फंडिंग के विचार को सबसे पहले उन्होंने फिल्म मंथन में दिखाया था, जहां कुछ महिलाएं अपनी पूंजी लगाकर दूध की सहकारी समिति चलाते हुए संघर्ष करती हैं। श्याम बेनेगल की इस पटकथा को विजय ने कैफी आजमी के साथ मिलकर लिखा था। इस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।
2: हाँ, और इसी तरह सन 1976 में आई अपराध जगत और एक पुलिस ऑफिसर के द्वंद पर बनी भारतीय सिनेमा की सबसे सशक्त फिल्म अर्धसत्य और गरीब किसानों की स्त्रियों के शोषण पर सन 1980 में बनी फिल्म आक्रोश जैसी फिल्मों की पटकथा भी विजय तेंदुलकर की कलम की ही देन है। इसमें कई सामाजिक मुद्दों को उठाया गया और इसे खूब सराहना भी मिली और राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।
1: देखा जाए तो विजय तेंदुलकर की फिल्मों की पटकथा में एक बात समानांतर चलती है, और वो ये है कि वो नाटकों में दिखती सामाजिक विसंगतियों और मानसिक बदहाली का हल भी नहीं बताते हैं, बस केवल उस समस्या को रेखांकित कर छोड़ देते हैं।
2: विजय तेंदुलकर ने कई बेहतरीन फिल्में लिखी जिन्हें सदा याद किया जाता है। इनमें श्याम बेनेगल की 1976 में आई फिल्म मंथन और 1975 में आई निशांत, ये भी श्याम बेनेगल की फिल्म थी जिसमें ग्रामीण भारत की समस्याओं को दिखाया गया है। गोविंद नहलानी की 1980 में आई आक्रोश, इसमें सामाजिक न्याय और अन्याय को दिखाया गया। 1983 में आई अर्धसत्य में पुलिस व्यवस्था और अत्याचार को दिखाया। 1979 में मराठी फिल्म सिंहासन, जो राजनीति पर आधारित थी, एक और मराठी फिल्म 1974 में आई सामना, ये फिल्म एक शिक्षक के जीवन पर आधारित थी।
1: 1984 में विजय तेंदुलकर के नाटक पर आधारित फिल्म आई थी कमला, जिसे जगमोहन मुंदड़ा ने निर्देशित किया था। इसमें मुख्य भूमिका में दीप्ति नवल, शबाना आजमी और मार्क जुबेर दिखाई दिए हैं। ये फिल्म एक पत्रकार द्वारा देह व्यापार के मुद्दे को उजागर करने के लिए एक लड़की को खरीदने की कहानी बताती है, जो समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डालती है। ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित बताई गई है। इसमें एक महत्वाकांक्षी पत्रकार कमला नाम की युवती को देह व्यापार

0: आज भी प्रासंगिक है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लेखन में समाज की जटिलताओं, असमानताओं और मानवीय संघर्ष को यथार्थवादी और संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए प्रस्तुत किया। उनके नाटक और पटकथाएं सामाजिक चेतना जगाने के साथ ही साथ न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं।
1: हम ये बात भी मान सकते हैं, जो जो समय बीतता जा रहा है, विजय तेंदुलकर की रचनाएं भी समय की उसी गति के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। उसकी वजह यह भी कही जा सकती है कि तेंदुलकर की रचनाएं सामाजिक बदलाव और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर उसकी गहन पड़ताल भी करती है। विजय तेंदुलकर के नाटकों के विषय में अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार, लैंगिक समानता, असमानता और मानवीय मूल्यों के पतन जैसे विषयों पर उनके शोध और समाज में सत्ता संरचना के विश्लेषण गहराई से नजर आते हैं।
0: यही कारण है कि भारतीय नाट्य और साहित्य जगत में उनका एक उच्च स्थान रहा है। विजय तेंदुलकर भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने समानांतर सिनेमा आंदोलन से जुड़ी फिल्मों की पटकथा लिखी। यही कारण है कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में विजय तेंदुलकर का व्यक्तित्व अलग स्थान पर जाना जाता है और पहचाना जाता है।
1: विजय तेंदुलकर को मानव स्वभाव की बड़ी गहरी समझ थी, ये बात उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने अखबारों में काम किया था और बाद में भी अखबारों के लिए लिखने लगे। 20 साल की उम्र में उन्होंने दो नाटक लिखे, अमया चार कोन, प्रेम करेन और गृहस्थ। लेकिन इन नाटकों को कोई सफलता नहीं मिली। इससे युवा तेंदुलकर का उत्साह टूट गया और उन्होंने नाटक नहीं लिखने का फैसला कर लिया।
0: लेकिन उनकी लेखनी ने एक बार फिर जोर मारा और 1956 में उन्होंने श्रीमंत नाटक लिखा। इस नाटक में एक बिन ब्याही माँ के अमीर पिता के मना करने के बावजूद अपने बच्चे को जन्म देने के लिए निर्भीक फैसले को दिखाया गया है। नाटक जगत में इसे खूब सराहना मिली, परंतु उस समय के रूढ़िवादियों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की, लेकिन नाटककार विजय तेंदुलकर पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
1: हम मराठी पत्रकारिता से अपने सक्रिय जीवन की शुरुआत करने के बाद 70 के दशक में भारतीय रंगमंच पर एक धूम केतु की तरह उनका उदय हुआ। उनका नाटक शांतिता कोट चालू आहे अपनी क्रांतिकारी संरचना के कारण इतना लोकप्रिय हुआ कि देखते ही देखते अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद किए गए और देश विदेश में ये इतना लोकप्रिय हुआ कि 100 से कहीं अधिक इसके शो किए गए।
0: जब एक रचनाकार की रचनाएं जीवन की वास्तविकता से जुड़ी होती हैं, तो समाज का एक तबका उसका विरोध तो करता ही है। बस विजय तेंदुलकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। शांता कोट चालू आहे, खासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर उनके द्वारा लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। 70 के दशक में उनके कुछ नाटकों को विरोध भी झेलना पड़ा था, क्योंकि वे वास्तविकता के नजदीक थे। परंतु फिर भी इन नाटकों का मंचन आज भी होना इस बात का प्रमाण है कि वो कितने लोकप्रिय हैं।
1: विजय तेंदुलकर के लिखे नाटकों का अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। विजय तेंदुलकर के नाटकों की ये विशेषता रही कि उन्होंने नाटकों से नाटकीयता हटाकर निकाल दी और यथार्थ को लिखा। उनके नाटक एक और पाखंड को चुनौती देते हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक सत्ता को उन्होंने अपने नाटकों में परंपरावादी और पुराने मूल्यों में जकड़े समाज पर कटाक्ष किए हैं।
0: भारतीय रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले विजय तेंदुलकर देश के महान नाटककारों में से एक थे। उन्होंने अपने नाटकों में हमेशा नए विचारों को जगा दी, जोखिम उठाया और रंगमंच पर वर्जित समझे जाने वाले विषयों को अपने नाटक की विषय वस्तु बनाया। ये साहस केवल विजय तेंदुलकर में ही देखा गया। जब लोगों ने उनके नाटकों में नैतिकता अनैतिकता पर सवाल उठाए, तब विजय ने डटकर उन सवालों का सामना किया। वो घबराए नहीं और ना ही अपनी कलम को रोका।
1: ये बिल्कुल सही कहा आपने। विजय तेंदुलकर ने अपनी लेखनी को कभी नहीं बदला, वे उसी रास्ते पर चलते रहे जिसे उन्होंने अपनाया था। ये साहस उन्हें अपनी माँ के दिए संस्कारों से प्राप्त हुआ था। उनकी माता जी एक घरेलू महिला अवश्य थी, किंतु एक आदर्श माँ के अनुरूप उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया। उनकी माताजी की स्पष्टता और निडरता के ही प्रभाव का परिणाम विजय तेंदुलकर के व्यक्तित्व और लेखन दोनों में ही दिखाई देता है। और इसी तरह लोगों के सवालों से वो कभी नहीं घबराए। बल्कि

0: जब जब लोगों ने उनके लेखन पर प्रश्न उठाए, विजय तेंदुलकर ने अपनी लेखनी के साथ साथ अपने इरादों को और भी मजबूत बना लिया।
1: विजय तेंदुलकर ने अपने नाटकों में उन शाब्दिक हिंसा को या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पहले कभी रंगमंच पर प्रयोग में नहीं लाए गए। उनका प्रयोग क्यों किया, इस बात को बिना सोचे समझे शुद्धता का बखान करने वाले तथा कथित लोगों ने बगैर सोचे समझे बस बवाल मचाया, पर उनके संदर्भ को नहीं जाना।
0: हाँ, विजय जी के नाटक बोल्ड होने के साथ साथ अपने समय से बहुत आगे भी हैं। वो यथार्थवादी हैं और भारत में यथार्थवादी नाटकों को विषय में लाने का पूरा श्रेय विजय तेंदुलकर को ही जाता है। आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच के विकास में उनका नाम अग्रणी है।
1: आधुनिक रंगमंच की अग्रिम पंक्ति में माने जाने वाले विजय तेंदुलकर को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया, जो उन्हें मराठी और साहित्य के एक दिग्गज के रूप में स्थापित करते हैं।
0: भारत सरकार द्वारा उनके साहित्यिक योगदान के लिए 1984 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला में उनके काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1970-71 में दिया गया। विजय तेंदुलकर को कला में आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1998 में दिया गया।
1: मराठी लेखन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार पुरस्कार 1956, 1969 और 1972 में दिया गया। फिल्मों में पटकथा लिखने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1980 में दिया गया। उनके मराठी नाटक अमृताच्या गावी के लिए 1993 में सरस्वती सम्मान दिया गया।
0: भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए 1999 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। मराठी साहित्य के लिए जनस्थान पुरस्कार 1999 में दिया गया। फिल्म मंथन की पटकथा के लिए 1977 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया।
1: महाराष्ट्र गौरव के लिए 1999 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2001 में कथा चूड़ामणि पुरस्कार भी दिया गया।
0: विजय तेंदुलकर को इन सम्मानों के अलावा भी कई अन्य साहित्य और नाट्य पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जो उनके बहुमुखी और प्रभावशाली लेखन का प्रमाण है।
1: आधुनिक रंगमंच के निर्माता विजय तेंदुलकर का भारतीय रंगमंच में बेमिसाल योगदान रहा, और साहस की बात करें तो अपने दौर की कड़वी सच्चाइयों को बयां करने का मादा उनमें औरों से कहीं ज्यादा था। लेखन पर उनका कहना था कि मैं आदर्शों में यकीन करने वाला लेखक नहीं हूँ, मैं अपने खुरदुरे यथार्थ के साथ ही ठीक हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे लेखन में पत्रकारिता की छाप है, पर मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता।
0: संघर्ष के शुरुआती दिनों में विजय तेंदुलकर मुंबई या चौल में निवास करते थे, और इस चौल से बटोरे उनके सृजन के बीज वर्षों उनके मराठी नाटकों में दिखाई देते रहे और उन बीजों का अंकुरण होता रहा, और उन्होंने सभी सामाजिक प्रक्रियाओं पर जमकर लिखा।
1: 5 दशक से भी ज्यादा समय तक वे सक्रिय रहे और नए प्रयोग करते हुए नई नई आए दिन की चुनौतियों का सामना भी करते रहे। उनके द्वारा लिखे हर नाटक में नैतिकता का अनोखा पुट होता रहा। वे कल्पना से परे जाकर सोचते और लिखते, यही उनका विशिष्ट अंदाज था। उनकी लिखी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं।
0: अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ समय वे मांसपेशियों के कमजोर हो जाने वाली बीमारी से भी पीड़ित रहे, और 19 मई 2008 में पुणे शहर में उन्होंने अंतिम सांस लेकर इस नश्वर संसार से विदा ली। उनके अंतिम समय में उनकी 2 पुत्रियां सुषमा और तनुजा भी उनके साथ थीं। वो एक निर्भीक लेखक के रूप में सदा अपने लेखन के साथ खड़े रहे और अपनी लेखनी चलाते रहे और अपने बहुमुखी और प्रभावशाली लेखन को दर्शाते रहे।
1: विजय तेंदुलकर की रचनाएं आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी हुई हैं। वे भारतीय नाट्य साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ थे। उनकी कृतियों ने नाटक और साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया।
0: विजय तेंदुलकर के नाटकों में मानव जीवन की विषमताओं, स्वाभाविक अस्वाभाविक मानव संबंधों, जातिगत भेदभाव और हिंसा का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनके लेखन के अधिकांश घाव मध्यम और निम्न वर्ग के रहे, और उनके विभिन्न रंग उनके नाटकों में नजर भी आते हैं।
1: उनके अचानक जीवन के रंगमंच से नेपथ्य में चले जाने के बाद भी जिंदगी के कटु यथार्थ को अनूठे अंदाज में पेश करने वाले विजय तेंदुलकर अपने नाटकों के लिए सदा याद किए जाएंगे। उन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे। तो ये था आज का शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की विजय तेंदुलकर की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनियांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, वाचन स्वर मैं प्रमिला मुंशी दिवाकर
0: और मैं फराज फैयाज।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: कर्म योग स्वामी विवेकानंद जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उनके जो व्याख्यान संकलित किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवन को गढ़ना ही है। इन व्याख्यानों को सुनने पर हमें ज्ञात होता है कि उनके विचार किस उच्च कोटि के तथा हमारे दैनिक जीवन के लिए कितने उपयोगी रहे हैं।
1: आज की परिस्थिति में संसार के लिए कर्म योग का असली रूप समझ लेना बहुत जरूरी है। आवश्यकता इतनी ही है कि इसके भावों एवं विचारों का मनन कर उन्हें कार्य रूप में परिणित किया जाए। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, स्वामी जी ने उन्हें बहुत रोचक ढंग से समझाया है।
2: कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वो हमें सुनाई नहीं पड़ता। पर जो ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, क्यों ही बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों के समष्टि स्वरूप हैं।
0: मनुष्य को जांचना हो तो उसके द्वारा किए गए महान कार्यों को नहीं, छोटे छोटे कार्यों की पड़ताल करनी चाहिए। उन्होंने कहा,
2: यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है।
1: हमारी इच्छा शक्ति ही हमसे काम करवाती है, स्वामी जी ने समझाया।
2: संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति से हो रहा है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा केवल मन का ही खेल है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्ध पोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र है। मनुष्य की ये इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है, और वो चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे, और ये शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी।
0: अच्छे काम करने की इच्छा वंशानुक्रम में नहीं मिलती।
2: बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी, वो एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती, और उसे हम अनुवांशिक शक्ति संचार भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उसके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। जोसेफ ईसा मसीह के पिता के समान तो असंख्य बड़े हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि वो बात केवल अनुवांशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई हो, तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर नहीं करते थे, एक ऐसा सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है।
1: स्वामी जी ने ईसा मसीह का उदाहरण देकर समझाया।
2: इसी प्रकार जोसेफ नामक बड़े तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है उसका स्पष्टीकरण कहां? अनुवांशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए वो आई कहां से? उस महान शक्ति का उद्भव कहां से हुआ? अवश्य युग युगांतरों से वो उस स्थान में ही रही होगी और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई है और आज तक चली आ रही है।
0: कर्म के द्वारा ही हमारी इच्छा पूर्ति होती है, स्वामी जी ने कहा।
2: एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वो देखता है कि वो संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वो केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वो अधिकारी होगा, और ये अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं? हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है।
1: हर एक कार्य करने का एक विधिवत ढंग होता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है।
2: संभव है तुम कहो, कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ? संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्म योगी का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। ये स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र है।
0: स्वामी जी ने विभिन्न उदाहरण देकर समझाया कार्य करने के कितने उद्देश्य होते हैं।
2: मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कार्य किया करता है, क्योंकि बिना हेतु कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं, दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं, फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं, कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं। चीन देशों में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी जाती है। कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है।
1: आत्म संयम के बारे में स्वामी जी ने कहा,
2: अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक चार घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है अथवा 23 घोड़ों को रोक सकता है। इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किस में होता है, घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में? एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है। इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वो फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है।
0: सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए, भला या बुरा समझकर नहीं।
2: अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम एक मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की चिंता ना करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा।
1: जो जिस कार्य का आदि होता है उसे वही करना चाहिए, उन्होंने समझाया।
2: यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट कर लाया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वो दबाव नहीं है जिसके कारण वो जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वो शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं, उसे क्लेश होता है और संभव है कि उसका मस्तिष्क ही फिर जाए।
0: निस्वार्थ कर्म करना आसान नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है।
2: परंतु हमें शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाएं, उन्हें हम हाथ में लेते जाएं और शने शने हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा ये पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे ये स्वार्थपरायणता अध्यावसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वो समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी ये आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी ना किसी दिन वो समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे, और जो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यांतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।
0: सबको अपने हिस्से का कार्य करते रहना चाहिए, उसी में भलाई है।
2: जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। ये कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये चार आश्रम घटकर केवल दो ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं सन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर उपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वर उपासना में लग जाए तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और ना अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ही ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित जीव हैं, अपने अपने स्थान में सभी बड़े हैं।
0: स्वामी जी उदाहरण देकर कहानी सुनाकर समझाते हैं।
2: इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है। एक राजा था, उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आता तो वो उनसे सदैव एक प्रश्न पूछा करता था। संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वो श्रेष्ठ है? अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ को जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए, राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा हे राजा, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उसका प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया हां मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डोंडी पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी। राजा तथा सन्यासी भी ये सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है।
0: स्वामी जी ने अमेरिका वासियों को अपने देश में पूर्व प्रचलित स्वयंवर की प्रथा को समझाया।
2: राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान आदि आदि। अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भी भाट होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा ये दर्शाते थे कि उन्हीं का वर्णन किया जाए। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वो उन सबके सामने जाती और उनका गुणगान सुनती। यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वो अपने वाहकों से कहती आगे बढ़ो, और उसके पश्चात यदि किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो उसके गले में वरमाला डाल देती और वो राजकुमार उसका पति हो जाता था।
1: कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने कहा
2: जिस देश में ये राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। ये राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही न था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए पर राजकुमारी को अपने मन का पति न मिला। इस बार का स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी स्वयंवरों की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए। परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने में वहां एक दूसरा तरुण सन्यासी पहुंचा। वो इतना सुंदर था मानो सूर्य देव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आए। वो आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और जो ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा त्यों ही वो रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और ये कहते हुए, छी छी ये क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझे विवाह की क्या प्रयोजन। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण ये राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। अतएव उसने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। और यह कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी। उस युवा सन्यासी ने माला फिर निकालकर फेंक दी और कहा, छी ये सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। और ये कहकर वो तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया कि मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने, जो राजा को यहां लाए थे, राजा से कहा, राजन चलिए इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चले। निदान वे उनके पीछे पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे। वो युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन में भली भांति परिचित था तथा वहां के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वो एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख न सकी। उसे काफी देर ढूंढने के बाद अंत में वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मालूम था। इतने में ये राजा और सन्यासी उसके पास आए और उससे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल ले चलेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं। यही एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री तथा उसके तीन बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन तीन लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो हमारे यहां ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है नहीं। ये कहकर उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी लगा लगा कर खूब आग तैयार कर ली, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से फिर कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें अपना ही शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वो आग में कूद पड़ा और भूल गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का यत्न भी किया परंतु बचा न सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन में कहा, ये तो तीन लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं। पत्नी के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रमों को मैं व्यर्थ ना जाने दूं, वे मेरा भी शरीर ले लें। और ऐसा कहकर वो भी आग में गिर गई और भूल गई। इसके बाद जब उन तीन छोटे बच्चों ने देखा कि अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त ना होगा, तो उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा न पड़ेगा। अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें, हमें अपने शरीर भी दे देने चाहिए। और ये कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। ये सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे। रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातः काल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वो अपने पिता के घर वापस चले गए। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया है कि अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो। दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो। और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो जिसके लिए वो परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य भी तृणवत था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। और यदि तुम्हें सन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम। अब ये सभा यही समाप्त होती है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं संतोष तिवारी और साथी कलाकारों द्वारा बघेली लोक गायन।
3: बसंत के ऋतु के ऊपर कुछ गीत सुनाते हैं। पहला गीत है छाई छाई बसंत बयार, कुहक उठी कोयलिया।

अक्सर आपने देखे होंगे, देखा होगा कि बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत पंचमी में हमारे तरफ यहाँ भी होता होगा कि मेले लगते होंगे, मकर संक्रांति का मेला, बसंत पंचमी का मेला, और अभी शिवरात्रि है, शिवरात्रि के भी मेले लगेंगे। मेलों की अपनी अलग परंपरा रही है, 9 दिन चैत्र में और 9 दिन कुमार में भी मेले लगते हैं। मेले में अक्सर आपने देखा होगा कि वो 4 मच्छियाँ छोटी छोटी रहती हैं, उनके वो झूले जो ऊपर से नीचे घूमते हैं, पुराने ज़माने में लकड़ी के वो आते थे, उनको रहट या यहाँ जो भी बोलते हों, लहचुआ है ना, यहाँ लहचुआ बोलते हैं और रहट बोलते हैं, उसका एक गीत सुनिएगा, उस को कहते हैं हिंडोला, और हमारे बघेले में वो हिंडोला आते आते उसका जो गायन परंपरा थी वो हिंडुली हुई, और आजकल उसे हिंदुली कहते हैं। सुनिए हिंदुली।

लीजिए, एक शंकर जी का भी गीत होना चाहिए और शिवरात्रि की परंपरा के अनुसार है। का दई के शिव का मनाई रे, मतलब हम क्या दें कि शिव मान जाएं, शिव मानत नहीं। सुनिए गीत।

से शंकर भगवान पार्वती के साथ, फिर त्रेता में भगवान श्री राम सीता जी के साथ, और द्वापर में कृष्ण भगवान राधा के साथ होली खेल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया चित्रण है।

तो श्रोताओं, संतोष तिवारी और साथी कलाकारों द्वारा बघेली लोक गायन अभी आपने सुना। इसके बाद सुनिए जुगलबंदी सरोद और सितार वादन की, जिसमें कलाकार हैं पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी।

0: तो श्रोताओं, पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी की सरोद सितार जुगलबंदी को सुनने के बाद आज का कार्यक्रम भारत भारती संपन्न होता है। दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से कुछ रोमांचक प्रसंग श्रृंखला आजादी के मुकदमे। आज सुनिए 9 अगस्त सन 1925 की घटना पर केंद्रित काकोरी कांड की पहली कड़ी।

0: ये वो दिन थे जब महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा था। पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन छिड़ गया। पूरे देश में असहयोग की लहर दौड़ गई। आंदोलन इस वेग से चला कि ब्रिटिश हुकूमत लड़खड़ाने लगी। नतीजा ये कि इसे कुचलने के लिए जायज नाजायज हर हथकंडा अपनाया गया। आंदोलनकारियों पर लाठियां गोलियां बरसाई गईं। पुलिस के सारे जुल्मों की परवाह किए बगैर असहयोग आंदोलन निरंतर जोर पकड़ता जा रहा था। हर हिंदुस्तानी को लगता था कि आजादी अब दूर नहीं। अंग्रेजों को भी लगने लगा था कि हिंदुस्तान से उनका दाना पानी उठने और बोरिया बिस्तर लपेट कर चल पड़ने के दिन आ चुके हैं। लिहाजा बौखलाई हुकूमत ने जुल्म सितम और तेजी से ढाना शुरू कर दिए। चौरी चौरा में भी जब पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोलियों का निशाना बनाने पर आमादा हो गई, तो कुछ लोगों के सब्र का बांध टूट गया। थाने में हुई आगजनी में कुछ पुलिस वाले मारे गए। हालांकि बदले की कार्यवाही करते हुए हुकूमत ने हिंसा का तांडव मचा दिया और कानून जाब्ता ताक में रखकर झूठी सच्ची गवाहियों के आधार पर कितने ही लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जनता को लगा कि देश जीती हुई बाजी हार गया। चारों तरफ निराशा फैल गई। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो आंदोलन वापस लिए जाने पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, और नौजवानों का ऐसा भी तबका था जिसका अहिंसा पर से भरोसा उठ चला था। ऐसे ही कुछ नौजवानों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के झंडे तले हिंदुस्तान में ब्रिटिश गुलामी का जुआ उतार फेंकने के लिए क्रांतिकारी मुहिम छेड़ दी।
1: हमारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, देश में प्रजातंत्र कायम करना चाहती है। जनता की चुनी हुई सरकार, आजाद हिंदुस्तान में जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, तमाम देशी रियासतों और दूसरे हिस्सों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं हम।
2: किसानों और मजदूरों पर होने वाले शोषण और लूट की हर रीत, हर व्यवस्था, हर तौर तरीके को खत्म करना। कल कारखानों और खदानों को सरमाएदारों के हाथों से निकालकर सीधे सीधे हुकूमत के हाथों में सौंपना, ताकि मजदूरों पर होने वाले जुल्म अत्याचार और शोषण का खात्मा हो, यही मकसद है हमारा।
3: आजाद हिंदुस्तान में एक ऐसे समाज की तामीर हमारी मंजिल है जहां इंसान के हाथों इंसान का शोषण ना हो।
4: बोल्शेविक क्रांति के जरिए सोवियत रूस में ऐसा समाज कायम हो चुका है भाइयों। इसी तर्ज पर देश के हालात के मुताबिक हमें भी एक सोशलिस्ट रिपब्लिक आजाद हिंदुस्तान में कायम करना है।
3: बिल्कुल।
2: ये पर्चा, जिसका उन्वान है क्रांतिकारी, हमारे इसी सोच और प्रोग्राम का खुलासा है।
1: मैंने इस पर्चे को गौर से पढ़ लिया है
2: जी।
1: हिंदुस्तान में जमहूरियत और सोशलिस्ट निजाम को कायम करने का पैगाम देने के अलावा एक और भी मार्के की बात इसमें दर्ज है, और वो ये कि हम हिंदुस्तान की आजादी पाने के लिए जिस इनकलाबी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महज जज्बाती उतावलापन नहीं है। महज उथल पुथल, तोड़ फोड़ और कत्लो गारत करने का, बम फेंकने और पिस्तौल तमंचे चलाकर दहशत फैलाने की मुहिम नहीं है।
2: ये एक निहायत संजीदा और सोची समझी रणनीति के तहत चलाई जाने वाली तहरीक है।
1: एक ऐसी तहरीक जो आम को बेदार करना चाहती है, जगाना चाहती है कि वो इस विदेशी साम्राज्यवादी और हिंदुस्तान की लूट से अपना खजाना भरने वाली हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो जाए। अपील है आम शहरियों से लेकर किसानों और मजदूरों से कि एक साथ गुलामी को उतार फेंकने और इंसान के हाथों इंसान का एक्सप्लॉयटेशन करने वाले निजाम को उखाड़ने के लिए एकजुट हो जाए। एक बराबरी के समाज, एक सोशलिस्ट सिस्टम के लिए लामबंद हो जाए।
3: जी, तब तो जरूरी है कि ये पर्चा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि हम और हमारी तरह दूसरे इंकलाबी साथियों के बारे में जो बेबुनियादी और झूठा प्रोपोगंडा अंग्रेज हुकूमत करती है, उसका पर्दाफाश हो।
1: हाँ, और आम लोग हमारे मकसद और नियत की असलियत को समझकर हमसे दूर रहने की बजाय हमारे करीब आएं, हमारे हाथ मजबूत करें।
2: यूं तो ये एक खुला पर्चा है, लेकिन रंगून से लेकर पेशावर तक हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एक बार कहीं पुलिस के हाथों में लग गया तो फिर इसका कहीं भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
4: बिस्मिल भाई, कोई ऐसी तरकीब आजमाई जाए कि एक ही दिन एक साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर में आ जाए।
2: अलग अलग जगहों पर इसे रजिस्ट्री के जरिए भेजा जाए और इस सख्त हिदायत के साथ कि मुकर्रर शुदा एक दिन पर इसे जगह जगह चिपका दिया जाए और लोगों में तकसीम किया जाए।
4: बिल्कुल ठीक, हम सब भी अपने अपने इलाकों में ले जाकर इसे हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे और गिरजाघर, यहाँ तक कि कॉलेज, स्कूल, कोर्ट, कचहरी और बाजार में एक साथ हर दीवार पर चिपका देंगे।

0: जगह जगह वॉलंटियर रात के अंधेरे में छिप छिप कर पर्चा चिपकाने लगे। लोग उसे इकट्ठा होकर पढ़ते। पुलिस के लोग कहीं कहीं से उन पर्चों को उखाड़ कर ले जाते। पर्चों को लोगों तक पहुंचाने के बाद बिस्मिल आजाद, अशफाक लहड़ी और सचिंद्र सान्याल और बनवारी लाल की एक मीटिंग हुई।
1: देखो भाइयों, हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में हथियार और कारतूस इकट्ठे करने हैं। इसके लिए काफी रुपया चाहिए। गिने चुने लोग जो चंदा छिप छिपा कर हमारी पार्टी को देते हैं, उससे तो हमारा काम हरगिज नहीं चलने वाला।
2: इस समस्या का जिक्र तो हमने अपने उस पर्चे में कर ही दिया है। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया है कि रकम जुटाने के लिए हम डाके भी डाल सकते हैं।
3: रूस में और दूसरे कई मुल्कों में इनकलाबियों ने मजबूरन डाके डालकर हथियारों का इंतजाम किया है। इनकलाब की मुहिम को आगे बढ़ाया है। जाहिर है मजबूरी में हम भी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं, लेकिन इस काम में हमें कुछ बातों का बहुत खास एहतियात बरतना होगा ताकि हमारे रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर पर कोई धब्बा ना लगे।
2: बहुत ठीक बात कही अशफाक ने। हम किसी मजबूर या जरूरतमंद को नहीं लूटेंगे, बल्कि ऐसे लोगों का रुपया लूटेंगे जो खुद दूसरों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरते हैं।
1: अरे बिस्मिल भाई, ऐसे लोगों में तो सबसे बड़ी लुटेरी तो ये फिरंगी सरकार है। क्यों ना इसी के खजानों पे हल्ला बोला जाए।
2: जरूर, बल्कि शाहजहांपुर से लखनऊ आते जाते मैंने ट्रेन में जगह जगह सरकारी आमदनी का रुपया इकट्ठा कर लखनऊ ट्रेजरी पहुंचाए जाते देखा है। अच्छी खासी रकम हो जाती है, उसे बीच रास्ते में अपने कब्जे में किया जा सकता है।
1: वाह, ये हुई कोई बात। एक ही हल्ले में पूरी हुकूमत हिल जाएगी और समझ भी जाएगी कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कितना दम रखते हैं।
3: आपकी बात सही है भैया आजाद। बेशक पूरी हुकूमत पर हमारे बुलंद हौसलों का रुतबा बैठ जाएगा, लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या अशफाक भाई?
3: कोई और छोटी बड़ी डकैती की वारदात हो तो आमतौर पर पुलिस कोई खास तफ्तीश नहीं करती जब तक उसमें खून खराबा ना किया गया हो।
1: अशफाक भाई, हम भी खून खराबे से बचना चाहते हैं, खासकर हमारे हाथ जहां तक मुमकिन हो किसी हिंदुस्तानी के खून से नहीं रंगे जाने चाहिए।
3: बिल्कुल सही, लेकिन फिलहाल हमें सीधे सीधे गवर्नमेंट से भी नहीं भिड़ना चाहिए, खास तौर पर इस वक्त जबकि हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ है।
2: लेकिन भाई अशफाकुल्ला, अपने ही भाइयों के घरों पर पहले भी 3 बार डाके डाल चुके हैं हम लोग, पर मिला क्या? इससे तो कहीं बेहतर है सरकारी खजाने लूटना, कुछ बड़ी रकम तो हाथ लगे।
3: क्यों नहीं, सरकारी खजाने लूटे जाने चाहिए, लेकिन वक्त आने पर जब हमारा संगठन बढ़ चुका हो, मजबूती से अपने पैर जमा चुका हो तब।
4: खैर भाई, अशफाकुल्ला खान ऐसा समझते हैं तो ये उनकी राय है। मेरी तो बहरहाल राय यही है कि सरकारी खजाना लूटने की स्कीम बना ली जाए, बस।
2: सभी लोग अपनी अपनी राय बता देंगे तभी कोई फैसला लिया जाएगा।
4: ट्रेन रोकी जाए और सरकारी रकम लूट ली जाए, बस।
2: लो भाई अशफाक, मेजोरिटी की राय तो तुमसे अलग है।
3: तो ठीक है, मैंने जो सही समझा कह दिया, वो मेरी राय थी और अब भी अपनी जगह पर कायम है। लेकिन
1: भाई अशफाक, अब फिर लेकिन?
3: जी हाँ, लेकिन जब मेजोरिटी ने यही तय किया है तो मेरा फर्ज है कि मैं इसका एहतराम करूं और पूरे दिलो जान से सबका साथ दूं।
2: इस एक्शन के बारे में मेरी एक शर्त है।
4: बोले।
2: जो आगे की बात कहने से पहले मैं साफ कर देना चाहता हूँ, वो ये कि एक्शन में भले ही हथियारों का इस्तेमाल हो, लेकिन वो सिर्फ डराने धमकाने के लिए होगा, किसी की जान लेने के लिए हरगिज नहीं।
4: बिस्मिल साहब, जब पिस्तौलें होंगी, राइफल्स होंगी, तो फायर तो होगा ही।
2: हाँ होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवाई फायर। हाँ, अगर कोई ऐसी हालत पेश हो कि फायरिंग जरूरी हो जाए तो उसका फैसला मौके पर मैं लूंगा। जिसे ये शर्त मंजूर हो, इस एक्शन में वही शामिल किया जाएगा।
5: हाँ मंजूर है।
6: मंजूर है।

कोई मुसाफिर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम लोगों को लूटना हमारा मकसद नहीं है, हमें सिर्फ सरकारी खजाना लूटना है। मुसाफिरों को डरने की जरूरत नहीं। खबरदार, ट्रेन से कोई बाहर निकला तो हम जिम्मेदार नहीं।

ताजा खबर, आज की ताजा खबर, डाकुओं ने ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटा, काकोरी में सरेआम ट्रेन डकैती, एक मुसाफिर मारा गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, गैर मामूली वारदात से पुलिस की नींदें गायब, हमलावर लूट मार कर नदारद हो गए। आज की ताजा खबर, आज ताजा खबर, डकैती तो कोई सुराग।

0: इतनी बड़ी वारदात अंजाम देकर सबके सब आखिर कहां गायब हो गए? हमारे हाथ क्या लगा? एक चादर, कुछ खाली और कुछ भरे कारतूस, टूटे फूटे लोहे के औजार, और तो और इतने सारे मुसाफिरों में एक भी ऐसा चश्मेदीद गवाह नहीं जो किसी एक की ठिकाने से शनाख्त कर सके।
1: कोई देख भी कैसे सकता था? एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से बाहर चलती हुई गोलियां, कोई झांक के भी कैसे देख पाता? अजीब मुसाफिरों की तो छोड़िए, उसी ट्रेन में चार चार अंग्रेज अफसर चुपचाप बैठे रहे। उस फायरिंग और धमकी के आगे सबकी हिम्मत पस्त हो गई।
0: एक मिनट, वो क्या ऐलान कर रहे थे? मुसाफिरों को लूटना हमारा मकसद नहीं है, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे, यही ना?
1: हाँ, ऐसा ही कुछ कह रहे थे, लेकिन इससे क्या जाहिर होता है?
0: यही कि वो लोग आम पेशेवर लुटेरे नहीं थे। वो चाहते तो आम मुसाफिरों को आसानी से लूटकर बहुत ज्यादा रुपया गहना हासिल कर सकते थे, लेकिन उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाना था। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो जरूर रेवोल्यूशनरी ग्रुप के लोग थे।
1: आपका अंदाजा सही मालूम होता है। ये पीले पर्चे जो कुछ अरसा पहले जगह जगह चिपकाए गए थे, इनमें भी साफ तौर पर डाके डालकर रिवॉल्यूशनरी कामों के लिए रुपया जुटाने का जिक्र है। हमें उन सभी लोगों को पकड़ लेना चाहिए जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज चलाते रहने की वजह से हमेशा शक के दायरे में रहते हैं।
0: इस किस्म के लोगों में सबसे पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल का है, मगर अव्वल तो उसके खिलाफ रत्ती भर कोई सबूत नहीं। दूसरे, वो शख्स आज भी खुलेआम इसी शाहजहांपुर में इत्मीनान से रह रहा है। भला सोचिए, ऐसी वारदात करने वाला बजाय फरार हो जाने के क्या इस तरह हमारे सामने बैठा रहता? यही हाल अशफाकुल्ला का है, दूसरी जगह के लोगों का भी यही है। वैसे वो चादर जो मौका वारदात पर मिली है, उसके बारे में तफ्तीश की गई?
1: जी हाँ, उस पर बना मार्का धोबियों का दिखाया जा रहा है।
0: उसकी शिनाख्त से जरूर कोई ना कोई सुराग मिल सकता है।
2: जनाब, लालता नाम के एक धोबी ने मार्का पहचान लिया है, मैं उसे अपने साथ ले आया हूं।
1: बुलाओ उसे।
2: लालता धोबी हाजिर है जनाब।
1: क्यों लालता, तुमने वो मार्का पहचाना?
3: जी हाँ सरकार, ये मार्का मेरा ही है। ये चादर तो एक बाबू ने धोने को दी थी, वो रामेश्वर हिंदू हॉस्टल में रहता है।
1: उसका नाम?
3: नाम तो ध्यान नहीं है हुजूर, अलबत्ता पहचान सकता हूँ।
1: जाओ फौरन उसकी शिनाख्त करवाओ।
4: चलो।
1: सीआईडी के एसपी मिस्टर हार्टन को गवर्नमेंट ने इस केस की तहकीकात के लिए डिप्यूट कर दिया है, कल वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग अलर्ट हो जाइए, रेलवे पुलिस ने जो जो बयानात दर्ज किए हैं वो लाश का पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बंदूक वगैरह, सभी जब्ती के आर्टिकल्स और हाँ, सस्पेक्टेड लोगों की फहरिस्त भी, सब कुछ लेकर हेडक्वार्टर पहुंच जाइएगा।
5: सबसे पहले उन्होंने अपना ध्यान उस पर्चे पर केंद्रित किया जिसका हेडिंग था क्रांतिकारी। पीले कागज पर छपा होने के कारण उन्होंने इसे नाम दिया येलो पेपर। डाक खानों में वारदात से पहले की गई रजिस्ट्रीज का रिकॉर्ड देखा गया और रजिस्ट्री पाने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई। जिस किसी के पास भी वो पर्चे पाए गए, उसे ट्रेन डकैती की साजिश में हिस्सा लेने वाला करार दिया गया। ये एक निहायत अजीब सी थ्योरी थी जिसका कोई औचित्य, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था।
6: That yellow paper was part of the terrible conspiracy. एक भयानक साजिश के तौर पर ये पीला पर्चा छापा गया, सर्कुलेट किया गया और इसमें धर्ज प्रोग्राम के तहत ये ट्रेन डिकॉयटी हुई। और न सिर्फ ये, बल्कि इससे पहले हुई तीन डकैतियां जो बमरौली, बिचपुरी और द्वारकापुर गांवों में ढाली गई थी, इसी गहरी साजिश का नतीजा थी। इन सभी डकैतियों में जो फायर आर्म्स इस्तेमाल किए गए वो एक से थे। ट्रेन डकैती में मौके पर जब्त कार्ट्रिजेस ठीक वैसे ही थे जो भमरौली, बिचपुरी और द्वारकापुर में मौके पर मिले। जाहिर है देहाती इलाकों के डकैत ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ना कभी करते हैं और ना कर सकते हैं। ऐसा एम्यूनिशन उन्हें दस्तियाब होना खरीब खरीब नामुमकिन है। फिर हर जगह लोगों ने यही बताया कि ढाका टालने वाले शहरी बाबू थे, अंग्रेजी ढंग के कपड़े पहने हुए थे। लिहाजा मुझे पक्का यकीन है कि ये सारी करतूतें सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशनरीज की है और एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है, जिनका खुलासा इस येलो पेपर में बहुत बोलदिली किया गया था। जिन जिन लोगों पर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज का शक है उन्हें फौरन अरेस्ट किया जाए, उन्हें पकड़कर अलग अलग जगहों पर रखा जाए, डरा धमकाकर, लालच देकर या एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां पैदा कर, जैसे भी हो उनसे सारे राज उगलवाए जाए। आप सब फौरन इस काम में जुट चाहिए। पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड में दर्ज पतों पर भी एक साथ छापे मारकर गिरफ्तारियां शुरू हो जानी चाहिए। अंडरस्टैंड?
5: मुखबिर से सुराग मिलते ही पुलिस ने बनवारी लाल को थाने में घेर कर पूछताछ की। बनवारी लाल बेहद डरा हुआ घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसने मजिस्ट्रेट एस एन उद्दीन की कोर्ट में सारे राज उगलना शुरू कर दिया। पुलिस अफसर उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। उसकी बातों के आधार पर पुलिस दस्तों ने जगह जगह जाकर छापे मारे और नौजवानों को गिरफ्तार किया। नौजवानों के पास से पीले पर्चों के बंडल, किताबें, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। यहीं से एसपी हार्टन, पुलिस सुपरिटेंडेंट तसद्दुक हुसैन और स्पेशल मजिस्ट्रेट मिस्टर एनुद्दीन की तिकड़ी ने सारे कायदे कानून और शराफत के उसूलों को ताक पे रखकर झूठी गवाहियां गढ़ने का घिनौना खेल शुरू कर दिया, जिसका सीधा सीधा मकसद था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना। दीगर क्रांतिकारियों को भी सजाए मौत या लंबी लंबी कैद की सजाएं दिलवाना। तसद्दुक हुसैन के सामने 17-18 साल के जदुनाथ सेन की पेशी हुई।
0: जदुनाथ सेन स्टूडेंट हो?
4: जी।
0: तुम इन रेवोल्यूशनरी लोगों के चक्कर में कैसे आ फंसे?
4: मैं तो सर जिस होटल में रहता हूँ वही डीएन चौधरी भी रहते हैं। बातों बातों में उन्होंने बताया था ब्लेड रेजर वगैरह के एजेंट हैं। कभी कुछ किताबें पढ़ने दे दिया करते थे। मुझे तो उनकी असलियत तभी मालूम हुई जब ट्रेन डकैती मामले में वो पकड़े गए।
0: और ऐसे किन किन लोगों को जानते हो तुम?
4: ज्यादा तो नहीं, बस कभी कभी बनारसी लाल जी से, 2-3 मर्तबा राजेंद्र नाथ लड़ी जी से वही मुलाकात हुई, और चौधरी जी से मिलने आते थे ये लोग।
0: वेट अ मिनट, तुम चौधरी को भी जानते हो और राजेंद्र लाहिड़ी को भी जानते हो? अच्छा, ये बता सकते हो ये पेन किसका है?
4: जी नहीं।
0: गौर से देखो, तुमने इसे देखा होगा उस डीएन चौधरी के पास जिसका असल नाम है गोविंद चरण कार।
4: वैसे ऐसा ही एक पेन उनके पास था तो?
0: वो यही है, उसी से जब्त हुआ है। अब तुम्हें सिर्फ इतना कहना होगा कि यही पेन तुमने राजेंद्र लाहिड़ी के पास देखा था।
4: ये देखा तो नहीं था सर।
0: अरे नहीं देखा तो अब देख लो। आइंदा जब भी तुम्हें यह पेन दिखाया जाए तुम्हें यही कहना है कि यह पेन तुमने राजेंद्र लाहिड़ी के पास देखा था। समझ गए? जाओ बाहर जाकर बैठो। देखा, बैठे बिठाए हवा में सबूत पैदा कर दिया डीएन चौधरी उर्फ गोविंद चरण कार के खिलाफ।
1: लेकिन सर ऐसे पेन तो बाजार में ढेरों मिल जाते हैं, फिर इसमें कोई खास निशान भी नहीं जिसकी बिना पर इसे किसी खास आदमी का बता सके वो लड़का।
0: एनुद्दीन साहब के इजलास पर तो यह पेन राजेंद्र लाहिड़ी का वही पेन माना जाएगा जिसका बिस्मिल के नाम भेजे खत में जिक्र है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। गोविंद चरण और लाहिड़ी के बीच गहरा ताल्लुक साबित करने के लिए लचर ही सही। इसके अलावा कोई और सबूत फिलहाल है भी तो नहीं हमारे पास?
0: लीजिए, ऐसे जुड़ते हैं तार से तार और इस तरह तैयार होते हैं सबूत।
5: अशफाक उल्ला खां के बड़े भाई रियासत उल्ला खां पुलिस के छापे में घर से जब्त की गई अपनी बंदूक वापस लेने मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंचे।
7: मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस ने मेरे घर पर छापा मार कर मेरी लाइसेंस शुदा बंदूक जब्त कर ली है, मुझे वो वापस लौटा दी जाए, ये दरखास्त पेश है। इसका कभी कोई बेजाया नाजायज इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी ये बेवजह जब्त कर ली गई।
6: तुम अशफाक उल्ला खां के भाई हो ना?
7: जी हाँ, वो मेरा छोटा भाई है।
6: वो कहाँ है?
7: मुझे नहीं मालूम, वैसे भी वो घर से अक्सर बाहर ही रहता है।
6: Stop this nonsense. तुम अच्छी तरह जानते हो वो इस वक्त कहाँ है, बल्कि इस तरह फरार होने में आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं।
7: जी नहीं, ये गलत है।
6: ओ, इंदु भूषण को तो जानते होगे ना? अशफाक उल्ला खां के नाम आया कोई खत उसने आपको दिया था, वो खत है कहा?
7: क्योंकि अशफाक उल्ला का कहीं पता नहीं है, लिहाजा मैंने उसे जला दिया।
6: और इस तरह अपने भाई के खिलाफ एक अहम सरकारी सबूत को मिटा दिया तुमने। जानते हो महज इसी जुर्म में मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूँ।
8: हार्टन साहब, ये मेरे बहुत पुराने मुलाकातियों में से हैं। मेरी गुजारिश है इन्हें माफ कर दीजिए।
6: ओके, आप मजिस्ट्रेट हैं लिहाजा आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन इनसे आप कह दीजिए अशफाक उल्ला की मदद करना बंद कर दें।
8: जी हाँ, ये तो बड़े सीधे साधे इंसान हैं। अब क्या करें बेचारे, कि इत्तेफाक से अशफाक उल्ला इनके सगे भाई हैं।
6: तो ठीक है, भाई की हैसियत से उसे समझा बुझा कर राजी तो कर सकते हैं ना।
7: राजी किस बात के लिए?
6: खुद को, आपको, आपके खुनबे को और आपके खानदान को मुसीबतों से बचाने के लिए सरकारी गवाह बन जाएं।
7: बेकार है, अशफाक उल्ला से ऐसी कोई भी उम्मीद रखना बेकार है।
6: What do you mean? You?
8: फिर भी रियासत उल्ला खां, आप कोशिश तो कीजिए। हार्टन साहब, मैं इन्हें तफसील से सारी ऊंच नीच समझा दूंगा।
7: और मेरी दरखास्त?
8: ओह हाँ, ये मैं इस पर हुक्म कर दूंगा, बाद में मालूम कर लीजिएगा।
7: जी बेहतर है।
5: मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक जिम्मेदार पुलिस अफसर ने

0: गई अपनी धांधलियों पर जुडिशियल कैपेसिटी में बहैसियत स्पेशल कमिटल मजिस्ट्रेट लीपा पोती करता रहता था। क्रांतिकारियों के गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा कसने वालों में इस शख्स का बहुत बड़ा हाथ था।
1: अभी आप आजादी के मुकदमे श्रृंखला में काकोरी कांड पर केंद्रित कार्यक्रम की पहली कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुति सुधा अनुपम। ये कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किया गया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
0: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलो के घर ना आए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: तीन तल में बंदिश सब सखिया जाओ प्रभु के दर्शन।

0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे, हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था, पूरे मोहल्ले में धूम थी। रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता, और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे, और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी-कभी 3 वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गई, तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वहां से आ गया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई, तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे, तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसे को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया, बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया था वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था, रुपया चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है, वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पढ़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्ती को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया? राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहां से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपए मूल, 5,000 रुपए ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाता हूं, विषयी हूं, कुशल हूं, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे। यहां तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐंठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ। इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है। किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता, कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है, किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलम्ब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या से आई हैं, आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पूरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा तो मकान आपका यही इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूं। यहां सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहां लोभ का ध्यान रखते हैं, वहां मैं भलाई रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानिए मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार ना करोगे? बेटा ममता बुरी होती है, संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा, मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया, पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो, तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवाकर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माता जी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उसने कहा, माता जी मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपए आते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अतः प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता जी ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं, और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधु की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
3: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
3: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज शाम की सभा में मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो, आइए उसके पहले हम आपको बताए देते हैं कि आज शाम को आप कौन से कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा अक्षय निधि के बाद मेरे साथ यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। शाम 6 बजे सुनेगा हमारा कार्यक्रम वतन का राग। आज ये कार्यक्रम बाबू श्याम सुंदर दास पर आधारित होगा। श्रोता, हम आपको बता दें कि कल यानी 14 तारीख को बाबू श्याम सुंदर दास की जयंती भी है। शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी में एक कहानी नशा मुक्ति पर। शाम 7 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। कल क्षमा कीजिएगा, आज शाम को इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शास्त्रीय नृत्यक उदय शंकर जी पर कार्यक्रम। सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे निमाड़ी गायन शिव भाई गुप्ता से, और रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा रात 8 बजे। 8:30 बजे का वक्त होगा याद करो कुर्बानी का। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम आधारित होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। रात 9 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आज हमारे इस कार्यक्रम में शब्दों के शिल्पकार हैं विजय तेंदुलकर। और रात 9:30 बजे सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: त्रयः केशिन ऋतुथावि चक्षते संवत्सरे वपत विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर् ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्। तीनों किरणों वाले पदार्थ सूर्य, अग्नि और वायु ऋतुओं के अनुसार दिखाई देते हैं। इनमें से एक सूर्य संस्कार का वपन करता है, एक अग्नि अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है, तीसरे वायु का रूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। चत्वारी वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। मनीषियों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के चार रूप हैं। इनमें से तीन वाणियां परा, पश्यन्ति तथा मध्यमा प्रकट नहीं होती। सभी मनुष्य वाणी के चौथे रूप वैखरी को ही बोलते हैं। एकम मित्रम वरुणमग्नि माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वान माहुः। एक ही शत्रु परमेश्वर का विद्वज्जन विभिन्न गुणों एवं स्वरूपों के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर इंद्र हितकारी बोलने से, मित्र श्रेष्ठ होने से, वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्ण तथा गरुत्मान हैं। कृष्णम नियानम हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिव मुत्पतन्ति त आववृत्तं सदना धृतस्यादिद घृतेन पृथ्वी व्युद्यते। श्रेष्ठ गतिमान सूर्य किरणे तथा साथ जल को उठाती हुई सबके आकर्षण के केंद्र यान रूप सूर्य मंडल के समीप पहुंचती हैं। वहां अंतरिक्ष के मेघों में स्थित जल को बरसाते हुए पृथ्वी को सिक्त कर देती हैं। द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवोर्पिताः षष्टिर्न चला चला सह। एक चक्र है, उसे 12 अरे घेरे हुए हैं, उसकी 3 नाभियां हैं, उसे कोई विद्वान ही जानते हैं। उसमें 360 चलायमान कीलें ठुकी हुई हैं। यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वती तमिह धातवे कह। हे देवी सरस्वती, जो आपका सुखदायक वरण करने योग्य पुष्टिकारक ऐश्वर्य प्रदाता कल्याणकारी विभूतियों को देने वाला स्तन स्वरूप है, उसे जगत के पोषण के लिए प्रकट करें। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, उनका धर्म कर्म में प्रथम स्थान है। इससे उन देवों ने स्वर्ग में स्थान पाया, जहां पूर्ण काल में साधना करने वाले देवता रहते हैं। समान मेतद दुदक मुच्चैत्यव चाह भी भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः। यही जल तप्त होकर वाष्प रूप में ऊपर जाता है और वही जल पर्जन्य रूप में नीचे आता है। जल बरसने से भूमि तृप्त होती है और अग्नियों प्रदत्त आहुतियों से दिव्य लोक तृप्त होते हैं। दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्मपां दर्भं दर्शतमोषधीनां अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि। द्युलोक में विद्यमान रहने वाले उत्तम गति वाले निरंतर गतिमान महिमाशाली जलों के केंद्र औषधियों को पुष्ट बनाने वाले जल वृष्टि द्वारा चतुर्दिक प्रवहमान जल प्रवाहों से भूमि को तृप्त करने वाले सूर्य देव को हम अपने संरक्षण के लिए आवाहित करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रुत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम्। ईश्वर के ध्यान में हम अपने आप को उस स्तर तक ले जाएं जहां हम अपने बुद्धि और अहंकार को भूल जाएं, ना हम अपने संवेदन से किसी और का विश्लेषण कर पाएं या उसकी आलोचना कर पाएं, हम देख पाएं तो केवल स्वयं को और केवल स्वयं को।

श्रोताओं, ये जीवन हमें ईश्वर की देन है। जो मनुष्य दूसरों का कष्ट और दुख समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं ले लेते हैं। यानी जब वो जीवन देते हैं तो लेते क्या हैं? लेते वही हैं जो दूसरों के काम आता है, उसके दुख और उसकी पीड़ा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है भक्ति संगीत। श्रोताओं, किसी ने खूब ही कहा है कि यदि आप किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक वृक्ष की तरह खड़े रहो, जैसे वृक्ष केवल छाएं देने या फिर फल और फूल देने के लिए ही खड़ा है, और यदि गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि फिर से उगकर अपने उसी मकसद को पूरा कर सको।

श्रोताओं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, और जब ऐसा लगे कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इसका कारण ये नहीं है कि आपकी प्रार्थना में कोई कमी है, जबकि बात यह है कि आपकी प्रार्थना की तीव्रता में कमी है। शुष्क सतही प्रार्थनाएं अर्पित करके आप परमपिता का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। ईश्वर तक प्रार्थना द्वारा पहुंचने का एक मार्ग और एकमात्र मार्ग यही है कि हमारी प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए, नियमितता होना चाहिए और आत्मा से गहन तीव्रता होना चाहिए।

श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि जब हमारे कपड़े गंदे और मैले होते हैं तो हमें दूसरों के सामने निकलने में एक झिझक होती है, शर्म आती है, तो फिर हमारे मन में ये कभी विचार क्यों नहीं आता कि जब भी हमें गंदे और मैले विचार घेर लें तब भी उसी तरह हमारा मन शर्म से भर जाना चाहिए, क्योंकि विचार ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: 16 जुलाई सन 1893 क्विंस कॉलेज बनारस के छात्रावास में 9वीं कक्षा के 3 छात्र बैठकर चर्चा कर रहे थे। विषय था हिंदी का भविष्य। ये 3 छात्र थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। उस समय अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला था। हिंदी बोलने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता था। विचार विमर्श के बाद हिंदी के उन्नयन के लिए एक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। नाम रखा गया काशी नागरी प्रचारणी सभा। बाबू राधाकृष्ण दास इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। 126 साल पहले स्थापित इस संस्था की आरंभिक बैठकें बनारस के सप्त सागर मोहल्ले की एक घुड़साल में होती थीं। हिंदी प्रेमियों, लेखकों, विचारकों को इसका सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया गया। धीरे धीरे इस संस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की और असंख्य पुस्तकें छापकर हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म बनारस में 16 जुलाई सन 1875 को हुआ था। इनके पिता लाला देवीदास खन्ना लाहौर से आकर यहाँ बसे थे। कपड़ों का व्यापार किया करते थे। सन 1897 में श्याम सुंदर दास ने क्विंस कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की। अपने अध्ययन काल में ही इन्होंने सन 1896-97 में नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक का भार संभाल लिया था। 3 साल इसका संपादन करने के बाद वो सन 1899 में हिंदू स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। फिर हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी के जूनियर प्रोफेसर रहे। कुछ दिन जम्मू महाराज के स्टेट ऑफिस में काम करने के बाद वो सन 1913 से 1921 तक लखनऊ के कालीचरण स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे। इसी दौरान उन्होंने पठन पाठन और कोर्स में कई विसंगतियां पाईं। हिंदी शिक्षण के आरंभिक दौर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन के लिए उन्होंने मानक पुस्तकें तैयार कीं। उनके इस प्रयास से विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी एक प्रतिष्ठित विषय के रूप में स्वीकार की गई और उसके लिए विभाग खोले गए। हिंदी को एक मानक भाषा और बोलचाल में सरल रूप से व्यवहार में लाने के लिए उसे जटिल शब्दों से मुक्त किया गया। उर्दू, फारसी, संस्कृत के कठिन शब्दों से अलग सरल भाषा के रूप में उसका विकास करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत से आम जीवन के उपयोग में आने वाले शब्दों से नुक्ते आदि हटाकर उसे सबके लिए आम बना दिया गया। इसी बीच नागरी प्रचारणी पत्रिका त्रिमासिक से मासिक हो गई और हिंदी के बड़े विद्वान इससे जुड़ने लगे। ये एक शोध पत्रिका के रूप में स्थापित हो गई। इसके माध्यम से हिंदी की एक वैज्ञानिक लेख और लिपि प्रणाली के लिए भी उन्होंने पत्रिका के माध्यम से मुहिम चलाई। ये एक सांस्कृतिक नवजागरण काल था, जिसमें पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नई विचारधाराओं और राष्ट्र के स्वाभिमान को स्थापित किया जा रहा था। नागरी प्रचारणी पत्रिका में ऐसी कविताएं और साहित्य छपने लगे जो स्वाधीनता की अलग जगा रहे थे। देश करवट ले रहा था, आशा और विश्वास के साथ एक नए भविष्य का सपना लेकर।

19वीं शताब्दी के दूसरे दशक से बनारस में स्वाधीनता की लहर जोर पकड़ने लगी। पंडित मदन मोहन मालवीय वहां विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जगह जगह से धन एकत्रित कर रहे थे। महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। मालवीय जी ने सन 1916 में गांधी जी को विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में गांधी जी ने विस्फोटक विचार प्रस्तुत करके सबको आगाह कर दिया, देश स्वतंत्र हो, इसकी वैचारिक रूपरेखा यहाँ बन चुकी थी, भाषा इसका माध्यम बने, इस प्रकार साहित्य में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। हलचल की इस लहर में बाबू श्याम सुंदर दास बनारस आकर हिंदी की सेवा में जुट गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। श्याम सुंदर दास ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और संकलन का काम शुरू किया। इनके पुनर्पाठ और संपादन के लिए उन्होंने विद्वानों की सहायता ली। भाषा विज्ञान को लेकर ग्रंथों की रचना की, सैद्धांतिक समीक्षा की, एक वैज्ञानिक प्रणाली को रूप दिया। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न लेखकों की मदद से संकलित कर व्यवस्थित काल क्रमानुसार रूप दिया। इसी क्रम में हिंदी भाषा के साहित्य को भी उन्होंने पुस्तक रूप में लाकर बड़ा काम किया। स्कूलों में शिक्षा के लिए हिंदी प्राइमरी, हिंदी की पहली पुस्तक, हिंदी ग्रामर जैसी लगभग 25 पुस्तकें तैयार की। इनके प्रयोग से स्कूल में पठन पाठन में एक रूपता आ सकी। उन दिनों न्यायालयों में सारा कामकाज उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में होता था। ग्रामीण और आम आदमी इसे ठीक से समझ नहीं पाते थे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने बकायदा एक आंदोलन की शुरुआत की, ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे। पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता से न्यायालयों में नागरी भाषा के प्रयोग को उन्होंने मान्यता दिलवाई और कोर्ट में हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ। सन 1867 में स्थापित इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश की प्राचीनतम न्यायिक संस्था थी। उसने हिंदी को अपनी कार्य व्यवस्था में स्थापित किया। हिंदी के मानक रूप को और स्थापित करने के लिए सन 1922 में नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर नामक कोष पर काम शुरू किया। ये वैज्ञानिक और विधिवत शब्दकोश मूलतः 4 खंडों में तैयार किया गया। इसके प्रधान संपादक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास ने अथक परिश्रम किया। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों के शब्द भी एकत्रित कर उनको शब्दकोश में स्थान दिया गया। लाला भगवान दीन, बाल कृष्ण भट्ट के अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र वर्मा ने भी बाद में इसमें सहयोग दिया। 1,00,000 से अधिक शब्दों वाला यह कोश स्वाधीनता के बाद लगभग 11 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ श्याम सुंदर दास ने वैज्ञानिक शब्दावली और पारिभाषिक कोश पर भी काम किया, जिसने शिक्षकों और विद्यार्थियों को विज्ञान को समझने में आसानी हुई और वो देख सके भविष्य की ओर आशा से।

हिंदी के अग्रज कवि नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा करते थे कि अपनी उन्नति के मूल में निज भाषा ही है, भाषा ही स्वाभिमान की भावपीठ है। वहीं कवि त्रिलोचन कहा करते थे, भाषा भाषा भाषा सब कुछ भाषा। हिंदी की इसी विशाल गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित कर उससे देश के स्वाभिमान को जोड़ने का काम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। प्रेस या छापाखाना देश में आ चुका था, पर अशुद्ध या विकृत साहित्य छापने की बजाय उसका पुनरावलोकन कर तर्कसम्मत भाषा सम्मत संस्करण निकालना देश हित में है। और यही विचार श्याम सुंदर दास और उनकी विद्वत मंडली ने पुरातन ग्रंथों की खोज, उनका संपादन, संग्रहण और छपाई का काम शुरू करके किया। 9 वर्षों तक वो इस काम में जुटे रहे। उस खोज का विवरण उन्होंने 2 ग्रंथों में छापा। 1931 में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा। हिंदी गद्य के निर्माता नाम से पुस्तक के 2 खंडों में उन्होंने साहित्य सेवियों का जीवन परिचय छापा। कवि भूषण का छत्र प्रकाश, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, तुलसीदास का रामचरितमानस, हमीर रासो, परमाल रासो, कबीर ग्रंथावली, भारतेंदु नाटकावली जैसे 25 से अधिक विषयों पर ग्रंथों का पुनरीक्षण और संपादन किया। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक चिंतामण घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का आरंभ किया। वो नागरी प्रचारणी सभा के संपर्क में थे और मौलिक हिंदी साहित्य छापने के लिए उत्सुक भी। बाबू श्याम सुंदर दास ने लगभग 3 वर्षों तक हिंदी के पहले मासिक पत्र सरस्वती का संपादन किया। इसके माध्यम से जन जागृति और समाज उपयोगी लेख उन्होंने छापना शुरू किया। इसी प्रेस के माध्यम से पहली बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का साहित्य हिंदी में सामने आया। साहित्य के साथ साथ भारतीय कलाओं की उन्नति में भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का अप्रतिम योगदान रहा। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1929 में कला परिषद का काम भी संभाल लिया, जो भारत कला भवन के नाम से 3 मार्च सन 1929 को आरंभ हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य सेवा में लगे रहे। उन्होंने इतना अधिक संग्रहण और संपादन का काम किया कि उनका अपना मौलिक लेखन घुटता गया। इतना परिश्रम कर हिंदी को सुस्थापित करने वाले वो अकेले ही थे। उनकी साहित्य सेवा को देखते हुए उन्हें कई सम्मान और उपाधियों से नवाजा गया। अपने एक निबंध में वो लिखते हैं, ये जीवन संग्राम 2 भिन्न सभ्यताओं के संघर्ष से और भी तेज और दुखमय प्रतीत होने लगा है। इस अवस्था के अनुकूल ही जब साहित्य उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा, तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे और इसका कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का गौरव प्रदान करेगा।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स, नमस्कार।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कहानी हमारे कार्यक्रम सुनो कहानी में।

0: मित्रों, हर लड़की के लिए पढ़ने जैसी कहानी लड़के के लिए शिक्षा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा उसके दिल में होती है। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, अपने मित्र अशोक भाई की। अशोक भाई ने घर में पैर रखा, बोले, सुनती हो? आवाज सुनी अशोक भाई की पत्नी ने, हाथ में पानी का गिलास लेकर के बाहर आई। अशोक भाई बोले, अपनी सोनल का रिश्ता आया है, भला अच्छा इज्जतदार परिवार है, लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है, बस सोनल हां कह दे तो सगाई कर देते हैं। सोनल उनकी एक ही लड़की थी, घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। हां, अशोक भाई सिगरेट पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी सोनल के साथ बोलचाल बंद हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई उसे मजाक में निकाल देते थे। सोनल खूब समझदार और संस्कारी थी, एसएससी पास करके ट्यूशन पढ़ाती थी, सिलाई का काम करके पापा की मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। अब तो सोनल ग्रेजुएट हो चुकी थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से एक रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते, बेटा यह पगार तेरे पास रख, भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से सोनल और युवराज की सगाई कर दी गई, शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन ही बाकी थे। अशोक भाई ने सोनल को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है दहेज में कुछ नहीं चाहिए, ना रुपया ना गहने और ना ही कोई चीज। तो बेटा मैंने तेरी शादी के लिए ये कुछ पैसे जमा करे थे, ये 2 लाख रुपए हैं, मैं तुझे देता हूं, भविष्य में तेरे काम आएंगे, तो अपने खाते में जमा करवा देना। ओके पापा, सोनल ने छोटा सा जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। समय जाते देर कहां लगती है, शुभ दिन आया, बारात आंगन में आ गई। पंडित ने विवाह की विधि शुरू की, फेरे गिरने का समय आ गया। कोयल जैसे कूह की हो, सोनल ने 2 शब्दों में बोला, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी मौजूदगी में अपने पापा से कुछ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, इसका कर्ज तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन युवराज और ससुर जी की सहमति से आपने जो मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया था, मैं उसे आपको वापस देती हूं। इन रुपए से मेरी शादी के लिए हुआ उधार आप वापस कर देना। दूसरा चेक 3 लाख रुपए का, जो मैंने अपनी पगार की बचत में से जमा किए थे, वो मैं आपको देती हूं। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तो इतना तो कर ही सकता था। वहां पर सभी की नजर सोनल पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज मांगूंगी वो आप मुझे दोगे? अशोक भाई ने भारी आवाज में कहा, हाँ बेटा, बस इतना ही बोल सके वो। तो पापा, आप मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे, सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूं। लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन आज तो बरातियों की आंखों से आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से सोनल को लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। 501 रुपए का लिफाफा मैं अपनी जेब से निकाल नहीं पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं क्या लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, क्या भ्रूण हत्या करने वालों को सोनल जैसी संस्कारी लक्ष्मी मिलेगी?
1: अभी आप सुन रहे थे सुनो कहानी, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

पुर्तगाली और सेंट थॉमस ईसाई। सन 1498 में जब वास्को दी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थीं, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल सन 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैंगानोर के चार जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। ये समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए, और संभवतः यहीं उनकी हत्या भी कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था, जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार अल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरों यानी मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टादो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ में आया कि ये समुदाय उनकी कल्पना से अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैंगानोर और कोल्लम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। सन 1560 तक इक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वो प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती हैं जो वे देखना चाहती हैं, और फिर उसे केवल इसलिए नष्ट कर देती हैं क्योंकि वो उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
2: और अब समय है हमारे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
3: और संदीप के साथ मैं हूं मनीषा।
2: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे नृत्य सम्राट उदय शंकर की। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम विश्व में रोशन किया है और अपने असाधारण योगदान से अपना और राष्ट्र का नाम अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया और दूसरों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से प्रेरणा दी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे एक महान कलाकार की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किसी भी स्वरूप में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, परंतु उनकी प्रस्तुतियां रचनात्मक होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन से ही वे भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के संपर्क में रहे।
3: हाँ श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में आधुनिक नृत्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य की संस्कृति से दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। हाँ, उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइन, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध के नाम से नवीन नृत्यों की रचना की। इसमें वेशभूषा, यंत्र संगीत, ताल और लय आदि का आविष्कार भी किया। कला की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो तमाम बंधनों और समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गए हैं। उदय शंकर उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने नृत्य कला को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं बल्कि संस्कृति सेतु बना दिया।
2: इसलिए तो उन्हें भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हम इस बात को यहाँ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदय शंकर ने उसे विश्व पटल पर समकालीन रूप देकर नई पहचान दिलाई। जब भारतीय नृत्य विश्व पटल पर अपने लिए एक बड़ा सम्मान अर्जित कर रहे थे, उसी 1930 के दशक में भारत में भी शास्त्रीय नृत्यों के रूपों का पुनरुत्थान हो रहा था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो रही थी, और उस समय विदेशी शासन के बावजूद भारतीय अपनी स्वदेशी कलाओं पर गर्व कर रहे थे। उस समय उदय शंकर जो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य की किसी भी शैली में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था।
3: ये तो सही है कि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, परंतु उनके नृत्य बहुत रचनात्मक होते थे। अनेक नृत्य परंपराओं को और साथ ही उनकी तकनीकी कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर अपने नृत्य नाटकों की रचना करने में उन्हें कमाल की महारत हासिल थी। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस विषय में उनका योगदान अपने मन में आई भावनाओं और विषय को विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त शैली और रूप के साथ रचनात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचा देने का हुनर रखते थे। नृत्य के पारंपरिक तरीके से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उन सभी को अलग रखा, एक और अलग एकीकृत रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके इसी तरह के प्रयोग देखकर लोगों के सामने उनकी बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई। उस्ताद अलाउद्दीन खां और विष्णुदास शिराली, जो कि सुविख्यात पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, उनके साथ उदय शंकर ने पेरिस में अपने एकल और युगल बैले नृत्य के लिए रचनात्मक संगीत के साथ प्रयोग किए।
2: जी हाँ, उदय शंकर ने केवल भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जिसने उनकी रचनाओं और नृत्यों के संगीत को एक अनोखा रंग प्रदान किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कई नवाचारों ने हमारे संगीत के रुझान को और समृद्ध किया है। और इस बात का एक ठोस आधार ये भी है कि उनकी प्रशिक्षण पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें नर्तकों को उनके द्वारा प्रस्तुत बैले नृत्यों के लिए तैयार किया गया जो संभागीय रहता था, और इसमें उनकी नृत्य तकनीक, लोक नृत्य, तात्कालिक नृत्य मंच और वेशभूषा डिजाइन, श्रृंगार, प्रारंभिक शारीरिक आयाम, भावपूर्ण गतिविधियां, शरीर की संवेदनशीलता का विकास, एकाग्रता, कल्पनाशीलता, सामूहिक भावना और उसका अवलोकन, चरणों का ज्ञान, गति का मनोविज्ञान, रंग और रेखा की समझ, नृत्य और नाटक का संबंध, ये सब शामिल रहा।
3: श्रोताओं, यहाँ इस बात को भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि इनके छोटे भाई रविशंकर वही हैं जिन्हें हम सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के नाम से जानते हैं। उदय शंकर के पिता संस्कृत के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए और वहां से वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बने। पिता को अपने काम के सिलसिले में बहुत अधिक घूमना पड़ता था, इसलिए उदय शंकर के परिवार ने अपना ज्यादातर समय अपने मामा के परिवार में अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ नसरतपुर में बिताया।
2: उदय शंकर की शिक्षा भी इसी कारण अलग अलग जगह पर हुई, जिसमें नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ शामिल हैं। नृत्य के अलावा उदय शंकर चित्रकला, संगीत, शिल्पकला और फोटोग्राफी में भी महारत रखते थे। शिक्षा उन्होंने अपने गाजीपुर के स्कूल में अपने शिक्षक अंबिका चरण मुखोपाध्याय से हासिल की थी। नृत्य कला का सारा श्रेय उन्होंने अपनी माँ को दिया। एक साक्षात्कार में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी ये कला माँ की बदौलत है। बचपन में उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उन्हें साड़ी और गहने पहनाती थी और संगीत की धुनों पर थिरकना सिखाती और फिर नाचने के लिए भी कहती थी। तब उन्हें जो भी नृत्य करने का मन करता वो कर लेते, पर उन्हें नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन वो कर लेते और उन्होंने किया, और इसके लिए वो सदा अपनी माँ को आभारी मानते रहे। इसकी शुरुआत उनकी माँ ने ही कराई।
3: बचपन में त्योहारों के दौरान होने वाले नृत्यों के अलावा लोक नृत्यों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हालांकि बचपन में उनकी दिलचस्पी मुख्यतः चित्रकला में थी, ये प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल थी कि झालावाड़ के महाराजा ने उनके पिता को उदय को सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाने को मना लिया और यहां से डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद 1920 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए लंदन चले गए।
2: हाँ, और इसके अलावा उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और हर नजरिए से पूर्णता मिले, बस इसी पर जोर रहता था। वे जानते थे कि वे अपने दर्शकों में और उत्सुकता कैसे जगा सकते हैं। बहुत कम समय में बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत कराने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। विभिन्न भारतीय देवी देवताओं के बारे में उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसने एक अमिट छाप छोड़ दी।
3: जिन दर्शकों ने उनके इंद्र, कार्तिकेय और शिव के एकल नृत्य देखे हैं, वे उनके द्वारा रचित कलात्मक और मनमोहक छवियों को लंबे समय तक ज्यों की त्यों अपने मन मस्तिष्क में सजाए रहते थे। मंच पर नृत्य प्रस्तुति के समय उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत नजर आता था, जो दर्शकों के मन में समा जाता था। वे अपने इस विशिष्ट गुण से दर्शकों पर सदा जादू कर देते थे।
2: जी हाँ, बात आपने बिल्कुल ठीक ही की है। उनमें जो ये दुर्लभ गुण था उसे दोहराया नहीं जा सकता है। बस जिन्होंने उन्हें मंच पर प्रस्तुति देते हुए देखा है, उनके मन में उनकी स्मृति बसी हुई है। सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की प्रतिभा की और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको अब उनके जन्म के बारे में जानकारी दे दें। उदय शंकर का जन्म 8 दिसंबर 1920 राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। वैसे तो वे मूलतः नरेल, जो बांग्लादेश में आता है, वहां के एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे।
3: उनके पिता का नाम श्याम शंकर चौधरी था, अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील थे और राजस्थान में ही झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। उनके पिता को नवाबों द्वारा हर चौधरी की उपाधि दी गई थी, किंतु उन्होंने हर चौधरी में से हर को हटा दिया। अपने नाम के साथ सिर्फ चौधरी का प्रयोग करना ही पसंद करते थे। उदय शंकर की माँ हेमांगिनी देवी भी एक बंगाली जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके अन्य बच्चों के नाम राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, भूपेंद्र शंकर और रविशंकर थे।
2: श्रोताओं, चित्रकला की प्रतिभा उनमें इतनी प्रबल और विलक्षण थी कि उन्होंने 5 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा कर लिया। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही तब उदय को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हुए बिताए गए वो असंख्य घंटे ही थे जो उदय शंकर को नृत्य की ओर वापस ले आए।
3: फिर क्या था, उदय शंकर के मन में भारतीय मूर्तियों की विभिन्न नृत्य मुद्राओं में देवी देवताओं के चित्रों के प्रति विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो गया और उन्होंने तब उन मुद्राओं का अनुसरण करना आरंभ किया। हालांकि वे प्रशिक्षित नर्तक नहीं थे, फिर भी वे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस फिर तो वो चित्र ही उनके लिए प्रेरणा बन गए और फिर उदय शंकर ने उन चित्रों को नृत्य की गति में ढाल दिया।
2: कॉलेज में पढ़ते हुए ही 1922 में उन्होंने अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लीग ऑफ मर्सी द्वारा आयोजित किया गया, जो महारानी विक्टोरिया के शाही चार्टर द्वारा स्थापित एक ब्रिटिश संस्था थी और इस नृत्य प्रस्तुति की किंग जॉर्ज पंचम ने भी सराहना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की ये रही कि इसमें दर्शकों में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा भी मौजूद थी और उन्होंने उदय शंकर को नृत्य करते देखा तो उन्हें उदय शंकर की नृत्य शैली बहुत पसंद आई और बाद में अन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को कुछ भारतीय नृत्य बनाने की जिम्मेदारी दी। तब उदय शंकर ने अन्ना पावलोवा को राधा कृष्ण और हिंदू विवाह के नृत्य तैयार कर दिए जो उन्हें बहुत पसंद भी आए।
3: ये दोनों बैले नृत्य जो उदय शंकर ने तैयार किए थे पश्चिम में बहुत पसंद किए गए क्योंकि तब तक वहां के लोगों ने ऐसा पहले कुछ कभी नहीं देखा था। अन्ना पावलोवा के साथ कई नृत्यों की कोरियोग्राफी करने में उदय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये अन्ना पावलोवा ही थी जिन्होंने उदय शंकर को अपनी भारतीय तकनीक और शैली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उदय शंकर ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा कि अन्ना ने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पश्चिमी शैली का अनुकरण ना करूं क्योंकि पश्चिम के लोग नृत्य में वो सब कुछ देखना पसंद करेंगे जो कि भारतीय कला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।
2: इस तरह अन्ना पावलोवा के साथ 1 साल बिताने के बाद उदय शंकर ने 1924 में पेरिस में अपनी नृत्य मंडली को शुरू तो किया लेकिन पावलोवा की कंपनी से दूर जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी क्योंकि अन्ना पावलोवा के साथ उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए मिली सफलता और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ पेशेवर और आर्थिक स्थिरता मिली थी और कंपनी छोड़ने के बाद उदय शंकर बेरोजगार हो गए थे और जब जीवन में पहली बार बिना किसी संरक्षण के परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई थी और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो बहुत छोटे छोटे आयोजनों में भी नृत्य के कार्यक्रम देने लगे। 1-2 साल इसी तरह जीवन संघर्ष चलता रहा और यही वो कार्यक्रम और आयोजन थे जहां उदय शंकर ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाकर उनसे एक अटूट रिश्ता बनाया।
3: समय निकला और बदला भी और इसके साथ ही 1926 के आसपास उदय शंकर के लिए और भी चीजें बदलने लगी। उस समय उनके ट्रिप में उनके भाई रविशंकर, देवेंद्र शंकर और उनकी माँ के साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। तब दुनिया भर के तमाम देशों में इस ट्रिप ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उदय शंकर ने अपनी अलहदा नृत्य शैली के साथ नए नए प्रयोग किए और अपने नृत्य में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक को अपनाने के लिए मशहूर हो गए।
2: अब देखा जाए तो उदय शंकर के संघर्ष और उपलब्धियों की लंबी दास्तान है। उनके इस काम में कई उतार चढ़ाव भी आए लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार 13-14 घंटे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और हालात को सहते हुए मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया पर स्वयं को टूटने नहीं दिया।
3: और फिर अन्ना पावलोवा के ही ट्रुप के 2 पूर्व सदस्यों एडिलेड और सोकी नाम की 2 बहनों के साथ काम किया और कुछ समय बाद उन्होंने पेरिस की पियानो वादिका सिमोनो वाडियर के साथ मिलकर काम किया और सिमकी नाम के साथ नृत्य की दुनिया में अपना धमाल मचाया। कहा जाता है कि सिमकी के साथ तो एक नए युग की ही शुरुआत हुई। तब उदय शंकर ने नए नृत्यों की कोरियोग्राफी शुरू की जिसमें एकल और युगल दोनों ही तरह के नृत्य शामिल थे।
2: और फिर तो उदय शंकर और सिमकी नृत्य में साझेदारी जल्दी बेहतर लोकप्रिय हो गई और उन्हें बहुत सारे शोज करने के लिए जल्दी जल्दी आमंत्रित भी किया जाने लगा। काम, शोहरत, इज्जत सब कुछ सामने आ गया। उन्हीं दिनों यूरोप के दौरे के दौरान उदय शंकर की मुलाकात स्विस चित्रकार और मूर्तिकार एलिस बोनर से हुई। वे उदय शंकर के नृत्य पर मोहित और प्रभावित हो गईं और उन्होंने उदय शंकर की नृत्य मुद्राओं की मिट्टी से मॉडल और चित्रों के द्वारा एक श्रृंखला तैयार की।
3: तब तक उदय शंकर सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता के रूप में जाने जाते थे। तब उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाने लगा था। उदय शंकर के भाव और भंगिमाओं को देखकर वो चकित हो गए। उदय शंकर के नृत्य के पीछे उन्होंने भारत के प्राचीन स्वरूप, संस्कृति और मूर्तिकला के भाव को समझा। तब उन्हें लगा कि भारतीय मंदिरों पर बनी मूर्तियां उदय शंकर के इस नृत्य के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही हैं। उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी थी कि वे इसे जानने के लिए भारत आईं और उदय शंकर के नृत्य को उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं, काशी के घाटों और सांस्कृतिक चित्रों में देखा।
2: उन पर आधारित एलिस की कलाकृतियां BHU के भारत कला भवन म्यूजियम की दर्शक दीर्घा में प्रदर्शित हैं, जहां उदय शंकर के नृत्य को और दूसरी भारतीय कलाओं के तालमेल को बताया गया है। उदय शंकर ने एलिस बोनर के साथ 1930 में भारत भ्रमण कर नृत्यों की भाव भंगिमाओं का चित्रांकन किया। एलिस 1931 में ही उदय शंकर के साथ काशी भी आई और तब यहाँ कैसी घाट ने उन्हें फिर वापस कहीं और जाने नहीं दिया।
3: उस समय भारत या बनारस में नृत्य को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। इस कारण उदय शंकर को कहीं से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। तब एलिस बोनर ने बनारस से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में उनके कार्यक्रम तथा वेशभूषाओं की व्यवस्था देखने का जिम्मा उठाया और इस तरह एलिस बोनर और उदय शंकर ने लगभग 30 साल तक एक साथ काम किया। एलिस बोनर भारतीय कला और संस्कृति से प्रभावित होकर भारत तो आई उन्हें देखने ही थी, लेकिन 80 घाट पर जहां वो रहने लगी उस जगह आज एलिस बोनर इंस्टीट्यूट है।
2: और इधर उदय शंकर के संगीत और नृत्य प्रेम से गाजीपुर स्थित बिरनो ब्लॉक नसरतपुर के लोग आज भी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं। उनकी यादें आज भी गांव के लोगों के मन में बसी हैं, जो उन्हें याद रखे हैं। नसरतपुर के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गांव में उदय शंकर का परिवार बंगाली बाबू के नाम से मशहूर था और पूरा परिवार शुरू से ही व्यवहार कुशल और व्यक्तित्व का धनी था। उनके परिवार के सदस्य सदा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव वासियों के प्रति उनका उदार रवैया ग्रामवासी कभी भुला नहीं पाएंगे।
3: उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का प्रणेता माना गया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सभी आयामों में पश्चिमी रंगमंचीय तकनीक के साथ अपने नए रंग भरकर 1920 से 1930 तक के दशक में उसे यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया भर के अनेक देशों में प्रतिष्ठित किया। अपने कुछ मित्रों की सलाह पर वर्ष 1938 में उदय शंकर ने भारत लौटकर हिमालय पर्वत की गोद में बसे प्रकृति की खूबसूरत नेमत से भरपूर अल्मोड़ा शहर को अपनी भावी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुना।
2: ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्कूल भारत में संचालित करने का मन बनाया था और इसके लिए वर्ष 1939 में अल्मोड़ा शहर में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की गई। इस काम में उनके साथ कथकली के प्रख्यात गुरु शंकरन नंबूदरी, भरतनाट्यम के कंडप्पा पिल्लई, मणिपुरी के अम्बी सिंह और संगीत के मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान शामिल थे।
3: और इसमें उनके इस समूह में गुरुदत्त, मैडम सिमकी, अमला, नरेंद्र शर्मा, जोहरा सैगल, लक्ष्मी शंकर, विष्णु रास, मंगेश राव, प्रभात गांगुली, शिशिन भट्टाचार्य, माधवन नायर, कनकलता तथा उनके अपने भाई रविशंकर भी छात्र रूप में शामिल हो गए। लेकिन इतने गुणी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद ये केंद्र मात्र 4 वर्ष ही अस्तित्व में रहा। उनके अभिनव प्रयोगों के बावजूद उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर धन की कमी के कारण 1942 में बंद हो गया। बड़े भारी मन से उदय शंकर ने अल्मोड़ा छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया। तब उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर का सारा सामान लंबे समय तक अल्मोड़ा में ही पड़ा रहा।
2: हम यहाँ सामान का जिक्र श्रोताओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उदय शंकर के माने गए कथकली नृत्य गुरु पंडित शंकरन नंबूदरी का दिया हुआ उपहार भी शामिल है, जिसके बारे में उदय शंकर का कहना था कि इससे उनका अंतरंग जुड़ाव है। तो हुआ यूं कि अल्मोड़ा में बाकी पड़े सारे सामान के साथ उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में होने वाले कार्यक्रम से पहले एक विशाल और भव्य धातु निर्मित पानस यानी कि ऊंचा दीपक, जिसे हमारे यहाँ समय कहा जाता है और केरला में इसे पानस कहा जाता है, उसे प्रज्वलित किया जाता है। तो वो पानस अर्थात समय भी था और इस पानस अर्थात समय को भी उसी सामान के साथ रखा गया था जिसकी नीलामी होनी थी। पीतल धातु से बने एक क्विंटल वजन से भी ज्यादा वजनी इस पानस को उदय शंकर को उनके गुरु पंडित नंबूदरी ने उपहार में दिया था।
3: उदय शंकर ने अपने इन गुरु से केरल जाकर उनके गांव में ही रह रहकर नृत्य की भंगिमाओं एवं बारीकियों को सीखा था। ये पानस यानी समय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें दीपक जलाने के लिए लगभग 2 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और एक साथ 100 बत्तियां जलती हैं और बत्तियां जलाने वाले हिस्से की परिधि भी लगभग 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस पानस को 2 भागों में खोला जा सकता है और इस प्रयोग से पहले जोड़कर इसे पूरा किया जाता है, तब इसका उपयोग हो पाता है।
2: श्रोताओं, किसी विशेष अवसर पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले इसके सभी हिस्सों को खोलकर अलग कर लिया जा सकता है और दीप प्रज्वलन के लिए उसे पुनः जोड़ा जाता है। ये इतना भारी है कि इसकी ऊपरी चक्कर को खोलने के लिए 3-4 व्यक्ति पकड़कर घुमाते हैं, तब कहीं ये खुल पाता है। इस पानस की नीलामी के समय उदय शंकर मन से बहुत द्रवित थे। वे दुखी मन से बोले थे कि चाहे इस पानस का मूल्य कम भी मिले, लेकिन ये पानस केवल उस व्यक्ति को ही मिले जो कला का पारखी हो और इस अमूल्य धरोहर को संजो कर रख सके, क्योंकि इससे मेरा अंतरंग जुड़ाव है।
3: उदय शंकर की इच्छा के अनुसार ये पानस हरिकिशन लाल शाह गंगोला और उनके पुत्र जगदीश लाल शाह गंगोला ने खरीदा, जो गंगोला परिवार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यहाँ श्रोताओं, हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इस पानस को 1943-44 में नीलामी के बाद पहली बार 1954 में अल्मोड़ा में आयोजित शरद उत्सव में प्रज्वलित किया गया था।
2: जी, और तब से अल्मोड़ा नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों में इस पानस अर्थात समय के दीप प्रज्वलित कर अनेक शख्सियतों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, जिनमें प्रमुख हैं मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खां, प्रख्यात सितार वादक और उदय शंकर के छोटे भाई भारत रत्न पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी, जोरा सेगल, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और उदय शंकर के पुत्र आनंद शंकर। गंगोला परिवार के सदस्यों का कहना है कि उदय शंकर जैसे कलाकार का ये पानस समय वर्तमान में भी अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उदय शंकर के योगदान का गवाह है और आज भी ये रंगकर्मी और संस्कृति प्रेमियों के लिए नृत्य सम्राट उदय शंकर के महान योगदान का एक प्रेरक स्तंभ बना हुआ है।
3: अब बात करें उदय शंकर के निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने मित्र अक्षय नंदी की छोटी बहन और उनके ट्रुप में काम करने वाली 11 वर्ष छोटी खूबसूरत नृत्यांगना अमला नंदी से 1939 8 मार्च को विवाह कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमला ने 1942 में उनके पुत्र आनंद शंकर को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक गायक और संगीतकार बने। जीवन में चले उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को सुलझाते हुए जीवन की डगर पर चलते हुए अमला ने उदय शंकर की दूसरी संतान खूबसूरत पुत्री ममता शंकर को जन्म दिया, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और कोलकाता में उदयन डांस कंपनी भी चलाती हैं।
2: और चलिए अब बात करते हैं भारतीय आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट की। जी हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट था नृत्य पर एक फिल्म निर्माण करने का। वो चाहते थे कि उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसलिए एक संस्थान की स्थापना भी वो करना चाहते थे। इधर उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, वो सोचते थे कि उनका नृत्य बना रहे, बचा रहे, बसा रहे। और सन 1965 में एक ऐसा संस्थान बनाया गया बंगाल के कोलकाता शहर में। इस संस्थान में अमला शंकर को निर्देशक बनाया गया।
3: अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उदय शंकर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी बनाई नृत्य विधा को संजोए रखने के लिए बनाई गई फिल्म कल्पना की। ये काम जोर शोर से चलने लगा। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म का लेखन निर्देशन नृत्य निर्देशन स्वयं उदय शंकर ने किया और फिल्म में हीरो की भूमिका उदय शंकर और हीरोइन की भूमिका अमला शंकर ने निभाई। फिल्म की पटकथा अमृतलाल नागर ने लिखी और गीत सुमित्रा नंदन पंत और भील लोकगीत देवीलाल समर के थे और संगीत विष्णुदास शिराली ने रचा था।
2: श्रोता, 1948 में बनी फिल्म कल्पना एक नृत्य प्रधान फिल्म थी जो एक युवा नर्तक के नृत्य अकादमी स्थापित करने के सपने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत किया गया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक नृत्य बैले और एक फैंटेसी के रूप में फिल्माया गया था। ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन 2008 में गोवा शहर में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के खजाने के अनुभाग के एक भाग के रूप में अभिलेखागार में अन्य दुर्लभ रत्नों के साथ दिखाया गया था।
3: उदय शंकर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हुआ ये कि फिल्म बनना शुरू हुई तो पैसों की कमी के कारण उदय शंकर को अपना अल्मोड़ा वाला उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद कर देना पड़ा, जिसका उदय शंकर को बहुत गहरा धक्का लगा। और तब उनकी पत्नी अमला शंकर ने ही बड़े धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने पति उदय शंकर को संभाला और किसी तरह इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग दिया।
2: लेकिन अमला शंकर और उदय शंकर की सारी मेहनत, हिम्मत और धैर्य सब जवाब दे गए जब रिलीज के बाद फिल्म कल्पना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अब इस फिल्म की हिफाजत किसी बेशकीमती नगीने की तरह की जाती है और संघ 2010 में मार्टिन स्कॉर्सेसे, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, उनकी कंपनी वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन ने इस फिल्म के डिजिटल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, उदय शंकर द्वारा बनाई गई कल्पना नामक फिल्म भारतीय सिनेमा की अनोखी अनूठी प्रयोगात्मक कृति मानी जाती है। इस फिल्म में नृत्य कला, दृश्य कला और फिल्मांकन को एक साथ पिरोकर उदय शंकर ने दर्शकों को एक नई राह दिखाई है।
3: बिल्कुल, इसके साथ ही रचनात्मकता और भारतीय नृत्य कला में अमूल योगदान के लिए उदय शंकर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1960 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद सन 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया। और पुरस्कारों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, सन 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण यानी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और सन 1975 में उन्हें देशी कोतम नामक विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
2: हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, संपादक, संस्कृतिकर्मी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक वाजपेयी का कहना है कि उदय शंकर का नृत्य कम से कम तीन विश्वासों से प्रेरित नृत्य था। एक, शास्त्रीयता में विश्वास, दो, आधुनिकता में विश्वास और तीसरा, आत्मविश्वास। जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। हम में से वे सभी जो भारतीय नृत्य के इतिहास और उसके आधुनिक काल से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि उदय शंकर ने एक तरह की शास्त्रीय आधुनिकता विकसित करने का प्रयास किया था।
3: एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव, सुषमा, ऊर्जा, लालित्य पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे जो तब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था। दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। पश्चिम में उस समय आधुनिकता के अंतर्गत उनकी अपनी परंपरा लगातार प्रश्नांकित की जा रही थी, कई बार उसे हाशिए पर डालकर कई कल्पनाशील और दुस्साहसी सृजनात्मकता का बोलबाला था। कलाओं में आख्यान को अपदस्थ कर अमूर्तन पर आग्रह बढ़ रहा था। उदय शंकर इन वृत्तियों को भी किसी हद तक अपने नृत्य में समाहित और संबोधित करना चाह रहे थे। वे भारतीय नृत्य के पारंपरिक रूपकारों को पुनः संयोजित कर एक नए किस्म के समावेशी और साहसिक शास्त्रीयता विकसित करना चाहते थे।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक नर्तक और नृत्य चिंतक के रूप में वे एक ओर तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का वैभव सबके सामने रखना चाहते थे जो अब तक हमारी नृत्य परंपरा से अनभिज्ञ था, तो दूसरी ओर वे इस परंपरा में प्रयोग की संभावना और उसमें आधुनिक नवाचार की तलाश करना चाह रहे थे। श्रोताओं, उस समय जिन कलाकारों ने भारतीय नृत्य में पश्चिमी रुचि जगाई, उनमें उदय शंकर का नाम पहली पंक्ति में आता है। उन्हें किसी भी तरह का शासकीय या सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। उस समय उनके वित्तीय साधन अल्प और सीमित थे। ये बात तो है, क्योंकि वो नृत्य के किसी पारंपरिक परिवार से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का सामूहिक समर्थन भी नहीं मिला था। उनका प्रयत्न सदा एकांतिक रहा।
3: उनका दुस्साहस, उनकी नृत्य परिकल्पना और नृत्य के प्रति उनकी जिजीविषा का ही ये फल था कि इसी काम से उनकी सार्थकता प्रकट होती है। उस समय उनके अपने व्यक्तित्व का बड़ा मोहक आकर्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व की सफलता और सार्थकता में बड़ी भूमिका रही। उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के नृत्य से उनके कई तत्वों को जोड़कर अपनी एक विशिष्ट और लगभग अद्वितीय शैली बनाई थी। यदि इन शैलियों की परंपराओं में हमेशा व्यक्तित्व का भी महत्व होता, उसका केंद्र बिंदु भी परंपरा के अंदर ही लेता है, बाहर नहीं।
2: पर उदय शंकर किसी पारंपरिक शैली के नृत्यकार नहीं बने। हालांकि नृत्य की प्रत्येक पारंपरिक शैली से उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिया, फिर चाहे वो कथक हो, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली, कोई भी नृत्य विधा क्यों ना हो, नृत्य की हर शैली का प्रभाव उनके नृत्य में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी किसी एक शैली में समाहित होता नजर नहीं आता। पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि उनकी थोड़ी बहुत परंपरा भी बनी, जिसमें नरेंद्र शर्मा और अमला शंकर, जो उनकी पत्नी भी थी, उन जैसे महत्वपूर्ण नर्तक भी हुए, पर कुल मिलाकर यह शैली बहुत आगे नहीं चल पाई। इसमें वे नृत्य में नवाचार के प्रतीक बने, मान्य और लोकप्रिय भी हुए, और इन्हीं नवाचारों के क्षेत्र में शास्त्रीयता में उदय शंकर से सभी ने प्रेरणा ली है।
3: नवाचार में दुस्साहस क्या और कैसे होता है, ये सब उदय शंकर के नृत्य को देखकर ही हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने अपने नृत्य में जो आत्मविश्वास दिया, अपनी नृत्य बैले शैली में आधुनिक शैली में जो प्रयोग किए, उन्हें भी उदय शंकर के पथ प्रदर्शक अपने नृत्य प्रयोग के विस्तार के रूप में जानते हैं। क्योंकि उदय शंकर ने विभिन्न शैलियों के बीच लगातार संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। उदय शंकर को मंच पर नृत्य करते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुप्रसिद्ध रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने जब उदय शंकर को पहली बार मंच पर नृत्य करते हुए देखा था, तो बोली थी कि लगा जैसे अजंता में चिन्हित किसी देवता ने मानव शरीर धारण कर लिया है।
2: इसी तरह इटली की मूर्तिकार एलिस बोनर ने ज्यूरिख में उनका नृत्य देखकर कहा कि उदय शंकर के शरीर में चित्र और पत्थर की प्रतिमाओं की थिरकन है। इसी तरह उदय शंकर की उंगलियां, हथेलियां, आंखें और देह की भंगिमाओं का अनूठा मेल देखकर ही उनकी पत्नी अमला ने उदय शंकर पर मोहित होकर उनसे विवाह किया था। वे लिखती हैं, शिव तांडव तथा अग्नि पूजा देखकर मैं पागल हो गई कि कोई इतना सुंदर नृत्य कैसे कर सकता है। ये बात मैंने पहली बार समझी। उदय शंकर के द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना, जो 154 मिनट की थी, दृश्यों की गतिशीलता में इस फिल्म में दृश्य और ध्वनि का अद्भुत मेल दिखाई और सुनाई देता है। इस फिल्म में लगभग 200 वाद्यों का प्रयोग किया गया है। लोगों ने इस फिल्म में प्रयुक्त तबला सुना तो दंग रह गए कि एक ही वाद्य यंत्र से कोई इतनी आवाजें कैसे निकाल सकता है भला।
3: इसी तरह एक बार पेरिस से जब उदय शंकर भारत आए, तो मंदिरों में घूमते हुए वो केरल में कथकली नृत्य को देख के भौचक्के रह गए। उन्होंने लिखा कि बिना जाने बिना देखे मैं अपने नृत्य में ये लाता रहा हूँ। उदय शंकर का नृत्य ऐसा ही था। नृत्य पर प्रयोग की गई भारतीय संस्कृति को समेटे उनकी ये दृष्टि सदा जीवंत रहेगी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक जामा पहनाकर भारतीय संस्कृति को विश्व के हर कोने तक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है।
2: जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला की शैलियों का भी गंभीर अध्ययन किया और भारतीय नृत्य को एक समकालीन रूप देकर विचार न केवल मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे भारतीय आधुनिक नृत्य के शिल्पी थे। यहाँ ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कला की दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमरत्व पा गए हैं। उदय शंकर भी उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम है, जिन्होंने नृत्य को केवल एक प्रदर्शन की कला नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सेतु का रूप दिया। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपराओं तक सीमित था, उस दौर में उदयशंकर ने उसे विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। 26 सितंबर 1977 को कोलकाता में वे हमारे बीच से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कोलकाता में उदयशंकर सेंटर ऑफ डांस आज भी उनकी समूह नृत्य परंपरा को संरक्षित और जीवित रखे हुए है, जिन्होंने कला को सीमाओं से मुक्त कर दिया।
3: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में अभी आपने सुना प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी के बारे में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दीजिए मनीषा
2: और संदीप शर्मा। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाणी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं। कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक हैं श्री मुकेश यादव और श्री विशाल साध। संगत कलाकार हैं ढोलक पर श्री रामबली पटेल, तबले पर श्री राम यादव, ऑर्गन पर श्री विशाल साध और ऑक्टोपैड पर श्री मोहित पाटिल। श्री शिव भाई गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

0: माता की
1: जय हो।
0: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: भारत माता की
1: जय हो,
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
0: जो हमारा बिरसा मुंडा जी की जितना महिमा चरित्र चित्रण बोला उतनी कम है, पर एक कलाकार को प्रयास है। देखो आज भी कहावत है, ये आजादी बड़ी अनमोल है, बड़ी मुश्किल से आजादी रे मिली। ये देश का युवा न के को संदेश है, इस मंच का माध्यम से एक छोटा सा गायक

0: एकता मम आनंद है।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में, जहां शनिवार की शाम अरक्षण नाटक का मंचन किया गया।
1: अरे झूठ कहता, मेरा बेटा वापस चाहिए मेरा बेटा, मैं क्यों नहीं भूल पाती उसको? इतनी सारी कोशिश करती थी, डरती ना मेरे घर पर।
0: नाटक एक परिवार की कहानी है। इसमें तीन सदस्य हैं, बाबूजी प्रभा और बेटी लीला। परिवार के साथ पेइंग गेस्ट राजू भी रहता है। कहानी धीरे धीरे खुलती है।

आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश। इसका लेखन किया महेश एलकुंचवार ने और निर्देशन रहा नजीर कुरैशी का।

God.

0: ताजा समाचार।
1: सच्ची में
0: बेटिया, मैंने एक फैसला किया है कि मैं तुझे शादी नहीं करने दूंगा। हाँ, तू यही रहेगी मेरे पास।
1: अरे बाबा, मुझे तो पैसे ही शादी नहीं करना।
0: अरे कोई सुन लेगा? दामाद शरीफ, अब आपको भी इस घर में डेरा डालना है, क्योंकि हमारी बिटिया हमें छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं है। बिन पूछ की कभी उसका कहती है पति को लाएंगे, अच्छा सा देख के लाएंगे। तू देखना, और मैंने दूरबीन का ऑर्डर भी दे दिया है, देख के फर्क के हीरा लेके आएंगे।
1: अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शादी नहीं कराएंगे, और अब देखिए।
0: वो तो मसाज कर रहा था भैया। तू देखना, तेरी शादी तो कितनी धूमधाम से होगी, दुनिया भर के बराती, मेहमान, दावतें, शोर शराबा, और हमारी लिबिया बिटिया चोरी चोरी देख रही है अपने जूले राजा को।
2: बड़े हो गए हो,
3: और आप हैं कि आज भी बच्चा जान के लाड़ करती है।
2: मैं?
3: मुझे ऐसे ही लगता है।
2: कैसा लगता है? अच्छा है पूरा?
3: लगता है जैसे मैं मेरे ही घर में हूँ।
2: अच्छा बताओ, क्या क्या लाड़ की है?
3: जैसे कभी आके मेरा कमरा सजा दिया, खाना खाने बैठे तो ये खाओ वो खाओ और लो और लो, ऐसे ही कुछ। कभी
2: तुम्हें कुछ तो अवसर नहीं आता?
3: नहीं।
2: कैसे कहते हो, तुम ना हो बिल्कुल तुम तो राज अगले साल कहीं और जाने की बात करोगे ना, तो हम चिल्लाएंगे।
3: मगर चाची जी,
2: सच्ची चिल्लाएंगे।
3: लेकिन आप पैसे क्यों नहीं लेते हैं?
2: देख राजू, मैं सच में नाराज हूँ, चाहूँगी समझे।
3: हमें जाने कैसा लगता है, थोड़ा बहुत कुछ तो लिया कीजिए। अब मैं इस बारे में बाबू जी से ही बात करूँ।
2: अब बता दो मुझे कुछ कहा तो। अब ये तुम्हारे ही घर क्या कह रहे हैं ना?
3: जी
2: सच्ची
3: जी,
2: हमारी घर पे हाथ रखी कहो, ये मेरा घर है,
3: ये घर मेरा है।
2: तुम ख्याल नहीं करते हो तुम हमारा।
3: सब चाची जी,
2: तुम नहीं समझ पाओगे बाबू, हम औरतों का वात्सल्य क्या चीज है। तुम्हारी माँ यहाँ आएगी ना तो मैं उनसे कह दूंगी, अपना ये बेटा हमें गोद दे दो।
3: और मेरी माँ कतई नहीं मानेगी।
2: क्यों भाई, क्यों नहीं मानेगी?
3: क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है।
2: तो हम नहीं करते प्यार?
3: करती है ना, पर आपका अलग और माँ का अलग। अब माँ तो आखिर माँ है ना, और आप ये नहीं जानती मेरी माँ बहुत अच्छी है।
2: और मैं बुरी हूँ? अभी कहाँ वैसी बुरी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी। याद करो कुर्बानी,
3: याद करो कुर्बानी।
2: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत देश को आजाद कराने में सभी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, किसान हों, पत्रकार हों, वीरांगनाएं हों, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये। इस आजादी के समर में जिनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, और आजाद हिंद फौज की स्थापना का दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म 1897 को 23 जनवरी को कटक में हुआ था। उनके पिता वहां के एक बहुत सफल वकील थे, वकालत से बहुत सारा धन उन्होंने कमाया था। वहीं बहुत बड़ा भवन भी बनाया उन्होंने, जिसमें सुभाष ने बाद में उत्कल कांग्रेस को दे दिया। सुभाष शुरू से ही अच्छे छात्र थे। 1920 में वे ICS बने और उनका मन नौकरी में नहीं लगा। जल्द ही वे देशबंधु चितरंजन दास के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तब से वे कांग्रेस के नेता बन गए और धीरे धीरे कांग्रेस के एक महान नेता मान लिए गए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भारतीय नौजवानों के नेता माने जाते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तब से वे कुछ नरम पड़ गए थे, यद्यपि वे भीतर से इतने नरम नहीं थे जितना कि लोग समझते हैं, क्योंकि समाजवाद के प्रति उनकी भक्ति उसी प्रकार बनी रही। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में फर्क यह था कि सुभाष को हर समय बंगाल के क्रांतिकारियों से अनुप्रेरणा मिलती रही, यहां तक कि वे स्वयं एक क्रांतिकारी नेता भी बन गए। और इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू को अनुप्रेरणा या तो पुस्तकों से मिली थी या कुछ हद तक जनता से। जहां तक समाजवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संबंध है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संबंध में ज्यादा सचेत रहे, पर सुभाष के नजदीक स्वतंत्रता प्राप्त करना और जिस किसी प्रकार से भी प्राप्त हो सके यही उनका मुख्य लक्ष्य रहा। इस प्रकार वे एक तरफ कांग्रेस आंदोलन में बने रहे और दूसरी तरफ भीतर ही भीतर क्रांतिकारी भी बने रहे। सुभाष कभी किसी अर्थ में गांधीवादी नहीं बने। सच तो यह है कि बंगाल के युवकों ने गांधी को कभी गंभीरता के साथ लिया ही नहीं और उसे महज साधन समझते रहे। इसी कारण कभी वे गांधी के पक्के शिष्य बने तो कभी गांधी जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भी उठी। श्रोताओं, ऐसे बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार आज हमें पुस्तकों में मिलते हैं, मगर उनके बारे में कुछ और हम टिप्पणी करेंगे। पहले सुनते हैं एक छोटा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष 1924 में 24 अक्टूबर को विशेष ऑर्डिनेंस के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए और इसी नजरबंदी में के जमाने में उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां वे बहुत अधिक बीमार पड़ गए और इस कारण जो आंदोलन हुआ उससे सरकार ने 1927 की 16 मई को छोड़ दिया और इसके बाद सुभाष ने जोरों से पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। इस प्रकार गरम दल वालों की विजय रही और 1930 में सत्याग्रह छिड़ गया, पर यह जल्दी ही गांधी इरविन समझौते की चट्टान से टकरा करके समाप्त हो गया। जनता के दबाव के कारण, बल्कि यह कहना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार की बेईमानी के कारण फिर से आंदोलन छिड़ा, पर अब की बार आंदोलन में वह कदम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार कर लिए गए पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर एक बार 1933 में उनको छोड़ दिया गया। वे फौरन ही स्वास्थ्य सुधार करने के लिए यूरोप चले गए और इस बार की यूरोप यात्रा में सुभाष हिटलर, मुसोलिनी और डी वेल्ला से मिले। वे देख रहे थे कि कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो भारत से ब्रिटिश शासन को हटाने में दिलचस्पी रखती है, उन्हें मदद मिल सकती है। ब्रिटिश सरकार को सुभाष के इन कार्यों का पता चल गया। सुभाष लौट करके यह प्रचार करने लगे कि जल्दी ही भयानक युद्ध छिड़ने वाला है और उस समय भारत को बेड़ियों को खोल फेंकने का एक और मौका मिल गया। 1929 में यह लड़ाई छिड़ गई पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। घटनाएं फिर भी बहुत प्रबल सिद्ध हुई और गांधी जी को आंदोलन छोड़ना पड़ा, पर इसके पहले ही देश के बाहर क्रांतिकारी फिर से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने में लग गए। रास बिहारी बोस किस प्रकार जापान के युद्ध में कूदने पर आजाद इन फौज का संगठन किया, ये तो बात की बात है, पर इसके

शास्त्र इस समय बेकार लग रहा था, तभी गांधी जी सत्याग्रह का तर्कश लेकर के सामने आ गए। जनरल डायर हत्या करा करके विलायत चले गए और सुख से भारत की पेंशन पर जी रहे थे। इतने में लड़ाई छिड़ गई। संसार भर में जहां भी भारतीय था उसे फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा दिखाई देने लगी। सरदार उधम सिंह नामक एक युवक इन दिनों लंदन में ही थे, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और वे इंजीनियर थे। लड़ाई छिड़ते ही उधम सिंह के मन में यह बात आ गई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। यह एक अजीब सी बात है कि उधम सिंह पहले से ही क्रांतिकारी नहीं थे, पर महायुद्ध ने उनकी चेतना को उभार दिया और वे एकदम से कुछ करने के लिए व्याकुल हो गए। सरदार उधम सिंह ने क्या किया यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये दूसरा प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, 1940 को 23 मार्च का दिन था। लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिगेडियर जनरल डायर सीपी सैक्स विश्व स्थित अफगानिस्तान विषय पर भाषण देने वाले थे। लॉर्ड जेंटल अध्यक्ष बनाए गए। पूर्वी देशों पर व्याख्यान था। सभा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की देखरेख में बुलाई गई थी, इसलिए पूर्वी देशों पर एक विशेषज्ञ के नाते सर जनरल डायर भी इसमें पधार गए। पहले से ही यह तय था कि वे पधारेंगे। उधर सिंह भी एक भरी हुई पिस्तौल लेकर के उस सभा में पहुंच गए। मुख्य वक्ता बोल चुके थे, जनरल डायर भी बोल चुके थे और सभा भंग होने वाली ही थी। तब उधम सिंह ने 3 गज की दूरी से माइकल डायर पर गोली दाग दी। दूसरी गोली से ही माइकल डायर गिर पड़े, फिर भी गोली चलती रही। लॉर्ड जेंटलैंड को और लॉर्ड मिल्टन को 2 गोलियां छूते हुए निकली, मगर वो बच गए। लॉर्ड स्विस जैन को कुछ चोट आई भी और उसके बाद उधम सिंह हॉल से निकलने लगे तो हवाई सेना के एक सार्जेंट क्लाउड वटी चेस ने उन्हें पकड़ लिया। सरदार उधम सिंह ने अपने बयान में कहा कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नालदार जूते के नीचे अपने देशवासियों को जो रोनते हुए देखा है, इस प्रकार अपना प्रतिवाद पेश करते हुए मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे इस बात की रंज भर भी शंका नहीं है कि मुझे आप फांसी दे देंगे या सजा देंगे। मृत्यु का भय मुझमें नहीं रह गया है। बुढ़ापे तक लड़खड़ाते हुए जीने का कोई अर्थ नहीं होता है। देश के लिए जवानी में मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार सर माइकल जनरल डायर ने जो भयंकर अपराध 1918 में किया था, एक क्रांतिकारी ने उसकी सजा दे दी। क्या कोई यह कह सकता है कि एक भारतीय के जीवन का मूल्य किसी भी प्रकार एक अंग्रेज के जीवन के मूल्य से कम है? विनायक दामोदर सावरकर ने इस अवसर पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अहिंसा की निंदा की और साथ ही कहा कि इस तरह के भी देशभक्त मौजूद हैं जो सरदार उधम सिंह की तरह 20 साल तक बदले की भावना को अपने मन में जगाए हुए हैं और अंत में उन्होंने वो काम कर डाला। उस समय महायुद्ध तेजी से चल रहा था। जर्मन अखबारों ने उधम सिंह के विषय में लेकर के यह लिखा, संसार के लोग यह देख लें कि भारत किस प्रकार ब्रिटिश शासन से सुखी है। भारत तो फौरन स्वतंत्र होना चाहता है। सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई और इस प्रकार एक तरफ उधम सिंह ने अलग जगा दिया और दूसरी तरफ अन्य क्रांतिकारी भी यह सोच रहे थे कि किस प्रकार इस मौके को हाथ से ना जाने दिया जाए। प्रथम महायुद्ध में हम रह गए, पर अब दूसरा महायुद्ध भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या उथल पुथल चल रहा था, यह हम आपको बताएंगे विस्तार से, मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। सन 1941 की जनवरी में एक दिन प्रातःकाल लोगों ने यह आश्चर्यजनक समाचार पढ़ा कि एक युवक नेता सुभाष अपने घर से गायब हो गए हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि वे साधु बनकर के हिमालय में चले गए हैं। पर यह कहानी कुछ बनती भी थी, क्योंकि बचपन से ही सुभाष बाबू का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर भी था। सुभाष बाबू के एक प्रधान सहयोगी सरदार सरदुल सिंह ने तो यहां तक वक्तव्य दे दिया कि उनको ज्ञात है कि उन दिनों सुभाष बाबू की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर हो रही थी और वे साधु होकर के दक्षिण की ओर चले गए हैं। जितने मुंह उतनी बातें सुनाई पड़ रही थी। इन बातों को सुनकर के देश के नवयुवकों को बड़ी निराशा हुई। और सच तो यह है कि लोगों ने जहां एक तरफ सुभाष बाबू को साधु बनकर के हिमालय या दक्षिण में चले जाने की बात पर विश्वास किया, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सबसे अधिक खिन्न तो ब्रिटिश सरकार थी, जो समाचार पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन दिनों लड़ाई बड़ी तेजी से चल रही थी और जर्मन सेना के सामने ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे हो रहे थे।
ब्रिटिश सरकार ने सुभाष बाबू के साधु होकर के चले जाने वाले समाचार पर भी कभी विश्वास नहीं किया, परंतु उसे भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि सुभाष बाबू कहाँ हैं, और इस कारण वह भी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे यह डर था कि सुभाष बाबू किसी तरह शत्रु सरकार के पास पहुंच गए तो ब्रिटिश सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। जब इस प्रकार से सारा भारत और एक प्रकार से सारा संसार कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब एकाएक सुभाष बाबू को क्या हुआ, उस समय सुभाष बाबू गाड़ी पर सवार होकर के पेशावर की यात्रा पर चल पड़े थे। घर से गायब होने से पहले भी वो कई सप्ताह पहले से किसी से मिल नहीं रहे थे, और उन्होंने यह खबर भी उड़वा दी कि वे कोई अध्यात्म साधना कर रहे हैं और इस समय किसी से मिल नहीं सकते हैं। कुछ बहुत विश्वासपात्र लोगों को ही इन दिनों वे उनसे मिल सकते थे, और सच बात तो यह है कि वे इन दिनों दाढ़ी बढ़ाने में लगे हुए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि किसी को कानो कान इस बात की खबर लग जाए, क्योंकि ऐसा होने से विपत्ति की संभावना थी। यदि सरकार को यह ज्ञात हो जाता कि दाढ़ी बढ़ा युवक जो गायब होने की खबर फैलते ही, तब सब समझ में आ जाता कि सुभाष बाबू किसी मुस्लिम देश की ओर जा रहे हैं, और इस कारण उन्होंने दाढ़ी बढ़ाने की बात को एकदम से गुप्त रखा था। दाढ़ी जब बढ़ गई तो वे पेशावर के लिए रवाना हो गए। हावड़ा से रेलगाड़ी पर बैठना असंभव था, घर में उनके चित्र थे, और इस कारण दाढ़ी बढ़ा लेने पर भी पहचाने जाने का डर था उन्हें। श्रोताओं, इसके आगे क्या हुआ, कैसे वे देश से बाहर निकले, इस पर हम रोशनी डालेंगे मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, देशभक्ति गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि सुभाष बाबू ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और धीरे से बिना किसी को बताए हुए वे घर से गायब हो गए। वे मोटर से कलकत्ता से 40 मील दूर एक स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से रात के 8 बजे गाड़ी पर सवार हुए। उनके पास दूसरी श्रेणी का टिकट था। रात को कोई घटना नहीं हुई। दिन में भी केवल एक फौजी अफसर आया और जिसे उन्होंने इधर उधर की बातों में कह करके टरका दिया। वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे और वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे। उन्होंने अपने को बीमा कंपनी का संगठनकर्ता बताया। जब कोई बड़ा स्टेशन आता तब वे समाचार पत्र पढ़ने का बहाना करके मुंह ढक लेते थे। इस प्रकार वे 17 जनवरी को पेशावर पहुंच गए। वहां पहले से ही लोग तैयार बैठे थे और वे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे और कई कारणों से 2 दिन तक पेशावर में ही उन्हें रुकना पड़ा और उसके बाद 19 जनवरी को उन्हें पठानी कपड़े दिए गए। तब उनके साथ एक और व्यक्ति चला जिसका नाम था रहमत खां। यह व्यक्ति पाश्तो बोल लेता था और यह सुभाष बाबू को अपना बड़ा भाई बता करके परिचय देता था। सुभाष बाबू वहीं से गूंगे और बहरे बन गए थे और वो इसलिए कि उनके लिए बोलना कई तरह से विपत्तिजनक था। वे बने तो पठान थे परंतु उन्हें ना फारसी आती थी और ना ही पाश्तो। इस कारण गूंगा और बहरा उनको बनना पड़ा। रहमत खान लोगों से यह कहता रहा कि हम लोग कबायली क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम काबुल से भी आगे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग उधर आते जाते रहते हैं। इस कारण किसी को संदेह नहीं हुआ और वे कुछ हिस्सा मोटर पर तो कुछ हिस्सा पैदल चल करके काबुल पहुंच गए। परंतु काबुल पहुंचने से सुभाष बाबू की समस्या हल नहीं हुई। यद्यपि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है फिर भी किसी सरकार पर उस समय ब्रिटिश सरकार का दबाव बहुत अधिक रहता था। इसलिए आवश्यक यह था कि वो काबुल से जल्द बाहर निकल जाएं और किसी बड़े देश में पहुंच जाएं। सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे परंतु कलकत्ता में बैठ करके उन्होंने जो व्यवस्था की थी वह काबुल पहुंचने पर समाप्त हो जाती थी। उन्हें आगे की यात्रा अपनी बुद्धि के बल पर ही करनी थी। सबसे कष्टकर बात यह थी कि काबुल पहुंचते ही उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि अफगानी गुप्तचर उनके पीछे पड़ गए हैं। काबुल में वे पहले पहल एक बहुत ही गंदी सराय में ठहरे। यहां पर एक गुप्तचर उनके पीछे लगा। रहमत का यूं तो कहता था कि वह तीर्थ यात्रा के लिए भाई को लेकर के चला है परंतु वह गुप्तचर किसी प्रकार नहीं मानता था। वह रहमत खां ने उसे कभी 2 रुपए दिए तो कभी 4 रुपए और इस प्रकार उसका मुंह बंद रखा। और अंत में एक दिन उस लालची गुप्तचर ने रहमत खां के हाथ से बंधी हुई सुभाष बाबू की घड़ी भी ले ली। रहमत खां इधर उधर हाथ पांव मार रहा था कि किसी प्रकार रूसी राजदूत से संबंध हो जाए परंतु इसका अवसर नहीं आया। एक दिन रूसी राजदूत की मोटर को रोक करके रहमत खां ने टूटी फूटी फारसी में सारी बात बताई परंतु रूसी राजदूत को विश्वास नहीं हुआ और वह बात वहीं की वहीं रह गई। अब स्थिति भयंकर होती जा रही थी। बड़े कष्ट से रहमत खां को काबुल के एक महाजन उत्तम चंद का पता चला। वह व्यक्ति देशभक्त होने के साथ साथ काबुल के प्रभावशाली व्यक्तियों में भी था। उत्तम चंद पहले तो घबराया परंतु बाद में देशभक्ति ने विपत्ति की आशंका पर विजय पाई और उन्होंने सुभाष बाबू को सब प्रकार से पूरी सहायता दी। उन्हीं की सहायता से इटालियन दूतावास को खबर दी गई और धीरे धीरे यह खबर रोम और बर्लिन में भी पहुंच गई। परंतु सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे। वे डरते थे कि कहीं जर्मनी और इटली में फंस गए तो वे लोग उनसे काम लेने को तैयार हो जाएंगे पर वे जिस काम के लिए यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए निकले हैं उसमें कुछ सहायता नहीं दे पाएंगे। चेष्टा करने पर भी रूस से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका। इटली के दूतावास ने जल्दी से कोई सहायता नहीं दी पर
इस प्रकार कई सप्ताह निकल गए और यह खबर तो सुभाष बाबू को मिली कि उनके भागने की खबर रोम और बर्लिन में पहुंच चुकी है। फिर भी उधर से कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। इन सारी बातों से उबे हुए सुभाष बाबू के परामर्श पर उत्तम चंद इस बात की चेष्टा करने लगे कि चोरी से सुभाष बाबू रूस चले जाएं। जब इस बात की तैयारी होने लगे तो उत्तम चंद को स्मरण हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम में सहायता दे सकता है। उस व्यक्ति से किसी तरह भेंट की गई और उनसे परामर्श लिया गया और वह बोला कि यह काम कुछ भी नहीं है। वह इस काम में मदद देने के लिए तैयार हो गया। जब यह बातचीत चल गई तो यह पूछा गया कि वह व्यक्ति इस काम में सहायता देने के लिए क्या लेगा। 700 अफगानी रुपयों पर यह काम तय हो गया। भीतर ही भीतर इटालियन दूतावास से बातचीत चल ही रही थी, परंतु उससे अधिक प्रगति इस कारण नहीं हो पा रही थी। काबुल में उनका जो दूतावास था उसको यह अधिकार नहीं था कि वह ऐसे महत्वपूर्ण विषय में कोई निर्णय अपने आप करे। इस कारण जो भी बात मालूम होती थी उसे वे रोम और बर्लिन में लिख करके भेजते थे। उन दिनों रोम और बर्लिन प्रत्येक विषय में एक दूसरे से मिलकर के काम करते थे। बात यह है कि उन दोनों देशों की यानी कि इटली और जर्मनी की सेनाएं एक होकर के महायुद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थीं। जब सुभाष बाबू तथा उत्तम चंद ने यह देखा कि इटली के दूतावास की ओर से कोई निर्णय नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वे चोरी से बाहर जाने के कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने लगे। यहां तक कि उस व्यक्ति को रुपयों का कुछ अंश भी दे दिया गया। यह योजना इतनी परिपक्व हो गई कि काबुल से चल देने की बात आई और उस व्यक्ति ने कहा कि यदि जल्दी है तो अफगानिस्तान की पश्चिमोत्तरी सीमा की ओर से जाने वाली लारी में आसन सुरक्षित करा लेते हैं, यानी कि सीट रिजर्व करवा लेते हैं। इतने में इटालियन दूतावास की ओर से यह समाचार आया कि इटली के कुछ व्यक्ति सुभाष बाबू को लेने के लिए आ रहे हैं, परंतु साथ ही यह बताया गया कि उनके आने में 6-7 दिन लगेंगे। ऐसे समय में उत्तम चंद ने बुद्धि से काम लिया और चोरी से अफगानिस्तान के रास्ते ले जाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को यह कहकर के प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि जो व्यक्ति बाहर जाने वाला है वह एकाएक बीमार पड़ गया है, उसके अच्छा होने के पश्चात ही यह कार्यक्रम चालू हो सकेगा। उस व्यक्ति को यह नहीं बताया गया कि बाहर जाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस है। उसे इतना भेद बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संभव है कि उसे भेद बता दिया जाता तो वह और रुपए मांगता, क्योंकि वह एक पेशेवर तस्कर व्यापारी और जुआरी था, जो कुछ भी कमाता था उसी को जुए में फूंक करके बैठ जाता था। सौभाग्य से इटालियन दूतावास की ओर से संदेश आ गया और वह सही प्रमाणित हुआ। एक दिन वह आया जब दूतावास की ओर से यह संदेश मिला कि सुभाष बाबू का फोटो उतरवाया जाए जिससे कि उनका पासपोर्ट बन सके। संदेश पाकर के सुभाष बाबू ने अपना फोटो उतरवाया और मिस्टर कैरोटना के नाम से उनका पासपोर्ट बनाया गया। उनका सारा सामान सूटकेस में बंद कर दूतावास के हवाले कर दिया गया। 17 मार्च को सुबह सुभाष बाबू अंतिम बार उत्तम चंद से मिले। 18 मार्च को सुबह 9 बजे सवेरे सुभाष बाबू 2 जर्मनों और 1 इटालियन के साथ रवाना हो गए। दोनों जर्मन इस कारण भेजे गए कि हिटलर यह चाहता था कि सुभाष बाबू बीच में फंस करके इटली में न रह जाएं। हिटलर चाहता था कि वे आकर के जर्मन में रहें और वहीं से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करें। सुभाष बाबू 28 मार्च को सकुशल बर्लिन पहुंच गए। यात्रा की दृष्टि से यह उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक कष्ट झेलना उन्हें नहीं पड़ा। और इसके विपरीत यदि वे चोरी से उस व्यक्ति से सहायता के रूप में रूस या जर्मनी चले जाते तो रास्ते में बहुत सारे कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ सकता था। श्रोताओं, आगे क्या हुआ यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद।

0: गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि नेताजी सकुशल बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात हिटलर से हो गई। हिटलर ने उनकी अवस्था देखी, उसने उन्हें सिंगापुर भेजने की व्यवस्था कर दी। पनडुब्बी तैयार की गई, सुभाष बाबू उसमें सवार होकर के हजारों मील दूर समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में पड़ने वाले समुद्रों पर ब्रिटिश जलसेना का पहरा रहता था। स्थान स्थान पर तैरने वाले विराट विस्फोटक भी लगे हुए थे, जिनसे स्पर्श होते ही पनडुब्बी के उड़ जाने का भी खतरा बना हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सकुशल सिंगापुर पहुंच गए। सुभाष बाबू ने बंदी करके लाए गए भारतीय सैनिकों तथा प्रवासी भारतीयों की एक सुसंगठित सेना बनाई। सुभाष बाबू की आज्ञा पाकर सारे प्रवासी भारतीयों ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए। लाखों रुपए चंदे के रूप में उनके पास आ गया। ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीयों ने अपना सर्वस्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। जापानी सरकार सहायता दे रही थी, परंतु सुभाष बाबू ने जापान की सब बातों को आंख बंद करके नहीं मानना था। कई बार जापानी अधिकारी सुभाष बाबू के बीच गहरे मतभेद भी हो गए थे, परंतु सुभाष बाबू अपने ही मत पर डटे रहते थे और वे इतना कष्ट उठा करके किसी सरकार का एजेंट बनने नहीं आए थे कि वे यह समझकर आए थे कि अंग्रेजों के दुश्मन होने के नाते जापानी भारतीयों को स्वतंत्र होने की सहायता देंगे। इसलिए जहां भी उन्हें जैसा ज्ञात हुआ उसके विपरीत आचरण हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध भी किया। यदि कोई व्यक्ति जापानियों से इस प्रकार मतभेद व्यक्त करता है, जापानी उसकी एक नहीं सुनते थे। फिर भी सारी परेशानियों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर केवल आजाद हिंद फौज बनाकर ही शांत नहीं हुए, उन्होंने एक आजाद हिंद सरकार भी बनाई। जापानियों तथा जर्मनियों से यह कहा कि सरकार के साथ उन्हें कई प्रकार के व्यवहार करना पड़ेंगे, जैसा कि वे किसी भी स्वतंत्र सरकार के साथ उनके अधिकारी करते हैं। जर्मनी और जापानियों ने इस बात को मान लिया और जर्मन पक्ष से लड़ने वाले सब सरकारों से आजाद हिंद फौज को नियमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। और एक बार एक बहुत बड़ा जापानी अधिकारी सुभाष चंद्र बोस से मिलने आया। सुभाष बाबू आजाद हिंद फौज सरकार के राष्ट्रपति थे, परंतु उस व्यक्ति ने मिलने के लिए जिन नियमों और अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक समझा था, उन्हें वो पूरा नहीं करता था। इस पर सुभाष बाबू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जब जापानी सरकार ने सब नियमों तथा अनुष्ठानों का पालन किया है, तभी उसे मिलने की अनुमति दी गई। और ऐसी उनके जीवन में एक नहीं कई घटनाएं हुई। और श्रोताओं, इस तरह से आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हो गई। श्रोताओं, इसके बाद आजाद हिंद फौज ने बर्मा के जंगलों के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस समय जर्मनी और जापान दुर्बल पड़ने लगे थे। अमेरिका के युद्ध में आ जाने से ब्रिटिश पक्ष का पड़ला भारी पड़ रहा था। आजाद हिंद फौज सफल नहीं हो सकी थी। जो जो ब्रिटिश सेना विजयी होने लगी, त्यो त्यो आजाद हिंद फौज के नेतागण ब्रिटिश कारागारों में पहुंचने लगे। यहां इनकी सारी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश के नेताओं ने आजाद हिंद फौज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और जब उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने उनकी ओर से मुकदमे की पैरवी की। सुभाष बाबू पकड़े नहीं जा सके। कहा जाता है हवाई जहाज से यात्रा करते हुए हवाई जहाज में आग लग गई और वो उसी में शहीद हो गए, और इस प्रकार देश के एक साहसी नेता का अंत हो गया। श्रोताओं, ऐसे महान क्रांतिकारी को रेडियो आजाद हिंद शत शत नमन करता है, जिनके नाम से अंग्रेज सरकार थर थर कांपती थी। इस कार्यक्रम को अब हम यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह एक और नए क्रांतिकारी की कहानी लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। मैं हूँ आपके साथ प्रमिला मुंशी दिवाकर।
3: और मैं हूँ फराज फैयाज।
2: श्रोताओ, आज हम बात करेंगे मराठी साहित्य के एक महान नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म और टीवी के पटकथा लेखक की, जिन्होंने अपने लेखन से भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा और ऊंचाई दी। उनके नाटकों में सामाजिक, राजनैतिक और मानवीय मुद्दों की गहरी पकड़ थी। उनका नाम है विजय तेंदुलकर।
3: विजय तेंदुलकर यथार्थवाद के माध्यम से समाज की कड़ी और कड़वी सच्चाइयों को उजागर करते थे। ये सारे काम वे अपनी लेखनी के माध्यम से ही करते थे। उनका ये काम न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज के उन पहलुओं को सामने लाने के लिए महत्वपूर्ण था जो अक्सर नजरअंदाज किए जाते थे।
2: 6 जनवरी 1928 को कोल्हापुर के एक ब्राह्मण परिवार में बालक ने जन्म लिया। नाम था विजय तेंदुलकर। उन्हें बचपन से ही साहित्यिक माहौल मिला क्योंकि उनके पिता का प्रकाशन का काम था। पिता के इस काम का बालक विजय तेंदुलकर पर इतना गहरा असर पड़ा कि उससे प्रेरित होकर उन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में अपनी पहली कहानी लिख डाली।
3: अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वे मुंबई शहर की एक चौल में रहते थे और यही कारण रहा कि उन्होंने गरीबी और समाज के संगीन चेहरे को करीब से देखा और बड़े हुए और फिर मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन का पहला नाटक लिखा, जो विजय तेंदुलकर ने केवल लिखा ही नहीं बल्कि उसे निर्देशित भी किया। और बस इतना ही काफी नहीं था, बालक विजय ने अपने लिखे और निर्देशित नाटक में स्वयं अभिनय भी किया और 14 वर्ष के होने पर किशोर विजय तेंदुलकर भारत माँ की सेवा करने 1942 में भारत छोड़ो अभियान में अंग्रेजों के खिलाफ समर में कूद पड़े।
2: जिन दिनों में विजय तेंदुलकर मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहे, तब उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी को नजदीक से देखा और जाना। यही उनके द्वारा देखे गए जीवन के कड़वे सच और संघर्ष उनके नाटकों में गहराई से झलकते हैं।
3: विजय तेंदुलकर को एक यथार्थवादी, मानवतावादी और प्रयोगधर्मी नाटककार माना जाता है। सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के लिए उनका नाटक घासीराम कोतवाल के लिए उन्होंने पुणे के ब्राह्मण समाज की सत्ता, संरचना और हिंसा सभी को लोक रंगमंच के तत्वों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
2: हाँ, मराठी रंगमंच पर तेंदुलकर का गहरा प्रभाव आज भी नजर आता है। उन्होंने तमाशा जैसे लोक रंगमंच की विधाओं को आधुनिक नाटकों में प्रयोग किया है। अपने नाटक में तमाशा की भाषा शैली का उपयोग करते हुए मध्यम वर्गीय सामाजिक समस्याओं को दिखाया और प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य को अपनी नाटकीय प्रस्तुति में शामिल किया और नाटक की प्रभावशीलता को बढ़ाया।
3: ये बात भी सही है कि हिंदी रंगमंच में भी विजय तेंदुलकर के लिखे नाटकों का अनुवाद और मंचन हुआ है और हिंदी रंगमंच पर लोक रंगमंच की विधाओं का प्रभाव रहा है, जो ग्रामीण और शहरी दर्शकों के बीच आपसी संवाद भी स्थापित करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विजय तेंदुलकर के नाटकों में हिंदी रंगमंच को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाया।
2: विजय तेंदुलकर ने अपने थिएटर ग्रुप रंगायन के माध्यम से नाटकों में कई प्रकार से नए प्रयोग करने शुरू किए। इस काम में उन्हें सुप्रसिद्ध कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्रियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिसमें श्री राम लागू, मोहन अगाशे और सुलभा देश पांडे जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से उस समय के इन नए कलाकारों ने विजय तेंदुलकर की रचनाओं को बेहतरीन रंगमंची स्वरूप प्रदान किया।
3: सन 1961 में विजय तेंदुलकर ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था गिद्दे गिद्ध। इस नाटक में एकदम नया विषय होने के कारण इसका प्रदर्शन नाटक के लिखे जाने के लगभग 9 साल बाद 1970 में संभव हो सका। नाटक गिद्दे गिद्ध में नैतिक रूप से परिवार के टूटते ढांचे और हिंसा के छिपे हुए स्वरूपों को रंगमंच की भाषा में दिखाया गया है। इस नाटक में घरेलू किंग आधारित सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा को एक नए तरीके से परिभाषित किया है। इस नाटक ने विजय तेंदुलकर को रंग जगत में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
2: विजय तेंदुलकर के एक और नाटक शांता को चालू आहे, जो कि कहानी ट्रैप्स पर आधारित है, सन 1967 में लिखा और उसी वर्ष पहली बार खेला भी गया। इस नाटक ने तब नाट्य जगत में धूम मचा दी थी और साथ ही इस नाटक को लिखने के लिए विजय तेंदुलकर एक सिद्धहस्त लेखक के रूप में स्थापित भी हो गए। इसे हिंदी के खामोश अदालत जारी है शीर्षक से खेला जाता है और लगभग 60 साल पूरे होने को है इस नाटक की लोकप्रियता का। आज भी इसके मंचन में लोगों की भारी भीड़ देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं।
3: सन 1972 में विजय तेंदुलकर ने फिर अपनी कलम को उठाकर तेजी से चलाया और एक नाटक का जन्म हुआ। इसे उन्होंने नाम दिया सखाराम बाइंडर। इस नाटक में नैतिकता और मूल्यों के द्वंद्व को स्पष्ट रूप से उभारा गया है। इस नाटक का लेखन इतना सटीक बैठा कि आलोचकों और दर्शकों दोनों के ही द्वारा इसे काफी पसंद किया गया। इसी वर्ष उन्होंने एक और नाटक लिखा जो 18वीं शताब्दी के मराठा शासन में आई कमजोरियों को दिखाता है। ये नाटक अमरता का तत्व लिए था। इस नाटक का नाम है घासीराम कोतवाल। इसका अब तक 6000 से भी अधिक बार मंचन हो चुका है। अब तक इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का मंचन नहीं हुआ है।
2: विजय तेंदुलकर के लिखे नाटक गिद्धाड़े, कमला, कन्यादान आदि भी बहुत चर्चित हुए। विजय तेंदुलकर ने 50 से अधिक नाटकों की रचना की है और उनके नाटकों का हिंदी भाषा में लगभग 30 से अधिक नाटकों का अनुवाद हो चुका है। उनके भूत, विठला, एक जिद्दी लड़की, खामोश अदालत जारी है, गिद्ध, सखाराम बाइंडर, जाती ही पूछो साधु की, घासीराम कोतवाल, कन्यादान, कमला आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर जी की छवि, जिसे नाट्य जगत में स्वीकारा गया, वो मराठी नाटककार की सीमा में बंद कर नहीं रह सकी।
3: अपने निजी पारिवारिक जीवन में विजय तेंदुलकर ने अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े आघातों को सहा। सन 2001 में उनके पुत्र राजा और पत्नी निर्मला का निधन हो गया। इस सदमे से वे उबर भी नहीं पाए थे कि 90 के दशक में उनके लिखे धारावाहिक स्वयं सिद्ध में शीर्षक भूमिका निभाने वाली उनकी अभिनेत्री पुत्री प्रिया तेंदुलकर का भी स्वर्गवास हो गया।
2: अपने पूरे जीवन काल में विजय तेंदुलकर ने जमकर लेखन किया। उन्होंने 27 नाटक, 25 एकांकी और 16 बाल नाटक लिखे। यही नहीं, उन्होंने कहानियों और उपन्यास में भी हाथ आजमाया और लेखन के साथ साथ अनुवाद का भी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे और गिरीश कर्नाड के मशहूर नाटक तुगलक का मराठी में अनुवाद किया। इसके अलावा कई किताबों का हिंदी से मराठी और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया।
3: भारतीय रंगमंच के प्रमुख नाटककार विजय तेंदुलकर, जिनके लेखन में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है, उनके नाटक समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का सजीव चित्रण करते हैं।
2: हाँ, उन्होंने सामाजिक पाखंड, भ्रष्टाचार, समाज में महिलाओं की स्थिति, गरीबी, हिंसा, सेक्स और मृत्यु जैसे संवेदनशील विषयों को अपने नाटकों में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया है। वे अपने नाटकों में अश्लीलता और हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि ये सब उनकी कथा और प्रस्तुति की गहराई के हिस्से होते थे।
3: तेंदुलकर ने मराठी और हिंदी रंगमंच में लोक नाट्य की विधाओं जैसे तमाशा, कीर्तन और लावणी का भी प्रभावी उपयोग किया है। उनके नाटकों में लोक रंगमंच की परंपराओं के साथ आधुनिक नाटक, तकनीक का मिश्रण सामाजिक यथार्थ और सत्ता के जटिल संबंधों को उजागर करता है।
2: हिंदी रंगमंच में भी तेंदुलकर के नाटकों का अनुवाद और मंचन भी हुआ है। हिंदी रंगमंच में आरंभ से ही लोक विधाओं का प्रभाव रहा है, जो ग्रामीण और शहरी दर्शकों के बीच संवाद स्थापित करता है। विजय तेंदुलकर के लिखे नाटकों ने हिंदी रंगमंच को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाया है। उनके लेखन में पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। देखा जाए तो उन्होंने पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य को नाटकीय प्रस्तुति में शामिल किया, जिससे नाटक की प्रभावशीलता को बढ़ावा मिला।
3: विजय तेंदुलकर की लेखनी भारतीय साहित्य और रंगमंच में एक अमूल धरोहर है। उनके नाटकों और पटकथाओं ने सामाजिक यथार्थ को न केवल प्रतिबिंबित किया, बल्कि उसे चुनौती भी दी। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय मुद्दों पर संवाद के लिए प्रासंगिक हैं। विजय तेंदुलकर का साहित्य को दिया ये योगदान सदा भारतीय रंगमंच और सिनेमा को नई दिशा देने वाला रहा है। उनका ये योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
2: विजय तेंदुलकर सदा जरा हटकर समाज में सबसे नीचे की परत में जीवन जी रहे लोगों के जीवन को मंच पर लाने के लिए जाने जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके कारण ऊपर के लोग आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं, पर उनका एहसान मानने को तैयार नहीं है। विजय तेंदुलकर उस निचले तबके के दर्द को अपने नाटकों में बयां करते हैं।
3: हाँ, उनके नाटकों में इंसान की आदम प्रवृत्तियों और कुंठाओं का वर्णन है। उन्होंने अपने नाटकों में औरत के प्रति मर्द के हिंसक रवैये और उसकी पाशविक प्रवृत्ति को भी दिखाया है। उनके लिखे नाटक सखाराम बाइंडर की कहानी भी ऐसी ही है, जो हर बार एक नई औरत को घर ले आता है। उसे लाई गई औरत से यह करार है कि उसे खाना और छत मिलेगी। इसके एवज में सखाराम जो चाहेगा वो करेगा। वो उसे लतियाएगा भी, गालियां भी देगा, और जब उसका मन भर जाएगा तो वो उसे घर से निकाल भी देगा।
2: इस नाटक में गालियों का खुल्लम खुल्ला उपयोग भी हुआ है। उन शब्दों का उपयोग किया गया है जिन्हें लोग किसी खास मौके पर तब इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी से नाराज होते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर उन शब्दों को इस्तेमाल कर अपनी भड़ास निकालते हैं। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर विजय तेंदुलकर पर समाज में अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगाया। बात हाईकोर्ट तक पहुंची और फिर मामला रद्द कर दिया गया। यहाँ हम कह सकते हैं कि विजय तेंदुलकर ने कुछ चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल कर समाज को आईना भी दिखाने की हिम्मत की है।
3: ऐसे ही ऐतिहासिक काल पर आधारित नाटक घासीराम कोतवाल को आज के समाज से जोड़ते हुए उन्होंने कहा था, मेरी निगाह में घासीराम कोतवाल एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति की ओर संकेत करता है। वो स्थिति ना पुरानी है और ना नई, और ना ही वो किसी भौगोलिक सीमा में बंधी है, ना समय से ही। इसीलिए वो स्थल कालातीत है। इसी कारण घासीराम और नाना फडणवीस भी स्थल कालातीत हैं। सामाजिक स्थितियां उन्हें जन्म देती हैं और आगे भी देती रहेंगी। किसी भी युग का नाटककार उससे अछूता नहीं रहेगा।
2: विजय तेंदुलकर की लेखन शैली ने भारतीय फिल्म जगत को भी काफी अचंभित किया था। आजकल के स्टार्टअप्स में क्राउड फंडिंग के विचार को सबसे पहले उन्होंने फिल्म मंथन में दिखाया था, जहां कुछ महिलाएं अपनी पूंजी लगाकर दूध की सहकारी समिति चलाते हुए संघर्ष करती हैं। श्याम बेनेगल की इस पटकथा को विजय ने कैफी आजमी के साथ मिलकर लिखा था। इस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।
3: हाँ, और इसी तरह सन 1976 में आई अपराध जगत और एक पुलिस ऑफिसर के द्वंद पर बनी भारतीय सिनेमा की सबसे सशक्त फिल्म अर्धसत्य और गरीब किसानों की स्त्रियों के शोषण पर सन 1980 में बनी फिल्म आक्रोश जैसी फिल्मों की पटकथा भी विजय तेंदुलकर की कलम की ही देन है। इसमें कई सामाजिक मुद्दों को उठाया गया और इसे खूब सराहना भी मिली और राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।
2: देखा जाए तो विजय तेंदुलकर की फिल्मों की पटकथा में एक बात समानांतर चलती है, और वो ये है कि वो नाटकों में दिखती सामाजिक विसंगतियों और मानसिक बदहाली का हल भी नहीं बताते हैं, बस केवल उस समस्या को रेखांकित कर छोड़ देते हैं।
3: विजय तेंदुलकर ने कई बेहतरीन फिल्में लिखी जिन्हें सदा याद किया जाता है। इनमें श्याम बेनेगल की 1976 में आई फिल्म मंथन और 1975 में आई निशांत, ये भी श्याम बेनेगल की फिल्म थी जिसमें ग्रामीण भारत की समस्याओं को दिखाया गया है। गोविंद नहलानी की 1980 में आई आक्रोश, इसमें सामाजिक न्याय और अन्याय को दिखाया गया। 1983 में आई अर्धसत्य में पुलिस व्यवस्था और अत्याचार को दिखाया। 1979 में मराठी फिल्म सिंहासन, जो राजनीति पर आधारित थी, एक और मराठी फिल्म 1974 में आई सामना, ये फिल्म एक शिक्षक के जीवन पर आधारित थी।
2: 1984 में विजय तेंदुलकर के नाटक पर आधारित फिल्म आई थी कमला, जिसे जगमोहन मुंद्रा ने निर्देशित किया था। इसमें मुख्य भूमिका में दीप्ति नवल, शबाना आजमी और मार्क जुबेर दिखाई दिए हैं। ये फिल्म एक पत्रकार द्वारा देह व्यापार के मुद्दे को उजागर करने के लिए एक लड़की को खरीदने की कहानी बताती है, जो समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डालती है। ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित बताई गई है। इसमें एक महत्वाकांक्षी पत्रकार कमला नाम की युवती को देह व्यापार के लिए खरीदने को उजागर करता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करता है। इससे उसकी पत्नी और अन्य लोगों के बीच नैतिक संघर्ष भी पैदा होता है।
3: जी हाँ, इस फिल्म में गुलामी और घरेलू प्रभुत्व के मुद्दों को भी उठाया गया है। ये अपने समय की एक बोल्ड और विचार उत्तेजक फिल्म मानी जाती है। 1993 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित फिल्म आई सरदार, इसका निर्देशन केतन मेहता ने किया था। राष्ट्रीय एकता पर बनी इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें परेश रावल ने सरदार पटेल की भूमिका निभाई थी।
2: विजय तेंदुलकर की लेखनी आज भी प्रासंगिक है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लेखन में समाज की जटिलताओं, असमानताओं और मानवीय संघर्ष को यथार्थवादी और संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए प्रस्तुत किया। उनके नाटक और पटकथाएं सामाजिक चेतना जगाने के साथ ही साथ न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं।
3: हम ये बात भी मान सकते हैं, जो जो समय बीतता जा रहा है, विजय तेंदुलकर की रचनाएं भी समय की उसी गति के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। उसकी वजह यह भी कही जा सकती है कि तेंदुलकर की रचनाएं सामाजिक बदलाव और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर उसकी गहन पड़ताल भी करती है। विजय तेंदुलकर के नाटकों के विषय में अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार, लैंगिक समानता, असमानता और मानवीय मूल्यों के पतन जैसे विषयों पर उनके शोध और समाज में सत्ता संरचना के विश्लेषण गहराई से नजर आते हैं।
2: यही कारण है कि भारतीय नाट्य और साहित्य जगत में उनका एक उच्च स्थान रहा है। विजय तेंदुलकर भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने समानांतर सिनेमा आंदोलन से जुड़ी फिल्मों की पटकथा लिखी। यही कारण है कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में विजय तेंदुलकर का व्यक्तित्व अलग स्थान पर जाना जाता है और पहचाना जाता है।
3: विजय तेंदुलकर को मानव स्वभाव की बड़ी गहरी समझ थी, ये बात उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने अखबारों में काम किया था और बाद में भी अखबारों के लिए लिखने लगे। 20 साल की उम्र में उन्होंने दो नाटक लिखे, अमया चार कोन, प्रेम करेन और गृहस्थ, लेकिन इन नाटकों को कोई सफलता नहीं मिली। इससे युवा तेंदुलकर का उत्साह टूट गया और उन्होंने नाटक नहीं लिखने का फैसला कर लिया।
2: लेकिन उनकी लेखनी ने एक बार फिर जोर मारा और 1956 में उन्होंने श्रीमंत टक नाटक लिखा। इस नाटक में एक बिन ब्याही माँ के अमीर पिता के मना करने के बावजूद अपने बच्चे को जन्म देने के लिए निर्भीक फैसले को दिखाया गया है। नाटक जगत में इसे खूब सराहना मिली, परंतु उस समय के रूढ़िवादियों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की, लेकिन नाटककार विजय तेंदुलकर पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
3: हम मराठी पत्रकारिता से अपने सक्रिय जीवन की शुरुआत करने के बाद 70 के दशक में भारतीय रंगमंच पर एक धूम केतु की तरह उनका उदय हुआ। उनका नाटक शांतिता कोर्ट चालू आहे अपनी क्रांतिकारी संरचना के कारण इतना लोकप्रिय हुआ कि देखते ही देखते अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद किए गए और देश विदेश में ये इतना लोकप्रिय हुआ कि 100 से कहीं अधिक इसके शो किए गए।
2: जब एक रचनाकार की रचनाएं जीवन की वास्तविकता से जुड़ी होती हैं, तो समाज का एक तबका उसका विरोध तो करता ही है। बस विजय तेंदुलकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। शांता कोर्ट चालू आहे, खासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर उनके द्वारा लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। 70 के दशक में उनके कुछ नाटकों को विरोध भी झेलना पड़ा था, क्योंकि वे वास्तविकता के नजदीक थे। परंतु फिर भी इन नाटकों का मंचन आज भी होना इस बात का प्रमाण है कि वो कितने लोकप्रिय हैं।
3: विजय तेंदुलकर के लिखे नाटकों का अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। विजय तेंदुलकर के नाटकों की ये विशेषता रही कि उन्होंने नाटकों से नाटकीयता हटाकर निकाल दी और यथार्थ को लिखा। उनके नाटक एक और पाखंड को चुनौती देते हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक सत्ता को उन्होंने अपने नाटकों में परंपरावादी और पुराने मूल्यों में जकड़े समाज पर कटाक्ष किए हैं।
2: भारतीय रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले विजय तेंदुलकर देश के महान नाटककारों में से एक थे। उन्होंने अपने नाटकों में हमेशा नए विचारों को जगा दी, जोखिम उठाया और रंगमंच पर वर्जित समझे जाने वाले विषयों को अपने नाटक की विषय वस्तु बनाया। ये साहस केवल विजय तेंदुलकर में ही देखा गया। जब लोगों ने उनके नाटकों में नैतिकता अनैतिकता पर सवाल उठाए, तब विजय ने डटकर उन सवालों का सामना किया। वो घबराए नहीं और ना ही अपनी कलम को रोका।
3: ये बिल्कुल सही कहा आपने, विजय तेंदुलकर ने अपनी लेखनी को कभी नहीं बदला, वे उसी रास्ते पर चलते रहे जिसे उन्होंने अपनाया था। यह साहस उन्हें अपनी माँ के दिए संस्कारों से प्राप्त हुआ था। उनकी माता जी एक घरेलू महिला अवश्य थी, किंतु एक आदर्श माँ के अनुरूप उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया। उनकी माता जी की स्पष्टता और निडरता के ही प्रभाव का परिणाम विजय तेंदुलकर के व्यक्तित्व और लेखन दोनों में ही दिखाई देता है। और इसी तरह लोगों के सवालों से वो कभी नहीं घबराए, बल्कि जब जब लोगों ने उनके लेखन पर प्रश्न उठाए, विजय तेंदुलकर ने अपनी लेखनी के साथ साथ अपने इरादों को और भी मजबूत बना लिया।
2: विजय तेंदुलकर ने अपने नाटकों में उन शाब्दिक हिंसा को या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पहले कभी रंगमंच पर प्रयोग में नहीं लाए गए। उनका प्रयोग क्यों किया, इस बात को बिना सोचे समझे शुद्धता का बखान करने वाले तथा कथित लोगों ने बगैर सोचे समझे बस बवाल मचाया, पर उनके संदर्भ को नहीं जाना।
3: हाँ, विजय जी के नाटक बोल्ड होने के साथ साथ अपने समय से बहुत आगे भी हैं। वो यथार्थवादी हैं और भारत में यथार्थवादी नाटकों को विषय में लाने का पूरा पूरा श्रेय विजय तेंदुलकर को ही जाता है। आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच के विकास में उनका नाम अग्रणी है।
2: आधुनिक रंगमंच की अग्रिम पंक्ति में माने जाने वाले विजय तेंदुलकर को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया, जो उन्हें मराठी और साहित्य के एक दिग्गज के रूप में स्थापित करते हैं।
3: भारत सरकार द्वारा उनके साहित्यिक योगदान के लिए 1984 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला में उनके काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1970-71 में दिया गया। विजय तेंदुलकर को कला में आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1998 में दिया गया।
2: मराठी लेखन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार पुरस्कार 1956, 1969 और 1972 में दिया गया। फिल्मों में पटकथा लिखने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1980 में दिया गया। उनके मराठी नाटक अमृताच्या गावी के लिए 1993 में सरस्वती सम्मान दिया गया।
3: भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए 1999 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। मराठी साहित्य के लिए जनस्थान पुरस्कार 1999 में दिया गया। फिल्म मंथन की पटकथा के लिए 1977 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया।
2: महाराष्ट्र गौरव के लिए 1999 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2001 में कथा चूड़ामणि पुरस्कार भी दिया गया।
3: विजय तेंदुलकर को इन सम्मानों के अलावा भी कई अन्य साहित्य और नाट्य पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जो उनके बहुमुखी और प्रभावशाली लेखन का प्रमाण है।
2: आधुनिक रंगमंच के निर्माता विजय तेंदुलकर का भारतीय रंगमंच में बेमिसाल योगदान रहा। और साहस की बात करें तो अपने दौर की कड़वी सच्चाइयों को बयां करने का मादा उनमें औरों से कहीं ज्यादा था। लेखन पर उनका कहना था कि मैं आदर्शों में यकीन करने वाला लेखक नहीं हूँ, मैं अपने खुरदुरे यथार्थ के साथ ही ठीक हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे लेखन में पत्रकारिता की छाप है, पर मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता।
3: संघर्ष के शुरुआती दिनों में विजय तेंदुलकर मुंबईया चौल में निवास करते थे और इस चौल से बटोरे उनके सृजन के बीज वर्षों उनके मराठी नाटकों में दिखाई देते रहे और उन बीजों का अंकुरण होता रहा और उन्होंने सभी सामाजिक प्रक्रियाओं पर जमकर लिखा।
2: 5 दशक से भी ज्यादा समय तक वे सक्रिय रहे और नए प्रयोग करते हुए नई नई आए दिन की चुनौतियों का सामना भी करते रहे। उनके द्वारा लिखे हर नाटक में नैतिकता का अनोखा पुट होता रहा। वे कल्पना से परे जाकर सोचते और लिखते, यही उनका विशिष्ट अंदाज था। उनकी लिखी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं।
3: अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ समय वे मांसपेशियों के कमजोर हो जाने वाली बीमारी से भी पीड़ित रहे और 19 मई 2008 में पुणे शहर में उन्होंने अंतिम सांस लेकर इस नश्वर संसार से विदा ली। उनके अंतिम समय में उनकी दो पुत्रियां सुषमा और तनुजा भी उनके साथ थीं। वो एक निर्भीक लेखक के रूप में सदा अपने लेखन के साथ खड़े रहे और अपनी लेखनी चलाते रहे और अपने बहुमुखी और प्रभावशाली लेखन को दर्शाते रहे।
2: विजय तेंदुलकर की रचनाएं आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी हुई हैं। वे भारतीय नाट्य साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ थे। उनकी कृतियों ने नाटक और साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया।
3: विजय तेंदुलकर के नाटकों में मानव जीवन की विषमताओं, स्वाभाविक अस्वाभाविक मानव संबंधों, जातिगत भेदभाव और हिंसा का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनके लेखन के अधिकांश घाव मध्यम और निम्न वर्ग के रहे और उनके विभिन्न रंग उनके नाटकों में नजर भी आते हैं।
2: उनके अचानक जीवन के रंगमंच से नेपथ्य में चले जाने के बाद भी जिंदगी के कटु यथार्थ को अनूठे अंदाज में पेश करने वाले विजय तेंदुलकर अपने नाटकों के लिए सदा याद किए जाएंगे। उन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे। तो ये था आज का शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की विजय तेंदुलकर की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनियांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, वाचन स्वर मैं प्रमिला मुंशी देवाकर
3: और मैं फराज फैयाज।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: शब्दों के शिल्पकार, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: कर्म योग स्वामी विवेकानंद जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उनके जो व्याख्यान संकलित किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवन को गढ़ना ही है। इन व्याख्यानों को सुनने पर हमें ज्ञात होता है कि उनके विचार किस उच्च कोटि के तथा हमारे दैनिक जीवन के लिए कितने उपयोगी रहे हैं।
1: आज की परिस्थिति में संसार के लिए कर्म योग का असली रूप समझ लेना बहुत जरूरी है। आवश्यकता इतनी ही है कि इसके भावों एवं विचारों का मनन कर उन्हें कार्य रूप में परिणित किया जाए। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, स्वामी जी ने उन्हें बहुत रोचक ढंग से समझाया है।
2: कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज

0: स्वरूप है।
1: मनुष्य को जांचना हो तो उसके द्वारा किए गए महान कार्यों को नहीं, छोटे छोटे कार्यों की पड़ताल करनी चाहिए। उन्होंने कहा,
0: यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है।
2: हमारी इच्छा शक्ति ही हमसे काम करवाती है, स्वामी जी ने समझाया।
0: संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति से हो रहा है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा केवल मन का ही खेल है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्ध पोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र है। मनुष्य की ये इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है, और वो चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे, और ये शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी।
1: अच्छे काम करने की इच्छा वंशानुक्रम में नहीं मिलती।
0: बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी, वो एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती, और उसे हम अनुवांशिक शक्ति संचार भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उसके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। जोसेफ ईसा मसीह के पिता के समान तो असंख्य बड़े हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि वो बात केवल अनुवांशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई हो, तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर नहीं करते थे, एक ऐसा सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है।
2: स्वामी जी ने ईसा मसीह का उदाहरण देकर समझाया।
0: इसी प्रकार जोसेफ नामक बड़े तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है, उसका स्पष्टीकरण कहां? अनुवांशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए, वो आई कहां से? उस महान शक्ति का उद्भव कहां से हुआ? अवश्य युग युगांतरों से वो उस स्थान में ही रही होगी, और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई है और आज तक चली आ रही है।
1: कर्म के द्वारा ही हमारी इच्छा पूर्ति होती है, स्वामी जी ने कहा।
0: एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन भर धनी होने के लिए एक चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वो देखता है कि वो संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं, वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वो केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वो अधिकारी होगा, और ये अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है।
2: हर एक कार्य करने का एक विधिवत ढंग होता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है।
0: संभव है तुम कहो, कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ? संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्म योगी का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। ये स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र है।
1: स्वामी जी ने विभिन्न उदाहरण देकर समझाया कार्य करने के कितने उद्देश्य होते हैं।
0: मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कार्य किया करता है, क्योंकि बिना हेतु कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं, दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं, फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं, कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं। चीन देशों में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी जाती है। कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहां की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है।
2: आत्म संयम के बारे में स्वामी जी ने कहा,
0: अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक चार घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है अथवा सही घोड़ों को रोक सकता है। इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किस में होता है, घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में? एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है। इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वो फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है।
1: सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए, भला या बुरा समझकर नहीं।
0: अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो, परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो? यदि तुम एक मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की चिंता ना करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो ये सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा।
2: जो जिस कार्य का आदि होता है उसे वही करना चाहिए, उन्होंने समझाया।
0: यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है, संसार के चक्कर में घसीट कर लाया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वो दबाव नहीं है जिसके कारण वो जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वो शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं, उसे क्लेश होता है और संभव है कि उसका मस्तिष्क ही फिर जाए।
1: निस्वार्थ कर्म करना आसान नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है।
0: परंतु हमें शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाएं, उन्हें हम हाथ में लेते जाएं, और शने शने हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा ये पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे ये स्वार्थ परायणता अध्यावसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वो समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी ये आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी ना किसी दिन वो समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे, और जो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यांतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।
1: सबको अपने हिस्से का कार्य करते रहना चाहिए, उसी में भलाई है।
0: जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। ये कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये चार आश्रम घटकर केवल दो ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं सन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर उपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वर उपासना में लग जाए तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और ना अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ही ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित जीव हैं, अपने अपने स्थान में सभी बढ़ेंगे।
1: स्वामी जी उदाहरण देकर कहानी सुनाकर समझाते हैं।
0: इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है। एक राजा था, उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आता तो उनसे सदैव एक प्रश्न पूछा करता था। संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वो श्रेष्ठ है? अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ को जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए, राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा हे राजा, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उसका प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हां मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डोंडी पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी। राजा तथा सन्यासी भी ये सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा, इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है।
1: स्वामी जी ने अमेरिका वासियों को अपने देश में पूर्व प्रचलित स्वयंवर की प्रथा को समझाया।
0: राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान आदि। अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भी भाट होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा ये दर्शाते थे कि उन्हीं का वर्णन किया जाए। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वो उन सबके सामने जाती और उनका गुणगान सुनती। यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वो अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो, और उसके पश्चात यदि किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो उसके गले में वरमाला डाल देती और वो राजकुमार उसका पति हो जाता था।
2: कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने कहा,
0: जिस देश में ये राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। ये राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही न था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए पर राजकुमारी को अपने मन का पति न मिला। इस बार का स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी स्वयंवरों की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने में वहां एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वो इतना सुंदर था मानो सूर्य देव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आए। वो आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और जो ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा त्यों ही वो रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और ये कहते हुए, छी छी ये क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझे विवाह की क्या प्रयोजन। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण ये राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। अतएव उसने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। और ये कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी। उस युवा सन्यासी ने माला फिर निकाल कर फेंक दी और कहा, छी ये सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। और ये कहकर वो तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया कि मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने जो राजा को यहां लाए थे राजा से कहा, राजन चलिए इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चले। निदान वे उनके पीछे पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे। वो युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन में भली भांति परिचित था तथा वहां के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वो एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख न सकी। उसे काफी देर ढूंढने के बाद अंत में वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मालूम था। इतने में ये राजा और सन्यासी उसके पास आए और उससे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल ले चलेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं। यही एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री तथा उसके तीन बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन तीन लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो हमारे यहां ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है नहीं। ये कहकर मोड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी लगा लगा कर खूब आग तैयार कर ली, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से फिर कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें अपना ही शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वो आग में कूद पड़ा और भून गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का यत्न भी किया परंतु बचा न सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन में कहा, ये तो तीन लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं। पत्नी के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रमों को मैं व्यर्थ ना जाने दूं, वे मेरा भी शरीर ले लें। और ऐसा कहकर वो भी आग में गिर गई और भून गई। इसके बाद जब उन तीन छोटे बच्चों ने देखा कि अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त ना होगा, तो उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा ना पड़ेगा। अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें, हमें अपने शरीर भी दे देने चाहिए। और ये कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। ये सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए, इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे। रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातः काल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वो अपने पिता के घर वापस चले गए। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया है कि अपने अपने स्थान में सब बड़े। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो, और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो जिसके लिए वो परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य भी तृणवत था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो, और यदि तुम्हें सन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अब हमारी सभा के समापन का समय है, तो चलते चलते हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी 14 जुलाई मंगलवार को आप हमारे रेडियो से सुबह की सभा में कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से सुनिएगा ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, कल गोपाल गणेश आगरकर जी की जयंती है, तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम, सुनना न भूलिएगा सुबह 8 बजे। सुबह 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। कल इस कार्यक्रम में प्रकृति और मनोविज्ञान इस विषय पर बातचीत होगी। विषय विशेषज्ञ पारुल ऋषि से बात की है मनीषा चतुर्वेदी ने। सुबह 9 बजे सुनिएगा योग संवाद। कल योग संवाद में चर्चा होगी योग वाशिष्ठ संसार के पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता पर। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे निमाड़ी गायन शिव भाई गुप्ता से। सुबह 10 बजे का वक्त होगा परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट का। 10:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। श्रोताओं, कल बाबूराव कोकाटे जी की जयंती है और उन्हीं पर आधारित होगा हमारा कल का हिंदोस्तां हमारा। दिन में 11 बजे सुनिएगा स्वास्थ्य चर्चा। कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में विषय होगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी। इस विषय पर निहारिका पंसोरिया से वार्ता की है रत्नेश सोनी ने। दिन में 11:30 सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए। और अब दीजिए अनुमति आपके अपने पूर्वाखले को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।